मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026 5:56 और 37 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत कर रही हैं मातृवंदना से।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी पारंपरिक देशभक्तिपूर्ण रचना। लीजिए अब सुनिए ज्योतिका रॉय के स्वर में मीराबाई का ये भक्तिपद।

राजेंद्र मेहता के स्वर में अभी आपने सुना भजन। लीजिए अब सुनिए आशिक अली खां की आवाज़ में नात।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आपने सुना भजन। इस भजन के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख श्री पुरुषोत्तम लाल शुक्ला का है।
1: अनुभव के रूप में जीवन ने हमें एक शिक्षक दिया है। हमारी परिपक्वता जीवन में होने वाले हर अनुभव से एक पायदान नीचे ही रहती है। जीवन के अनुभवों का एकमात्र प्रयोजन है हमें परिपक्वता प्रदान करना, और ये अनुभव न सिर्फ हमारी परिपक्वता का स्तर ही बढ़ाता है, वरन चुनौतियों का सामना करने का स्तर भी बढ़ाता है। बस इसी तरह जीवन आगे बढ़ता जाता है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि हम कितना जानते हैं या हमारे जीवन के अनुभव कितने समृद्ध हैं। हम ये भी नहीं जानते कि हम सर्वोत्कृष्ट हैं और जीवन के बारे में एक विश्वकोश बन गए हैं। यही कारण है कि तमाम उपलब्धियों के बाद भी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ठोकर खाकर गिरने की या फिसलने की संभावना बनी रहती है। हमारी सफलता का कारण क्या होता है? सही निर्णय और हमें सही निर्णय लेने में सक्षम कौन बनाता है? जीवन के अनुभव। ज्ञान की सार्थकता तभी है जब वो हमारे जीवन में उतरे। यदि हमारा ज्ञान केवल विचारों तक ही सीमित है, अनुभव में नहीं आया है, तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। कुछ लोग व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, लेकिन वे उस पढ़े हुए से प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक स्तर पर आत्मसात नहीं कर पाते। विचार और ज्ञान दो भिन्न तत्व हैं, इनमें बड़ा भेद है। हम ज्ञान को विचार का ही पर्याय मान लेते हैं, जबकि विचार और ज्ञान दोनों अलग अलग सत्य है। विचार धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन अनुभूति जन्य ज्ञान कभी धोखा नहीं देता, क्योंकि अनुभव तो हमारा अपना होता है जिसे हमने जी कर पाया है। विचार में कभी कभी हमारी कल्पनाओं की तृप्ति छिपी रहती है। जैसे यदि कोई आदमी मौत से डरता है तो सहज ही उसे मानने का मन करेगा कि आत्मा अमर है। इसे मानने का कारण तो बस इतना है कि ऐसा करने से उसके विचार को तृप्ति मिलती है, परंतु वो तृप्ति ज्ञान नहीं कही जा सकती। विचार बाहरी होते हैं और हम अपने मन को आने वाले उन विचारों की तरंगों से जोड़ लेते हैं। यदि विचार नकारात्मक होते हैं तो वे हमें डराते हैं, और सकारात्मक विचार हमें संबल प्रदान करते हैं। परंतु विचारों की श्रृंखला हमारे लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखती। इसलिए हमारे प्राचीन महर्षियों का आग्रह विचारों पर नहीं था, वे सिद्धांतों के आग्रही नहीं थे, वरन वे कहते थे कि विचार नहीं अनुभव महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठता अनुभव से प्राप्त ज्ञान की है, विचारों की कोई कीमत नहीं होती। ये ऋषि ज्ञान के पुजारी और अनुभव के उपासक होते थे। वे अनुभव में विश्वास रखते थे, इसलिए तो उन्हें ज्ञानी कहा गया। प्रकृति और पुरुष को जो तत्व से अनुभव करता है वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी ऋषि अपनी चेतना की ऊंचाई तक पहुंचकर इसका अनुभव करते थे कि मनुष्य कितने भी अलग क्यों न हो, उनकी चेतना और चैतन्य में कोई अंतर और भेद नहीं है। दिए की आकृति से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकाश तो हर दिए का एक है। निश्चित ही पुस्तकों और शास्त्रों में पढ़ने का अपना महत्वपूर्ण लाभ है, इसलिए स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, पर साथ ही शास्त्रों में दी गई शिक्षाओं को अनुभव में परिवर्तित करने का प्रयत्न भी करना चाहिए, क्योंकि अनुभव जन्य ज्ञान ही परम सत्य कहा जा सकता है। ज्ञान अनुभूति का ही शिखर है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख था श्री पुरुषोत्तम लाल शुक्ला का। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कान।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्रीराम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्रीराम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, कलाकार थे सुरेश वाटकर। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है कृषि चर्चा। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए औषधीय पौधों की खेती, इस विषय पर जानकारी देते हुए डॉक्टर सत्य प्रकाश विश्वकर्मा।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम औषधि खेती के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से कि मुख्य औषधि पौधे जैसे अश्वगंधा, तुलसी, काल मेघ, गिलोय, सफेद मुसली, सर्पगंधा, आंवला, एलोवेरा एवं ब्राह्मणी। ये जो औषधि पौधे हैं, ये छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से अच्छे से इसका खेती किया जा सकता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। सभी का आपको लाभ बता दूं और जलवायु, तो सबसे पहले अश्वगंधा की बात करें तो अश्वगंधा का जो मुख्य लाभ है वो कमजोरी में मानसिक तनाव है या शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है तो उसमें इसका बहुत उपयोग है। और इसकी जलवायु की बात करें तो ये कम पानी और गर्म जलवायु में अच्छी उपज देता है। और दूसरा है तुलसी। तुलसी का जो मुख्य लाभ है, ये सर्दी खांसी में इसका इस्तेमाल करते हैं, बुखार हो गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो जलवायु है छत्तीसगढ़ में आसानी से उगती है, कम पानी वाले जगह पे या आर्द्र क्षेत्र में। तीसरा है कालमेघ। कालमेघ का जो मुख्य लाभ है वो लीवर और पाचन के लिए अत्यधिक उपयोगी माना जाता है और इसके लिए जो जलवायु की आवश्यकता होती है वर्षा और आर्द्र क्षेत्र अच्छी मानी जाती है। गिलोय। गिलोय का भी मुख्य लाभ है इम्यूनिटी को बढ़ाना, वायरल जैसे बुखार में लाभदायक है। इसके लिए भी गर्म और

0: जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। इसके पश्चात हम बात करेंगे सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली को शक्तिवर्धक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसका जो छत्तीसगढ़ में जलवायु है वो छायादार और वर्षा वाले क्षेत्रों में अत्यधिक अच्छी मानी जाती है। और सर्पगंधा की बात करें तो सर्पगंधा का जो मुख्य लाभ है उच्च रक्तचाप और मानसिक तनाव को नियंत्रण करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नम और छायादार क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। इसके पश्चात है आंवला। आंवला का जो मुख्य लाभ है विटामिन सी हो गया, इसमें मिलता है अधिक मात्रा में। और इसके साथ ही साथ इसका उपयोग पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, बालों के लिए और चेहरे या त्वचा संबंधी रोग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सूखा सहनशील जो भी क्षेत्र है वहाँ पे इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। इसके पश्चात आता है एलोवेरा का बात। तो एलोवेरा जैसे आपका त्वचा स्किन संबंधी है, कोई रोग है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं, पेट या घाव में उपयोगी होता है। और इसकी जलवायु की बात करें तो ये ज़्यादा इसको नमी की आवश्यकता नहीं होती या ठंडे जगह की आवश्यकता नहीं होती, इसको कम पानी में आसानी से उगाया जा सकता है। जहाँ सूखा है या बंजर जगह है वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके साथ साथ अंत में बात करेंगे हम ब्राह्मणी का। ब्राह्मणी जो है ये याददाश्त बढ़ाने के लिए या मानसिक संतुलन को स्वस्थ रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये नम और छायादार क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और इसके बाद हम किसान भाइयों बात करें, जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, काल में गिलोय की जो बात की है हम, इसके लिए जो भुइयां की ज़रूरत होती है वो सामान्यतः बलुई, दोमट या अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसके पश्चात किसान भाइयों हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका बीज कहाँ से लें या कहाँ से आपको उपलब्ध हो पाएगा, इसकी जानकारी मैं दूंगा। पहला है आपको नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से, इसकी नर्सरी से या ऐसे संस्थान से आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में स्थित है, वहाँ से औषधि पौधों का आप बीज या पौधा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाई अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र जो खुले हैं वहाँ पर भी जाके वहाँ के विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी बीज के बारे में भी ढेर सारी जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। तत्पश्चात वन विभाग और औषधि पौधा बोर्ड ये भी पौधे तैयार करते हैं, किसान भाई यहाँ भी जाकर आप बीज कर सकते हैं। तो बीज के लिए ये जो चार पांच जगह बताया हूँ यहाँ से आसानी से आपको बीज प्राप्त हो जाएगा।
1: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे औषधीय पौधों की खेती, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सत्यप्रकाश विश्वकर्मा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत जन विश्वास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप सुनेंगे 9:25 पर। 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, इसमें सुनिएगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वर्णिका शर्मा से खास बातचीत। और आप सुनेंगे परिवहन सेवाओं का डिजिटाइजेशन पर आरटीओ के टेक्निकल ऑफिसर श्री सीएल देवांगन से बातचीत। साथ ही सुनिएगा केंद्र सरकार के उपलब्धिपूर्ण 12 वर्ष पर वरिष्ठ पत्रकार श्री संजीव गुप्ता से विशेष बातचीत। प्रस्तुत करता होंगे अंकुर शुक्ल। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए, इसमें सुनिएगा आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर श्री राजीव प्रकाश से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे दीपक हटवार। नवा बिहान ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:00, इसमें आप सुनेंगे नमो ड्रोन योजना से लाभान्वित श्रीमती चित्र रेखा साहू से बीरभान साहू के कोट बात। सुबह 9:40 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे बेला सांवेर। इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे वकील अहमद। सुबह 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित अभय नारायण मलिक का ध्रुपद गायन। आप सुनेंगे राग तोड़ी। इसी कार्यक्रम में पंडित अभय नारायण मलिक का गाया राग बागेश्वरी सुनिएगा रात 10:00। और इसी कार्यक्रम में दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे पंडित सपन चौधरी का तबले पर बजाया तीन ताल और रूपक ताल। प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अनुराग धारा में सुनिएगा भोजपुरी गीत। कलाकार होंगे गणेश पंडित और साथ ही प्रसारण समय 11:05। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दोपहर 12:00। शाम 5:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां सुनिएगा शाम 6:30 पर। शाम 5:10 पर कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे। आकर्षण होंगे आजकल इसमें विश्व बाल श्रम के विरुद्ध दिवस, इस पर चर्चा होगी और होगा क्रम खेल चौपाल और ज्ञान सरिता। शाम 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आज की बात आप सुनेंगे। विषय होगा SRI विधि अपनाव ज्यादा आमदनी पाव। क्रम हेलो चौपाल सुनिएगा फलोद्यान लगाने की तैयारी व उसका प्रबंधन। इस विषय पर चर्चा करेंगे श्री कैलाश सिंह पैकरा, उप संचालक उद्यानिकी रायपुर। संचालन मोनिका जैन का होगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। यादें फिल्मी गीतों का ही फरमाइशी कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 10:30 पर। सदाबहार नखमे आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर।

चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, 2:30, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैलबीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानम् कृषकाणां चलतूरभाषे प्रदातुम् ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयम् यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितम् यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैलबीज कृषकः केवलम् व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्री गोयलः तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। पश्चात् पुरुष एकलवर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानन्दः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। प्रस्तुत करता है अंकुर शुक्ला।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुप्रभात साथियों, मैं हूं अंकुर शुक्ल और आप सुन रहे हैं सुबह की ताजगी से भरपूर आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। साथियों, सुबह की इस ताजगी भरी बेला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आपका दिन खुशियों, ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ शुरू हो रहा होगा। बाहर मौसम चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपकी मुस्कान और सकारात्मक सोच हर दिन को बेहतर बना सकती है। दोस्तों, जून का महीना गर्मी के कम होने और मॉनसून के इंतजार का महीना भी है। छत्तीसगढ़ में भी लोग मॉनसून की पहली फुहारों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसान खेतों की तैयारियों में जुट चुके हैं और प्रकृति भी एक नए बदलाव की ओर बढ़ रही है। यह समय हमें धैर्य, तैयारी और उम्मीद का संदेश देता है। और इसी के साथ बच्चों की गर्मियों की लंबी छुट्टियां भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। कुछ दिनों में स्कूल की घंटियां फिर से सुनाई देंगी, नई किताबों की खुशबू आएगी, नए बैग और नई कॉपियों के साथ बच्चों की चहल पहल फिर से स्कूलों में लौटेगी। छुट्टियों की मस्ती और यादों को समेटते हुए अब एक नई शुरुआत का समय आने वाला है। तो चाहे आप अपने काम की तैयारी में हो, खेती किसानी की योजना बना रहे हों, या फिर बच्चों के नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों में जुटे हों, यह सुबह आपको नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर दे, यही हमारी शुभकामना है। तो चलिए, इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ और उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं आज का सफर।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: दोस्तों, अब वक्त है एक ऐसे महान विचारक की बात करने का जिनके शब्दों ने दुनिया भर में लोगों को अपने अधिकारों और आज़ादी के लिए खड़े होने की प्रेरणा दी। हम बात कर रहे हैं थॉमस पेन की, जो 18वीं सदी के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक, लेखक और दार्शनिक थे। थॉमस पेन का एक बहुत प्रसिद्ध विचार है, सच्चा इंसान कठिनाइयों में भी मुस्कुराता है, परेशानियों से ताकत हासिल करता है और आत्मचिंतन से और अधिक साहसी बनता है। दोस्तों, यह बात आज के समय में भी प्रासंगिक है। जीवन में चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं, कभी पढ़ाई का दबाव, कभी नौकरी की चिंता, तो कभी

0: साथियों, हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि बच्चों का स्थान स्कूल, खेल का मैदान और परिवार का स्नेहपूर्ण वातावरण है, न कि मजदूरी और कठिन कामकाज। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लाखों बच्चे शिक्षा और बचपन के अधिकार से वंचित होकर काम करने को मजबूर हैं। गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक परिस्थितियां इसके प्रमुख कारण हैं। लेकिन यह भी सच है कि जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक प्रयासों से इस स्थिति को बदला जा सकता है। तो चलिए इन्हीं बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए जुड़ते हैं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग वर्णिका शर्मा जी से।
1: स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: मैम, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है?
2: दरअसल यह दिवस केवल एक औपचारिकता मात्र नहीं है। आयोग में आने से पूर्व भी मेरी यही मानसिकता थी कि जब भी हम ये दिवस की बात करें, बाल श्रम निषेध दिवस, तो ये एक दिवस की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चों के जीवन के अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए पूरे वर्ष भर हमको सावधानी और सतर्कता रखनी चाहिए। विशेष रूप से ये जो बाल श्रम निषेध दिवस है, ये बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कर उनको उनके जीवन का अधिकार देने के लिए है, उनको सुरक्षित बचपन का अधिकार दिलाने के लिए है, जागरूकता उनके बीच बढ़ाने के लिए, उनको उनके शिक्षा के अधिकार तक पहुँचाने के लिए।
1: जी मैडम, बाल श्रम की सरल परिभाषा क्या है? कौन सी परिस्थितियां बाल श्रम की श्रेणी में आती हैं?
2: देखिये, बच्चा जिसके वास्तविक, अभी मैंने आपसे कहा कि उनको उनके जीवन जीने का अधिकार, आप स्वयं में एक बार सोच के देखिए जीवन जीने का अधिकार क्या है। जब हम जीवन को जीने के लिए अपने आसपास की जो गति है उसका उपयोग करते हुए अपने जीवन को संचालित करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए जो तमाम चीजें आवश्यक हैं, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो मकान है, चाहे वो उपयुक्त भोजन, उपयुक्त पानी की व्यवस्था है, इत्यादि सबकी व्यवस्था को प्राप्त करना एक बच्चे के जीवन जीने का और उसके विकास का अधिकार है। पर इन सबसे इतर उसके हाथ में यदि कलम की जगह कुल्हाड़ी पकड़ा दी जाए, उसके हाथ में यदि ऐसी सामग्री उसके मतलब उसके उस उम्र का दोहन करते हुए उससे मजदूरी करवाई जाए, तो ये बाल श्रम की श्रेणी में आता है।
1: जी मैडम, भारत में बाल श्रम की स्थिति को आप किस तरह से देखती हैं? पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव आए?
2: भारत में जो बाल श्रम की स्थिति है वो सुदूर स्थानों में जब हम बात करते हैं कि चलिए वहां पे जागरूकता नहीं है, या आपको मैं बात करूं तो शहर के भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको हम चोक कर सकते हैं, जिनको हम एक रिमोट एरियाज के रूप में देख सकते हैं, वहां पे अभी भी चंद महज कुछ रुपयों की खातिर और कुछ रुपयों की खातिर ही कुछ लोग उनका शोषण करते हुए बच्चों के बचपन को रौंदते हैं और उनसे बाल मजदूरी करवाते हैं। तो ये स्थिति बहुत से, केवल हम ये नहीं कह सकते केवल गाँव में बाल मजदूरी करवाई जाती है, शहर के भी कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की बाल मजदूरी या बाल श्रम करवाया जाता है, जिसमें कई जगहों पे तो जो हमने पिछले प्रकरण देखे उसमें तो छोटे छोटे से बच्चों को जिनकी उम्र 8 से 10 वर्ष की रही होगी, उनको मुंबई के विरार इलाके में ट्रेन के माध्यम से ले जाया जा रहा था चूड़ियों में, सोने की चूड़ियों में लाख भरने का काम कराने के लिए। ऐसे खतरनाक कामों में भी

0: कराया जाता है
1: जी। मैडम, यदि किसी व्यक्ति को कहीं बाल श्रम होता दिखाई दे तो उसे क्या कदम उठाने चाहिए?
0: उनको तुरंत रूप से, चाहे वो बच्चे भी क्यों ना हो, चाहे वो बड़े या कोई भी व्यक्ति हो, तत्काल रूप से वो चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर 1098 पे फोन कर दें। एक और विशेष बात जो मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगी, अब प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक स्लेट और पट्टी के आकृति में बाल कल्याण अधिकारी का नंबर लिखने का अनुशंसा बाल आयोग के द्वारा किया गया है। बाल कल्याण अधिकारी CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो अधिकारी हैं उनका नंबर वहां पे लिखा जाएगा। आप उनको बिल्कुल निश्चिंत होकर सूचना कीजिए, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। और इस स्थिति में यदि आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं, चाहे 1098 पे फोन कर सकते हैं, अथवा आप थाने में जाके बाल कल्याण अधिकारी पे फोन कीजिए, तुरंत बच्चों का रेस्क्यू किया जाएगा और आप एक पुण्य कार्य के सहभागी हो जाएंगे
1: जी। मैडम, मेरा आखिरी सवाल है कि क्या सरकारी योजनाएं और शिक्षा अभियान बाल श्रम को कम करने में प्रभावी साबित हो रहे हैं?
0: बहुत हद तक प्रभावी है, पर अभी बहुत अधिक काम करने की जरूरत है, ये सत्य है। और इस दिशा में बहुत अधिक जागरूकता के साथ साथ गर्व युक्त कार्यवाही नहीं, मर्म युक्त कार्यवाही की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और इसमें कोई पर्टिकुलर एक विभाग की टीम नहीं, सभी टीम को एक मुस्तैदी के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे पिछले एक वर्ष में आयोग का साथ दिया है आप सभी टीम ने, उसी प्रकार से टीम को सरकार के द्वारा बनाई गई टीम और आप समाज की टीम को कदम ताल मिला के बच्चों के इस बचपन को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा
1: जी। मैम धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए
0: जी। धन्यवाद।

0: दोस्तों, डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब परिवहन विभाग की सेवाएं भी तेजी से डिजिटल होने जा रही हैं। जल्द ही वाहन मालिक अपने मोबाइल फोन के जरिए यूपीआई आधारित ऐप्स जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से वाहन टैक्स, चालान और अन्य परिवहन शुल्कों का भुगतान कर सकेंगे। यानी अब छोटी छोटी प्रक्रियाओं के लिए बार बार परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है। इतना ही नहीं, भुगतान से जुड़ी जानकारी और नोटिफिकेशन भी सीधे मोबाइल पर प्राप्त हो सकेंगे, जिससे लोगों को समय पर जानकारी मिलती रहेगी। और यह नई व्यवस्था आम लोगों के लिए कितनी उपयोगी साबित होगी, इससे क्या सुविधाएं मिलेंगी और डिजिटल भुगतान व्यवस्था से परिवहन सेवाओं में क्या बदलाव आएंगे, इन्हीं विषयों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक्निकल ऑफिसर परिवहन विभाग सीएल देवांगन जी। देवांगन जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: नमस्कार जी, धन्यवाद। बताइए
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि परिवहन विभाग की नई यूपीआई आधारित भुगतान व्यवस्था क्या है और यह कैसे काम करेगी।
1: जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बीपीपीएस है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये उसी पे आधारित होगा, जहाँ पे यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो होता है उसके माध्यम से आप परिवहन विभाग से संबंधित जो टैक्स है या पेनल्टी से चलान का भुगतान कर सकते हैं। ये इस प्रकार है, मान के चलिए कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, उस प्रकार से आप कोई भी भीम ऐप या फिर फोन पे ऐप है उसके माध्यम से आप ये भुगतान कर सकते हैं।
0: जी सर, इस सुविधा के शुरू होने से आम वाहन मालिकों को सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा।
1: इस सुविधा से सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी वर्तमान में जो परिवहन विभाग के जो भी टैक्स पेमेंट या पेनल्टीज पेमेंट का जो सिस्टम है, वो परिवहन के ऑनलाइन वेबसाइट में जाके आप पेमेंट करना होता था। वहां पे कुछ क्रेडेंशियल भी लगते थे और कई बार आप फर्जी वेबसाइट होने के भी अंदेशा होता था। क्योंकि ये पूरी सिस्टम यूपीआई सिस्टम सिक्योर सिस्टम है, सो आप एक बार जब उस सिस्टम में आप पंजीयन हो जाएंगे तो आपको बार बार पेमेंट के लिए एंट्री नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली वहां से पेमेंट कर सकते हैं।
0: जी देवांगन जी, एक सवाल ये है कि अब तक परिवहन विभाग में भुगतान प्रक्रिया के दौरान लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था।
1: सबसे पहले जो भुगतान प्रक्रिया थी, चूंकि वो वेब बेस्ड होता था तो मोबाइल में पेमेंट करने में दिक्कत होता था। सेकंड होता था वेब पेज में जाना, तो उसके लिए प्रॉपर केबल कंप्यूटर या फास्ट इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि सेंट्रल बेस्ड पोर्टल होने से पूरे इंडिया में उसमें ट्रांजेक्शंस होते थे। सो यहाँ पे फायदा ये रहेगा कि मोबाइल बेस्ड होने से कम इंटरनेट के हैंडलिंग में भी आप पेमेंट कर सकते हैं, तो पेमेंट फेल्ड के चांसेस में और कम हो जाएंगे और तत्काल आप पेमेंट सिस्टम ऐसे पेमेंट कर सकते हैं सिस्टम से।
0: जी सर, इस सुविधा यानी भुगतान के लिए लोगों को कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म या एप्स का उपयोग करना होगा।
1: इसमें जो गवर्नमेंट द्वारा जितने भी डिजिटल सिस्टम है, चाहे आप भीम पे सिस्टम से जा सकते हैं या अन्य जो भी बैंकिंग ऐप है, जैसे SBI का योनो है या और अदर बैंकिंग सिस्टम है, तो वहाँ पे भी UPI पेमेंट का सिस्टम होता है, वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं।
0: जी सर, एक सवाल है कि क्या इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और भुगतान संबंधी विवादों में कमी आएगी।
1: बिल्कुल, इस चीजों से पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही, और जो क्योंकि इसमें लो नेट हैंडलिंग से काम हो जाएगा, पेमेंट प्रोसेस इजी हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, तो ट्रांजेक्शन फेल्ड के चांसेस जब कम होंगे तो लोगों में शिकायतें की जो आती है या चार्जबैक की जो केसेस आती है वो कम होंगी, और लोगों में एक दुविधा होती है कि हम सही साइट पे जाके पेमेंट कर रहे हैं, इसकी जो दुविधा होती है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो आपके मोबाइल प्लेटफॉर्म से जब पेमेंट होगा तो सही जगह ही उसका पेमेंट होगा।
0: जी सर, ग्रामीण क्षेत्रों या डिजिटल तकनीक से कम परिचित लोगों के लिए विभाग ने क्या विशेष व्यवस्था की है।
1: परिवहन विभाग ने पूर्व में ही, चूंकि इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हर लोकेशन रूरल

0: उस एरिया में नहीं होने के कारण परिवहन विभाग ने परिवहन सुविधा केंद्र का संचालन किया हुआ है, तो परिवहन सुविधा केंद्र के माध्यम से परिवहन संबंधित जो आवेदन है या शुल्क या टैक्स जमा की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध की गई है। अभी वर्तमान में लगभग 500 से अधिक परिवहन सुविधा केंद्र जो है राज्य भर में संचालित।
1: जी सर, आखिरी सवाल है मेरा कि डिजिटल भुगतान के दौरान साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: भुगतान के समय किसी थर्ड पार्टी ऐप जो है या जो अननोन लिंक है उसमें यूज ना करके जो ऑथेंटिकेट ऐप है, जैसे कि मैंने बताया कि बैंकिंग ऐप है, क्योंकि बैंकिंग ऐप ऑलरेडी सिक्योर होता है, तो वहां से आप पेमेंट करेंगे तो आपको मतलब ज्यादा सिक्योर होगा और उसमें सारी जो ट्रांजेक्शन के दौरान जो सिक्योरिटी मेजर है सारे उसमें फॉलो अप होते रहते हैं, तो वहाँ पे ज्यादा सेफ है।
1: जी सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए।
0: थैंक यू।

0: साथियों, देश की विकास यात्रा को समझने के लिए समय समय पर यह देखना जरूरी होता है कि सरकारों की नीतियों और योजनाओं का आम जनता के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल और इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों की, चाहे बात आधारभूत संरचना की हो, डिजिटल सेवाओं के विस्तार की, वित्तीय समावेशन की, स्वास्थ्य सुविधाओं की, महिला सशक्तिकरण की या फिर ग्रामीण और शहरी विकास की। इन वर्षों में कई योजनाओं और पहलें चर्चा का विषय रही हैं। हालांकि किसी भी सरकार के कार्यकाल का मूल्यांकन केवल उपलब्धियों से ही नहीं बल्कि उसके प्रभाव, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि बीते 12 वर्षों में देश में कौन कौन से प्रमुख बदलाव देखने को मिले, विभिन्न योजनाओं का क्या असर रहा और आगे की राह क्या हो सकती है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी। स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: जी नमस्कार।
0: सर, सबसे पहले हमें बताइए कि केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को आप समग्र रूप से किस तरह से देखते हैं?
1: देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है, मुझे ऐसा लगता है कि जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद उसको ज्यादा बेहतर तरीके से हम देख पाते हैं, उस बारे में बेहतर तरीके से आकलन कर पाते हैं। लेकिन चूंकि आपने पिछले 12 वर्षों का जो कार्यकाल है, जिसको निर्वाचित किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल कहा जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे इस कार्यकाल के दौरान देश में काफी विकास चीजें हुई हैं, कुछ नए फैसले लिए गए जो काफी बड़े फैसले लिए गए, और मुझे ऐसा लगता है कि समग्र रूप से देखा जाए तो ये इस कार्यकाल के दौरान काफी विकास हुआ देश में जी। और ये बड़े फैसलों का कार्यकाल रहा है
0: जी। सर, इस अवधि की ऐसी कौन सी प्रमुख उपलब्धियां हैं जिन्होंने आम नागरिकों के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया?
1: देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ योजनाएं हैं, जैसे महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं और किसानों से संबंधित योजनाएं हैं, जो किसानों को जो प्रतिमाह जो उनको मिलता है, जो इनपुट जो मिलता है वो। उसके अलावा महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं, जिसमें आप चाहे वो जो इज्जत घर जिसको कहते हैं उसको लेकर है, तीन तलाक की जो वो समाप्त करने वाली जो बात है, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए है, मुस्लिम बहनों के लिए
0: जी।
1: तो इस तरह की महिलाओं से संबंधित योजनाएं, किसानों को लेकर योजनाएं, जो किसानों को आय दोगुना करने की कोशिश की बात की जा रही थी और लगातार उस पर देख रहे हैं कि प्रयास हो रहा है, और कुछ अलग जो आप मैं कहता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से भी अलग अलग चीजें हुई हैं। उसके अलावा जो आम लोगों को प्रभावित करे, हालांकि इसमें बहुसंख्यक हिंदू आबादी को जो प्रभावित किया उसमें राम मंदिर का निर्माण है, उसके अलावा धारा 370 की समाप्ति है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो योजनाएं हैं या तो फिर ये जो काम है वो आम लोगों को प्रभावित जरूर किया।
0: सर, अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को केंद्र की विभिन्न योजनाओं से किस प्रकार लाभ मिला है?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी समस्या थी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से पहले और राज्य निर्माण के बाद जो विरासत में मिली थी छत्तीसगढ़ को, जो समस्या नक्सलवाद की समस्या, अगर केंद्र का बराबर सहयोग नहीं मिलता, केंद्र का पूरी तरह से सहयोग नहीं मिलता, तो ये समस्या की जो समाप्ति है वो नहीं हो पाती। आज हमारे सामने सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर का जो इलाका, जिसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा था, वहां पे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, सड़कें नहीं बन पा रही, अस्पताल नहीं जा पा रहे थे, केंद्रीय योजनाओं का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा था, अगर वो सबसे बड़ी समस्या जिसकी वजह से थी वो नक्सलवाद की समस्या, केंद्र सरकार की पहल की वजह से, केंद्र सरकार के द्वारा सहयोग के कारण ही यह समस्या का समाधान हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए सारी योजनाओं को, जो भी योजनाएं हैं वो देश भर के लिए अलग अलग योजनाएं चली थी, उसमें छत्तीसगढ़ शामिल था
0: जी।
1: और भी जो राशन, मुफ्त राशन या फिर आयुष्मान कार्ड से संबंधित जो योजना थी वो तो पूरे देश में शामिल था, लेकिन आप पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा सहयोग नक्सलवाद की समाप्ति का था, जो केंद्र के बिना संभव नहीं था
0: जी। सर, केंद्र सरकार का एक बड़ा लक्ष्य है विकसित भारत 2047, इस लक्ष्य को हासिल करने में वर्तमान नीतियों की क्या भूमिका हो सकती है?
1: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बारे में कहते रहे हैं और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी या तो फिर जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री लगातार इस बारे में जोर देते रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं और उस पर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं और मुझे ऐसा लगता है कि केवल योजनाओं से नहीं, मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि केवल योजनाओं से नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, उस पर आपकी क्या मॉनिटरिंग हो रही है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम 2047 तक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि केवल ये सरकार की कल्पना नहीं होनी चाहिए, आम लोगों की कल्पना होनी चाहिए, इसमें आम नागरिकों को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इस देश से कुछ हद तक तो उसमें लगाम लगाए हैं, लेकिन इस देश से अगर हम जब तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाएंगे तब तक आप विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि एक बड़ा पैसा, अगर बड़ा जो संसाधन है, अगर भ्रष्टाचार पे चला जाएगा और इस तरह की गलत चीजों पे चला जाएगा तो हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अभी तक इस कार्यकाल में, सरकार के इस कार्यकाल में, अभी तक 12 वर्ष के कार्यकाल में कोई बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, लेकिन छोटी छोटी जो चीजें हैं जो ग्राउंड लेवल पे हमको पेपर दिखती हैं, आम लोगों को कोई समस्या ना हो, आसानी से उनका काम हो, तो जब आप विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो विकसित भारत का मतलब केवल विकास के रूप में सड़क या बड़े बड़े मॉल्स या बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स को नहीं गिना जा सकता। विकसित भारत का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक अंतिम व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं कम से कम निश्चित तौर पे मिलनी चाहिए उन्हें। तो अगर ये इसकी कल्पना करते हैं तो 2047 तक ये जो योजनाएं हैं तो निश्चित तौर पे ये आगे बढ़ाने वाली योजनाएं हैं देश को। मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार पर भी काम करना चाहिए, जो छोटे छोटे जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं या तो फिर जिस तरह से छोटा सा छोटा क्यों ना हो उस पर अपन उसको रोकने की कोशिश करें।
0: जी सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: तो दोस्तों, इसी के साथ आज के नमस्कार रायपुर कार्यक्रम में हमें दीजिए अनुमति। आज हमने बात की बच्चों के बेहतर भविष्य की, बाल श्रम जैसी सामाजिक चुनौती की, तकनीक के जरिए आसान होती सरकारी सेवाओं की और देश की विकास यात्रा की। इन सभी विषयों का एक ही संदेश है, बदलाव तभी सार्थक होता है जब उसका लाभ आम लोगों तक पहुंचे और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बेहतर बने। मैं आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया। अब आप लीजिए इस मधुर गीत का आनंद और अपने रेडियो साथी अंकुर शुक्ल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: डिजिटल अरेस्ट, इसमें ठग अपने आप को पुलिस का अधिकारी या कस्टम का अधिकारी बताकर कॉल करता है और इनके द्वारा ऐसा बताया जाता है कि आपकी निजी बैंक अकाउंट, आधार कार्ड का यूज़ इनलीगल एक्टिविटी में हो रहा है, जैसे हवाला का पैसे के ट्रांसफ़र पे या ड्रग्स के व्यापार पे, और इस प्रकार आपको भय या डर के आधार पर आपके साथ ठगी करने का प्रयास किया जाता है। इसमें आम व्यक्ति समानता डर जाता है, तब ठग उन्हें वीडियो कॉल करता है और यह बोलता है कि आप अपनी लीगल प्रोसेस के लिए एक एक्स या वाई किसी सिटी पे पिछले 2 घंटे के अंदर पहुंचिए। जब आप उस सिटी में पहुंचने में असमर्थ होते हैं, तब वह बोलता है कि जब तक लीगल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, आप वीडियो कॉल में बने रहेंगे और लगातार आपको डरा और धमका कर आपके साथ ठगी करने का प्रयास करता है। कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। आप हमेशा सतर्क रहें। कोई भी पुलिस ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर वीडियो कॉल पे कोई भी लीगल प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराता। यदि फिर भी आपके साथ किसी प्रकार की ठगी होती है, तो आप 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, प्रस्तुतकर्ता थे अंकुर शुक्ल। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: आज सिर्फ एक MOU से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है, उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है, इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
5: We signed this year a free trade agreement with Europe.
6: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
7: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
8: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
7: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार PM ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में PM ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला

0: याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पश्चिम पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना, हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
3: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over rupees 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
4: वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
5: In the area, we see immense potential of hydrocarbon. At the initiative of Union Home Ministry, particularly at the initiative of Honorable Union Home Minister, both Assam and Nagaland is joining hands to share the proceeds of this hydrocarbon potential in terms of royalty.

0: इनसे मिले कर गए आईआईटी भिलाई। आईआईटी भिलाई में अभी वहां पर अध्ययनरत शिक्षक प्रोफेसर राजीव प्रकाश जी को इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: आईआईटी भिलाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है और ये संस्थान जमीनी स्तर की समस्याओं से जुड़ने के लिए क्या प्रयास करता है और इनके क्या क्या समाधान हैं, इसके बारे में आप सबसे पहले बताएंगे।
1: तो अगर हम इनमें बात करें तो हमें तीन कैटेगरीज में आईआईटी ने तीन कैटेगरी में इन समस्याओं को रखा है। एजुकेशन को हम अभी फिलहाल नहीं लेते, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिसे हम एग्रीटेक बोलते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, हेल्थ से रिलेटेड जिसे हम हेल्थटेक बोलते हैं, हेल्थ से संबंधित टेक्नोलॉजी, और फाइनेंस जिसमें कि हम व्यापार रोजगार तो उसे फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो इन तीनों को हमने टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, एग्रीटेक, हेल्थटेक एंड फिनटेक। ये हमारी तीन फोकस्ड एरिया हैं जिसमें आईआईटी का मेजर फोकस है। ऑफकोर्स एजुकेशन जैसे मैंने कहा वो तो है ही है, हम एजुकेशन के लिए ही हैं यहाँ, इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए हम हब हैं। सो आईआईटी भिलाई इस तरह से एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में और फाइनेंस कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस चारों पे कार्य कर रहा है। जल्दी जल्दी अगर हम इन चारों को अगर बात करते हैं तो एजुकेशन के लिए स्कूल्स को अडॉप्ट करना, टीयर टू टीयर थ्री कॉलेजेस को लेना और उनके साथ कार्य करना, आईटी पार्क जैसी, रिसर्च पार्क जैसी सुविधाओं को लाने पर विचार करना, और ऑनलाइन एजुकेशन पर बात करना। शायद आगे हमें मौका मिलेगा तो हम इस पर और भी बात करेंगे। अगर हेल्थटेक पे बात करें तो कैसे हम आज की सुविधाओं को आसानी से गांव तक या वनंचल जो वन में रह रहे हैं वहां तक पहुंचा सकें, उस पर कार्य करना एम्स के साथ मिल करके, इस पर भी हम और बात कर सकते हैं आपके साथ। और फिनटेक में आपके जो यहाँ के लोगों में अपनी खूबियाँ हैं, जो हुनर है,

0: इस राज्य की अपनी जिसके लिए ये नोन है, उस एरिया में काम करते हुए, उन व्यवसायों पर काम करते हुए, उसमें कैसे हम धन अर्जन करा सकें, उनको उनकी वृद्धि कर सकें, धन की प्राप्ति की, और कैसे उनको आधुनिक बना सकें, इस पर कार्य करना। तो इसमें कार्य करने के लिए हम लोगों से जुड़ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी महिलाओं से जुड़ करके 4000 से ज़्यादा महिलाओं को हमने ट्रेनर बनाया है, जो ट्रेनिंग दे रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं को, तो उनसे उनके व्यवसायों को आगे ले जाना, वनों में जाकर के कुछ प्रोजेक्ट चलाना। तो जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए IIT भिलाई ने पूरे देश के लिए कार्य किया, विशेष ध्यान छत्तीसगढ़ पर रखते हुए कुल 20 करोड़ के प्रोजेक्ट्स IIT भिलाई ने दिए। ये प्रोजेक्ट्स ऐसे थे कि जिसमें विभिन्न संस्थानों में इंडस्ट्रीज़ के लोग जो उत्सुक हैं इस तरह के कार्य करने के लिए, जिसमें ट्राइबल डेवलपमेंट की बात की जाए, तो उन एरियाज़ में उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जो जमा किए IIT में, उसका हमने रिव्यू किया और उनके साथ हैंड होल्डिंग करके और उन्हें धन भी दिया और उनकी फंडिंग करके ऐसे प्रोजेक्ट्स को चला रहे हैं। तो जिनसे कि छोटे छोटे रोजगार आए, व्यवसाय आए, जो कार्य वो कर रहे हैं उसको आगे लेके चले। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए IIT के पाठ्यक्रम भी उस तरह से बदले गए हैं, छात्र छात्राओं में भी उस तरह का भावना प्रकट हो, ऐसा करके भी हम लोगों ने कोशिश की है। एडॉप्टेशन स्कूलों का करना, ऐसा हम लोगों ने शुरू किया। अभी एक स्कूल जिसको कि हमारे ठीक बाउंड्री वॉल से लगा हुआ आप कह सकते हैं कि स्कूल था, जिनमें बच्चे बड़े ही उत्सुकता के साथ हम लोगों के साथ जुड़ते थे, आते थे, पढ़ते थे, तो उनको हमारे यहाँ के अध्यापक लोग भी और छात्र भी सब ध्यान रखते थे। तो उन बच्चों के रिजल्ट्स आए अभी, तो देख के बहुत खुशी हुआ कि 75% से ऊपर सभी ने मार्क्स पाए जो भी हमसे जुड़े हुए थे, और प्लस उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखी। इवन AI भी हम अब उनको सिखाते हैं स्कूल लेवल से। तो इस तरह से इन चीज़ों पर हम लोग कार्य कर रहे हैं।
1: प्रदेश की स्थिति के अनुसार यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की ज़रूरतों को समझते हुए IIT भिलाई कार्य कर रहा है, जैसा कि आपने बताया। अब हम भिलाई के कैंपस के बारे में जानना चाहेंगे कि इस कैंपस के नए इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक लैब और दूसरी खासियतों के बारे में भी आप बताएं।
0: अगर कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यह गृह अवार्डी कैंपस है, गृह 5-स्टार अवार्ड इस कैंपस को मिला है, इसके डिज़ाइन को, इस कैंपस को। हम नेट जीरो जिसे कहते हैं, मतलब आप कंप्लीट रूप से अपने पानी, अपने बिजली के लिए, आप अपने ऊपर अपनी ऊर्जा के लिए अपने ही उसे पैदा करें, इसकी तरफ हम अग्रसर हैं। एनर्जी में भी अभी एक बड़ी पहल की है, हमारे सारे बिल्डिंग जो भी जितनी भी हैं, कुल 1.5 लाख स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन है 400 एकड़ में। तो इन सब का रूफ टॉप खाली जनरली फ्री होता है, तो उसके ऊपर सोलर एनर्जी लगाई जाए। अभी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि हम सोलर एरिया में पूरी दुनिया में आगे जा रहे हैं, और बहुत इजी है, इससे आपका वो बिल्डिंग भी कूलिंग रहती है अगर छत पे अगर सोलर पैनल लगे हैं, तो हम अपनी एनर्जी भी खुद पूरा बना सकें, इसकी तरफ भी हम अग्रसर हैं। नई आधुनिक सुविधाओं की अगर आप बात करें, तो चूँकि नई IITs हैं, तो ये कि फ़ायदा, एक लाभ मिलता है आपको कि आप पुरानी सारी IITs में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कमियाँ थी, क्या होना चाहिए, उसे आपको देखने का एक मौका मिल जाता है, और आप शुरू से ही उन बातों को देख करके, सोच करके आगे बनाते हैं। दुनिया की स्टेट ऑफ आर्ट्स जो है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, आप उसे लाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब लाने की कोशिश की गई। IIT भिलाई को 2 फेज में पूरा होना है। पहला फेज पूरा हो चुका 2024 में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया February 20, 2024 को, और डेडिकेट किया नेशन को। फेज 2 अब जल्दी ही शुरू होगा, और इतना ही करीब 1.5 लाख स्क्वायर मीटर एरिया का निर्माण फिर से किया जाएगा, और इस तरह से 2 फेजेस के बाद ये एक कह सकते हैं कि आधुनिकतम IITs में से एक होगा। स्टेट ऑफ आर्ट सुविधाएं हैं, अच्छे से अच्छे उपकरण जिनकी आप जरूरत सोच सकते हैं इंजीनियरिंग में वो हैं। नए नए विषय भी जोड़े गए हैं, मेकाट्रॉनिक्स जैसा विषय जो आधुनिक विषय है, जिसमें अभी बहुत कम IITs शिक्षा दे रहे हैं, वो मेकाट्रॉनिक्स की हम पढ़ाई कराते हैं, जिसमें BTech भी हम देते हैं। और EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी बड़े डिमांड में हैं, उस पर भी हम एक अलग से डिसिप्लिन ही रखा है, डिसिप्लिन है EV जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है।

0: AI, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ये सारे तो आज बहुत ही आधुनिक सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टो, ये सारे सब्जेक्ट्स पर हमें पढ़ाइयाँ, रिसर्च हो रहे हैं. इन्वायरमेंट से प्रति जागरूकता रहे, सजगता रहे, इसलिए छात्र छात्राओं को उस पर भी क्लासेस कराई जाती हैं. एंटरप्रेन्योरशिप, अब छात्र में शुरू से ही जॉब सीकर ना हो, जॉब देने की भावना आए, जॉब अपना करें, खुद करें, ऐसा करने के लिए इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स, इंटरप्रेन्योरशिप पर भी कोर्सेज चलाए जाते हैं.
1: राजीव सर, यहाँ 3D मॉडलिंग और डिज़ाइन कोर्स पर भी खास जोर दिया जाता है, हमें पता चला है. तो आप बताएं कि फैब्रिकेशन लैब और इलेक्ट्रिकल लैब और 3D प्रिंटिंग लैब के बारे में, जो कि 3D मॉडलिंग और डिज़ाइन कोर्स का एक अहम हिस्सा है.
0: एकदम आपने सही कहा. आज अगर आप देखें तो 3D प्रिंटिंग से आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी बनाए जा रहे हैं, 3D प्रिंटिंग से तरह तरह के स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, और 3D प्रिंटिंग से यहाँ तक कि घर और मकान भी बनाए जा रहे हैं. तो ये 3D प्रिंटिंग, आप कह सकते हैं कि इसको अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इन तीनों में अगर मिला के देखें तो 3D प्रिंटिंग का काफ़ी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, और इस बात को शुरू से ही सोचा गया. तो प्रोटोटाइप 3D प्रिंटिंग जैसी लैब को हम लोगों ने स्वरूप से ही ध्यान देते हुए बनाया. तो इस दिशा में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आधुनिक से आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सबको ला करके हम लोगों ने एक 3D प्रिंटिंग लैब बनाई है. बहुत आधुनिक लैब है, इसमें स्टूडेंट्स आकर के सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, और इंडस्ट्रीज जो जिन्हें, जैसे मैंने कहा, अगर इम्प्लांट चाहिए, इम्प्लांट मटेरियल्स लेना है कोई बायोमेडिकल में या कोई सर्जरी के लिए, तो उस तरह के इम्प्लांट्स भी बनाए जा सकते हैं. ऑटोमोबाइल्स या किसी और सेक्टर में अगर किसी स्पेसिफिक टूल्स की ज़रूरत हो, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट को हम लोगों ने ये ऑफर दे रखा है कि कोई स्पेसिफिक पार्ट किसी टूल का ज़रूरत हो, तो उसको हम डिज़ाइन करके आपको दे सकते हैं. तो ये सारी एरियाज़ के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग हो रहा है, और हम लोग इस एरिया में अच्छे से IIT भिलाई में एस्टेब्लिश है.
1: अगर हम देश की नई शिक्षा नीति 2020 की बात करें, तो इसके तहत IIT भिलाई में कौन कौन से नए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, इसके बारे में आप बताएं.
0: जी, महत्वपूर्ण ये विषय है. नई शिक्षा नीति जो हमारे राष्ट्र की आई, जिसे हम NEP कहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके तहत अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ फ्रीडम था, काफ़ी कुछ रिलैक्स किया गया, उनको बहुत सारे ऐसे विषयों को पढ़ने में भी सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई, जिन्हें कि कन्वेंशनल सिस्टम में नहीं पढ़ा जा सकता था या मुश्किल था. अगर बड़ा ही आसान शब्दों में अगर हम इसे समझाएं तो साइंस का विद्यार्थी साइंस पढ़ेगा, आर्ट्स का विद्यार्थी आर्ट्स पढ़ेगा, मेडिकल का विद्यार्थी मेडिकल पढ़ेगा, ऐसा करके है, जिसमें कि अभी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश की गई. जैसा मैंने आपको कहा कि हम हमारा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मेडिकल भी पढ़ सकता है, तो कुछ भी विषय, जैसे हमारे यहाँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अगर शुरू की गई तो हमारे स्टूडेंट्स एम्स में भी जा करके क्लासेस करते हैं. तो हफ्ते में एक दिन वो स्टूडेंट्स एम्स जाते हैं, वहाँ पर क्लास करते हैं. तो ऐसे विषयों को लाया गया, सेलेबस को नया बनाया गया, और सिलेबस में इस तरह की छूट दी गई, ऐसे बातों को डाला गया कि जिससे कि स्टूडेंट्स अपनी चाहत के हिसाब से सब्जेक्ट को ले सके, हाँ, पर वो मिस ना हो जाए, एक उनको डायरेक्शन भी दिया गया और सब्जेक्ट्स को लिंक्स भी किया गया कि ताकि वो इंटरडिसिप्लिनरी या ट्रांसडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स बने रहें. मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र अगर बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो ठीक है, वो इसलिए पढ़ना चाहता है कि बहुत से बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, फ्लूइड डायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ती है. तो इन सब को सोच करके उस तरह के सिलेबस को भी बनाया गया. प्लस इसके अलावा हॉबी कोर्सेज या अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कोर्सेज लेने के लिए उन्हें फ्रीडम दी जाए, जो कि ठीक है, वो अपनी हॉबी के हिसाब से लेगा. वो म्यूज़िक पढ़ना चाहता है इंजीनियरिंग करते करते, तो ऐसे ओपन इलेक्टिव्स के नाम पे, ओपन कोर्सेज के नाम पे भी कोर्सेज लाए गए. नए प्रोग्राम्स की शुरुआत, जैसे मैंने पहले भी अभी बताया, कई नए कोर्सेज भी IIT ने शुरू किए हैं. और इसमें एक महत्वपूर्ण और बात है कि हमने NEP में मल्टीपल इंट्री तो नहीं कह सकेंगे कि अभी पूरी तरह से हम लागू कर पाए हैं, बट एग्जिट दिया है. अगर स्टूडेंट ने काम करते हुए लगा कि नहीं उसे एक वर्ष जा करके अपना कोई रोजगार, अपना कोई स्टार्टअप या कोई और बात करनी चाहिए या कहीं और जाके उसको एक साल पढ़ना चाहिए, तो इस तरह का सेमेस्टर से सेमेस्टर आउट करने का प्रोग्राम, सेमेस्टर ब्रेक का प्रोग्राम, इस तरह के, या वो ड्रॉप करना चाहे कि नहीं ठीक है मैं दो साल पढ़ लिया, अब मुझे अपना काम शुरू करना है, रोजगार शुरू करना है, तो उसे एक एग्जिट के लिए डिप्लोमा दे करके डिग्री की जगह बीटेक की जगह डिप्लोमा दिया, सर्टिफिकेट दिया, ऐसा व्यवस्था भी कर दी गई है। एक बात और जोड़ेंगे, सिर्फ यही नहीं, एनईपी सिर्फ आईआईटी भिलाई ही नहीं लागू करे, हम एनईपी और संस्थान कैसे लागू करें, उसके लिए आईआईटी आज एक नॉलेज हब की तरह है। हमने यहाँ के और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में उनको भी हम जा करके ट्रेनिंग दे रहे हैं या उनके लोग आकर के हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी हाल में कई स्कूल के प्रिंसिपल्स के कई प्रोग्राम हुए जिसमें 50-50 की टोलियाँ बना करके उनके प्राध्यापकों को, उनके आचार्यों को बुला करके ट्रेनिंग दिया गया। तो एनईपी को राज्य में अच्छे से लागू करने के लिए आईआईटी भिलाई कटिबद्ध है।
1: श्रोताओं, इनसे मिले कार्यक्रम में आज हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजू प्रकाश जी को, और आप आईआईटी भिलाई से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दे रहे हैं। तो राजीव सर, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मन कर रहा है कि आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाया जाए।
0: एक दो गीत ऐसे हैं जो काफ़ी दिल के करीब रहे हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रीत।

0: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजू प्रकाश जी। राजू साहब, आज का दौर प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के साथ साथ ऑनलाइन का भी सहारा ले रहा है और आज तो ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में ऑनलाइन के कार्यक्रम की बात करें तो ये किस तरह से सहायक साबित हो रहा है?
1: बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑफलाइन शिक्षा दे पाना, सभी को एक जगह बुला करके क्लासरूम में बिठा के शिक्षा दे पाना, ये थोड़ा मुश्किल भी है और मैं मानता हूं कि ये उतना अनिवार्य भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको आप आसानी से ऑनलाइन से दूरस्थ शिक्षा दे करके कर सकते हैं और वो अपने जगह पे बैठे हुए, अपने संस्थान पे रहते हुए उस शिक्षा को ले सकता है और कर सकते हैं। ऐसा करके आईआईटीज ही नहीं, बहुत से और भी संस्थानों में ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ। आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसका एक सफल प्रयोग कोविड के दौरान हुआ, जो उस समय ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया गया वो आगे भी बड़े सफलता से चलता रहा। आईआईटी भिलाई भी बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन देते हैं। और इसमें एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोगों ने बहुत सारे डिग्रियां ऐसी इंट्रोड्यूस की हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके लिए आपको जेईई एडवांस जैसी परीक्षा को पास करके आने की जरूरत नहीं है। बिना उन परीक्षाओं के पास किए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आप किसी इंडस्ट्रीज में इंजीनियर हैं, आप वहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयड हैं। अब आपको लगता है एक नया एआई आ गया, एमएल आ गया और एआई एमएल का ज़माना है, अब हम कैसे अपने को इम्प्रूव कर लें, अपस्किल कर लें, तो इसके लिए आप अपने कार्य को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप करते रहिए। परमिशन ले लीजिए वहाँ अपने एम्प्लॉयर से कि मैं एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है आईआईटी का, मैं वहाँ जुड़ना चाहता हूँ, और आप जुड़ जाइए इस प्रोग्राम में। ये सारे कोर्सेज या तो शाम को चलते हैं, नहीं तो वीकेंड्स पे चलते हैं और वीकेंड्स में एक तरह से पैकेज बना करके ये डिलीवर करते हैं। वैसा ही है जैसा कि आपके सेमेस्टर्स होते हैं प्रोग्राम्स में, दो हर साल में दो सेमेस्टर एग्जामिनेशन। हाँ, एग्जामिनेशन के लिए हम लोग ऑफलाइन बुलाते हैं, बीच बीच में भी हम लोग ऑफलाइन बुलाते रहते हैं ताकि आप कैंपस को देख सकें और आप उस तरह से ही उन सब्जेक्ट्स में जो हम ऑफलाइन दे रहे हैं आप ऑनलाइन भी उन सब्जेक्ट्स में अपनी डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं।
0: हमारा छत्तीसगढ़ राज्य एक जनजाति बाहुल्य राज्य है। अगर हम जनजातियों के लिए शोध की बात करें तो आईआईटी भिलाई में किस तरह के शोध किए जा रहे हैं?
1: जैसे मैंने पहले भी कहा, जनजातीय समाज हमारा जुड़ा हुआ है खेती से, वनों से, वनोपज से और कुछ ऐसे रोजगारों से जो यहाँ के लिए यूनिक हैं, खनन से संबंधित हैं, लॉ से संबंधित हैं, एलॉयज हैं, जैसे कि मेटल वर्क यहाँ का बहुत फेमस है, बहुत से बुनकरी और काश्तकारी भी फेमस है। अगर कोसा की बात करें तो कोसा सिल्क, उससे बने हुए वस्त्र आभूषण, ये सारे यहाँ किए और ये अपने आप में अनूठे हैं, ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेटल वर्क की बात करें, आईआईटी के लिए एक एरिया है मेटलर्जी जिसे हम कहते हैं, और मेटलर्जी में जब हम यहाँ का मेटल वर्क देखते हैं, यहाँ का एलॉय देखते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हजारों साल पहले उस तरह के एलॉयज, उस तरह के मेटल वर्क यहाँ होते थे जो अपने आप में बहुत ही अनूठे हैं, और उस तरह से मेटल वर्क कैसे इन्होंने किया इसको सोच करके आश्चर्य होता है। इसके अलावा बुनकरी है, कोसा है, कोसा सिल्क है, बट ये सारी एरियाज़ में अभी आधुनिकता लाने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते हैं कि इनके जो ज्ञान है, इनका नॉलेज जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं, उसको सपोर्ट करने के लिए आधुनिकता लाने की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट करने के लिए मशीन की ज़रूरत है। इसलिए उनकी अपने नॉलेज को, उनकी अपनी हुनर स्किल को देखते हुए हम आई

0: इस ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला रहा है, दे रहा है जो उनको सुविधाजनक हो। एक छोटे छोटे उदाहरण इसके साथ लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे वनोपज है और बहुत ही अच्छे अच्छे वनोपज हैं, महुआ से लेकर के फुटू तक की बात है, और वो अपने आप में बहुत ही पौष्टिक भी हैं, उनके अच्छे खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं, बट उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका प्रोसेसिंग, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो उसमें कुछ मशीनें डाल दी जाए जो आसानी से उनको प्रोसेस कर सके, उन्हें सुखा सके, काट सके, सीड बाहर निकाल सके। इमली है तो कैसे जल्दी से सीड को बाहर निकाला जा सकता है, कैसे उसे हम ड्राई करवा सकते हैं, उसके पाउडर बना सकते हैं ताकि ये उसका कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सके। तो इस तरह से वनोपज में उन्हें सुविधाएँ करने के लिए वो आसान टेक्नोलॉजीज को देना। तो अभी बस्तर पंडुम हुआ था, तो बस्तर पंडुम में IIT भिलाई ने एक बड़ा स्टॉल लगाया जिसमें छोटे छोटे ऐसे उपकरणों की वहाँ पे मेला लगाई कि भाई ये उपकरण IIT भिलाई आपको बहुत आसानी से सस्ते में या लोन में उपलब्ध करा सकता है। उसकी बात करें तो यहाँ पर कोसा सिल्क और टेक्सटाइल्स है, तो टेक्सटाइल्स के भी एरिया में हम लोगों ने अभी कैसे आप उसमें नए डिज़ाइंस को ला सकते हैं, कंप्यूटर एडिट प्रोग्राम कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग उनको मदद पहुंचा रहे हैं। मेटल वर्क के लिए जो मैंने पहले भी आपसे कहा, उनकी मेटलर्जी धीरे धीरे यहाँ पे ये कार्य कम होता गया, बंद होने लगा, लेकिन इसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए भी प्रोजेक्ट्स हम लोग लगा रहे हैं। अपने यहाँ भी हम लोग वर्कशॉप करते हैं, उनको भी उसमें प्रोत्साहन करना। और एक लास्ट जोड़ेंगे इसमें, यहाँ की औषधियाँ जो वनोपषधि हैं, जिसमें कि आपकी यहाँ महारत है, उसमें आइडेंटिफिकेशन, वैलिडेशन, करेक्टराइजेशन, ये सब करने के बाद उन औषधियों को ऑथेंटिक रूप से आप बाजार में पहुंचा सके। क्योंकि मार्केट में पहुंचने के बाद ये लगता है कि ये औषधि ठीक है लेना क्या, कि नहीं ठीक है, क्या इससे साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। इन सारे भ्रमों को दूर करने के लिए अगर IIT उनकी जांच स्वतः करके और ऐसे औषधि को अप्रमाणित कर दे कि नहीं ये ठीक है आप ले सकते हैं, तो ये आयुर्वेदा संस्थान के साथ मिलकर के, यहाँ के वैद्यों के साथ मिलकर के IIT इसमें कार्य पिछले 1 वर्षों से कर रहा है, और उम्मीद है बहुत जल्द ही कुछ ऐसे औषधियों को भी मार्केट में ला दिया जाएगा।
1: राजीव सर, 2024 में माननीय राज्यपाल जी ने CCLT की स्थापना की थी, यानी कि IIT भिलाई में संस्कृति भाषा और परंपरा अध्ययन केंद्र, तो आप बताएंगे कि वर्तमान में ये किस तरह से कार्य कर रहा है?
0: ये जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई बात है, जो आपने अभी अपना प्रश्न किया था, ये उसी से जुड़ते हुए एक केंद्र की स्थापना करना। भाषा है, संस्कृति है, उनकी परंपराएं हैं, तो इन परंपराओं को, भाषा को, संस्कृति को कैसे बनाए रखा जाए, संजोए रखा।
1: राजीव सर, हाल ही में IIT भिलाई ने दुर्ग जिला प्रशासन के साथ मिलकर IT पार्क का उद्घाटन किया है, तो इसके उद्घाटन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तो आप बताएंगे कि इस IIT पार्क का उद्देश्य क्या है?
0: IIT पार्क का, जिसमें कि हमारे जो भी युवा हैं वो IT और IoT, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स कहते हैं IoT, और IT और IoT से रिलेटेड अपने रोजगार को आगे ले जाना चाहते हैं ऐसे युवा, उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जहाँ से वो एक आसान शुरुआत कर सकें, जिसमें उनको नॉलेज मिल सके, सपोर्ट मिल सके, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके और गाइडेंस मिले, ताकि जब शुरुआती दौर में कोई स्टार्टअप चलता है तो उसमें बड़ा रिस्क होता है और ज़्यादातर स्टार्टअप वहीं पे बंद हो जाते हैं। ऐसा ना होने पाए इसलिए देश भर में जगह जगह IT पार्क, रिसर्च पार्क, ऐसे पार्कों की स्थापना की जा रही है।
1: देश और प्रदेश के युवाओं की आंखों में आने वाले कल के ढेर सारे सपने हैं, और उन सपनों को साकार करने के लिए वे प्रयासरत भी हैं, तो वे अपने मार्ग पर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके सही दिशा में आगे बढ़ें, इसके लिए हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहें?
0: शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय शिक्षा, उसका अध्ययन करना। आज किसी न किसी तरीके से आप विद्यालयों से इंजीनियरिंग एजुकेशन हो, चाहे आर्ट्स हो, ह्यूमनिटीज हो, कोई भी एरिया हो, उनसे जुड़िए। बहुत तरीके हैं उनसे जुड़ने का, केवल डिग्री के लिए नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और सहयोग की भावना के साथ, टीम वर्क के साथ आगे बढ़ती। कोई भेद नहीं, न जाति का, न धर्म का, न राज्य का, न क्षेत्र का, न भाषा का, एक होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत।

0: ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इस भावना के साथ और वसुधैव कुटुंबकम को मानते हुए कि हमें दुनिया के कल्याण के लिए बात सोच करके करनी है, बढ़े थोड़ा एक बात का ध्यान रखते हुए कि हम अपने लिए ही केवल नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या हितकर है, ऐसा सोच के चलें। यही भारतीयता है, यही भारतीय धर्म।
1: तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये संदेश हमारे सभी युवाओं तक पहुंचेगा और वे युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूर्ण संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे और उनके जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई अगर आए तो उसका सामना भी पूरी हिम्मत के साथ करते हुए वे आगे बढ़ेंगे। यही हमारी शुभकामनाएं आपके इस वक्तव्य के साथ हमारे सभी युवा साथियों के लिए रहेगी, सभी विद्यार्थियों के लिए रहेगी। आदरणीय राजीव प्रकाश जी, आज आपने आकाशवाणी में पधारकर IIT भिलाई के बारे में बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। इस मुलाकात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ इनसे मिले कार्यक्रम का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे IIT भिलाई के निदेशक प्रोफेसर श्री राजीव प्रकाश से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता थे दीपक हटवार। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। नवा बिहान, इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए नमो ड्रोन योजना से लाभान्वित श्रीमती चित्ररेखा साहू से बीरभान साहू के गोट बात।

0: जय जोहार, नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष नारा सबका साथ सबका विकास, एकर ऊपर जब नजर डालथन तब एक बात स्पष्ट दिखाई पड़ते कि सबका साथ यानी सिर्फ सबका साथ और सबका विकास माने सबका विकास, यहाँ कोनो प्रकार के दुराव नहीं दिखाई दे। समाज के हर वर्ग, धर्म, मत, पंथ, मजहब, व्यापारी, उद्योगपति, किसान, जवान, युवा, लड़का, वृद्धजन, सबके सम्मति और सबके संजोग योग संजोग ले समावेशी विकास के बात होते। हर व्यक्ति के जीवन में विकास के किरण पहुँचे, हर व्यक्ति के चेहरा में आत्मसम्मान के भाव उभरे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव दिखाई देते। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अधिकांश जनता खेती किसानी या ओकर ले जुड़े व्यवसाय ले अपन जीवन यापन करते। हमर राष्ट्र के आधी आबादी महिला मन के है और उकर जीवन में प्रकाश ला के उकर आर्थिक सामाजिक स्वावलंबन लाना सरकार की जिम्मेदारी है। यही ला ध्यान में रखत सरकार हा कृषि ले जुड़े ग्रामीण महिला मन के आर्थिक स्वावलंबन लाए के खातिर तरह तरह के योजना लावत है, जिन ले ग्रामीण कृषि से जुड़े नारी मन के जीवन में खुशहाली आवत है। भारत सरकार के ड्रोन दीदी योजना भी यही में से एक है, जेकर माध्यम ले महिला मन में वैज्ञानिक सोच विकास करना और आधुनिक कृषि और कम लागत के कृषि ला बढ़ावा देना आए। कथे ना एक पंथ दो काज, ड्रोन संचालन ले महिला मन के आर्थिक स्थिति में सुधार आई, उन्हें कृषि में उर्वरक दवाई के छिड़काव वैज्ञानिक विधि ले होए ले कृषि लागत में कमी लाए जा सकते और उत्पादन में वृद्धि ले किसान मन के जीवन में भी बदलाव लाए जा सकते। का होते भारत सरकार की ये ड्रोन दीदी योजना, यही सब के ऊपर बात करे बर आज हम स्टूडियो में आमंत्रित करे हन ड्रोन दीदी योजना के लाभान्वित ड्रोन दीदी श्रीमती चित्ररेखा साहू, जिला बालोदला। आपके हमर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार, जय जोहार।
0: सबले पहले आप ये बताओ कि ये ड्रोन दीदी योजना का होते।
1: सबले तो पहली पहले मोल जय जोहार है, मोना चित्ररेखा साहू है और मैं यहाँ बालोद जिला से हूँ और मैं ड्रोन दीदी के काम करता हूँ। ड्रोन दीदी जो है एक ड्रोन के माध्यम ले खेत मन में दवाई छिड़के के काम करते। अब ये योजना हमार का प्रधानमंत्री महोदय की योजना हरे, जिन ला 25 अगस्त 2021 में मंत्री जी है दिल्ली के लाल किला से ओमन इला लागू करवाइन कि कम से कम 15,000 महिला ड्रोन दीदी बना के ओमला सशक्त करना है।
0: बहुत बढ़िया। ये योजना में जुड़े बर सामान्य जो योग्यता का हो सकते या योजना में कौन जुड़ सकते?
1: ये योजना में हमार किसान भाई मन भी जुड़ सकते, महिला मन भी जुड़ सकते, सब कहे बहुत बेरोजगार जति खाए सब जुड़ सकते।
0: जैसे कि आप बताओ कि ये योजना में सब जुड़ सकते हैं, पर ऐसे कहे जाते कि ये में स्व सहायता समूह के होना आवश्यक है, का आप स्व सहायता समूह से जुड़े?
1: हाँ, मैं स्व सहायता समूह से जुड़े हूँ। मोर समूह के नाम चाहे गंगा मैया स्व सहायता समूह बगमारा बालोदी।
0: और स्व सहायता समूह में कतिक मनखे के होना आवश्यक है, कतिक महिला मन के?
1: कम से कम समूह में तो 10 मेंबर जरूरी रहते, 10 सदस्य।
0: जी जी।
1: अधिकतम का रहते 20 सदस्य।
0: चित्ररेखा जी, एक बात और जानना रही से कि जैन महिला ड्रोन दीदी बनना चाहते का उकर पढ़े लिखे होना आवश्यक है?
1: हाँ।
0: कतिक पढ़ना है बोला आवश्यक?
1: कम से कम बोला 10वीं पास होना जरूरी है। काबर के जो कॉन्सेप्ट है ना
0: जी,
1: और जो कोर्स है ट्रेनिंग के वो पूरा इंग्लिश में रहते।
0: अच्छा।
1: सबसे ज्यादा जरूरी 10वीं पास होना, 10वीं पास हो गए तो एक आध थोड़ा बहुत इंग्लिश के कोर्स हमें ज्ञान में हो जाते।
0: एक बार सरकार तरफ ले का मदद मिलते हैं?
1: एक से तो सरकार डहान ले हमन जैसे इफको कंपनी के तहत गए हवन तो हमारा 100% अनुदान मिली से भी इफको कंपनी के तहत में।
0: जी जी।
1: और हमारा ड्रोन के साथ साथ में हमारा ईवी घला मिले हुए जैसे चार्जिंग गाड़ी घलक थे, इलेक्ट्रिक गाड़ी, उसमें हमारा लाने ले जाए सुविधा हो जाते।
0: जैसे कि ड्रोन चलाए बर ड्रोन एक मशीन हरे, अब वो स्वाभाविक बात है ला चलाए बर एक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होते, एक रख रखाव बर तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होते, तो का सरकार द्वारा विशेष कोई प्रशिक्षण देते?
1: हाँ, इला ये ड्रोन के प्रशिक्षण हमारे मिलते हैं। जैसे हम यहाँ गए रहे हमारे राष्ट्रीय इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी ग्वालियर, हमारे लोग 15 दिन के ट्रेनिंग दी सावे वहाँ ले हमन थ्योरी प्रैक्टिकल ये करके और कैसे करना है कैसे उड़ाना है या सब चीज़ के वहाँ हम ट्रेनिंग दी सब और ओकर बाद वहाँ आए के बाद तो हमारे असली परीक्षा तो हमारे फील्ड हम चालू हुई सब खेत मन में कबर हमारे वहाँ मैदान में ही सिखा रही सब 5 एकड़ को हम मैदान है बहुत बड़े वहाँ सिखा रही से लेकिन हमारे तो चलाना सिर्फ खेत मन में रही सब जहाँ फसल होते अधिकतर खेत मन में होते तो हमारे मन के परीक्षा वहीं से चालू हुई सब कि खेत में कैसे उड़ाना है।
0: अच्छा अच्छा
1: कल ये हमारा एक फील्ड ट्रेनिंग आ रही से ट्रेनर कि कैसे उड़ाना है ये बस हमारे 2 दिन के बस बताई साबे वो 2 दिन के बाद में ही हम आज तक के कंटिन्यू करत करत आज मन अति कहे हो गए कि हम दूसरा घर ट्रेन कर सकता हूँ।
0: और ये जैसे ड्रोन है इला सरकार उपलब्ध कराते कि कोई कंपनी से आप मतलब स्वयं ले पड़ते
1: नहीं ये दोनों तरीके से हो सकते है चाहे किसान हो या जिन भी इच्छुक है लेने वाला और मन डायरेक्ट कंपनी मन से भी ये ले सकते है अब अगर योजना के तहत ये कर सकते है तो हमें योजना भी आती है।
0: अच्छा अच्छा और ये जो ड्रोन है निश्चित रूप से बहुत सरल हुई तभी पूरा हमारे जो महिला शक्ति है ये बढ़िया अच्छे से संचालित करते है तो ये में कौन कौन प्रकार से दवाई है खाद है एक छिड़काव किया जा सकते है
1: इमें जतिक लिक्विड फॉर्म आते जतिक अच्छा। तरल पदार्थ वाला इमें चाहे कीटनाशक हो चाहे आपके निंदनाशक हो चाहे आपके आजकल उर्वरक खाद मन भी आ गए लिक्विड फॉर्म में जितना लिक्विड फॉर्म आते ना सब ड्रोन से हम ना स्प्रे करते हैं।
0: और मान लो किसान करे लिक्विड फॉर्म के अलावा दानेदार है तो एक इमें कोई ऐसे कोई व्यवस्था है क्या
1: दानेदार घोल के मना सकते
0: घोल के डाले जा सकते
1: हैं जिस अच्छा। बहुत जन किसान मन का करते समय में वक्त में नहीं मिल पाए तरल पदार्थ वाला
0: जी,
1: तो यूरिया हो गया आपकी डीएपी हो गया लोग घोल के उन्हें कर देते हैं छान अच्छा, के डालते हैं।
0: और एक चीज और जानना चाहते रहे हूं कि किसान स्वयं छिटते कोई दवाई ला और ड्रोन में जो आप मन डालते हो एकर में का अंतर दिखाई देते
1: किसान भाई मतलब का रखते कि जब वो मतलब चाहे वो हर लिक्विड फॉर्म में डाले या दानेदार में डाले वो मतलब खेत में उतरे लागते और खेत हर थे गिल्ला तो मतलब माड़ी भर चिखला में उतरे लागी अब चलना खेत में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाते गिल्ला खेत मन में ऊपर से उतना सारा मतलब लादन पकड़े लागते तो और चलना ज्यादा हो जाते और हमन का करथन ड्रोन से हम सिर्फ मेड़ में खड़े रहते और ऑपरेट करथन 1 एकड़ 5 से 7 मिनट में 1 एकड़ खेत कम्प्लीट हो जाते
0: मतलब समय भी बचत
1: समय बचत और प्लस हमें 10 से 12 लीटर के आसपास हम पानी आते एक टंकी में जो अच्छा। 1 एकड़ पर पर्याप्त है दूसरा के पानी भी बचत हो जाते हैं हमें
0: जी जी
1: तीसरा हो जाता समय की बचत भी हो जाते
0: जी
1: और कई ठाम का करते हैं कि जब अपन छीतत रहते हैं कई बार ना चाहते हुए भी हवा है ये है कि

0: माध्यम से हमारे बॉडी में वो वापस हवा के माध्यम से उड़ के आ जाते, तो हमें स्वास्थ्य की भी बचत हो जाती।
1: अच्छा, जैसे कि एक एकड़ में मान लो कोई किसान है, कोई मजदूर के माध्यम ले कोई दवाई डलवा थे या खाद डलवा थे, तो ओकर जो खर्चा थे और ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करवा थो, तो इमें कतिक के अंतर पड़ जाते, पैसा भी कम लगत हो?
0: हाँ, पैसा घला कम लगते। हम जैसे कि एकड़ पीछे लेते हैं,
1: जी जी,
0: एक एकड़ के फसल के हिसाब से लेते हैं, 300, 400, 500,
1: जी जी,
0: हर फसल के अलग अलग रेट है भी।
1: जी जी।
0: और जैसे हमारे मजदूर भाई मन जैसे छीतते, तो वो मन का करते कि चाहे वो आधा एकल छीते चाहे एक एकल, अपन दिन भर के रोजी ली और सांझ की और एक्स्ट्रा खर्चा वो कर हो जाती।
1: जी जी जी जी।
0: तो इमें भी हमें बचत हो जाते भी ओकर पैसा की, काबर हम सिर्फ एकड़ पीछे लेते हैं ना कि हमन हर रोजी के पीछे नहीं लेन।
1: जी जी। और दवाई छिड़के के समय कई बार देखे मिलते कि जहरीले दवाई रहते, व्यक्ति स्वयं छीता थे तो कई बार पॉइजन हुए की आशंका बन जाते, तो ड्रोन के माध्यम से इमें सुरक्षा मिलत हुई?
0: हाँ, इमें बहुत सुरक्षा है, कबर हमारा सिर्फ मेड़ में खड़ा रहता है, मशीन से बस ड्रोन चलत रहते खेत में, तो हमारे सौकर से बहुत दूर हो जाता,
1: मतलब हाथ पैर भी सुख और काम भी जल्दी,
0: सब हर चीज में मतलब लाभदायक ही लाभदायक।
1: तो एकर प्रति किसान मन की जो रुझान है वो कैसे देखे मिलत है?
0: बहुत अच्छे रिजल्ट मिला थे हमारे किसान भाई मन है, ड्रोन से छिड़काव वाला बहुत अच्छा से अपना था, बहुत खुशी खुशी अपनाते कि हर चीज के मतलब फायदा मिला था कहीं।
1: अच्छा, ये ड्रोन के माध्यम से आप मन अधिकतम प्रतिदिन के एकड़ के छिड़काव कर चुके हो दवाई के?
0: मैं अभी तक तो 3,000 ले ज्यादा एकड़ कर डले हाँ। वो
1: एक दिन में के एकड़ हो सकते?
0: जैसे सीजन रहते था हम मन तो एकदम बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, एडवांस बुकिंग के बोले जाए तो
1: अच्छा,
0: ऐसे चलत रहता कि हाँ आज ये किसान के कल किसान के, ऐसे हमने एक शेड्यूल बना के रखता कि आज ये किसान के करना है, और कोई भी हो फोन के माध्यम से हम ऑर्डर लेते हैं, जिन किसान भाई मन लगा अगर छिड़काव करवाना है तो हम सब जगह हर सोसाइटी मन में हमारा नंबर है, हर कृषि विभाग में हमारा नंबर है, हर जिला पंचायत जनपद पंचायत में जति बालू जिला के अंतर्गत ये है ना, वो मन में सब में हमारे नंबर है वहाँ देखा हुआ, ओकर माध्यम से किसान भाई मन हमारा कॉल कर गए थे और अपन ऑर्डर कंफर्म करवा लेते थे।
1: अब एक बात यह थे कि मशीन के एक उम्र होते, तो मान लो बिगड़ गए तो आप मन स्वयं कर रिपेयरिंग करते हो कि सरकार द्वारा या कंपनी द्वारा तुरंत कर रिपेयरिंग की व्यवस्था होते?
0: जैसे कि अगर बाहरी अगर ये रहते तो ओला तो मैं खुद कर लेता हूँ, बाहरी प्रॉब्लम मतलब कुछ कुछ प्रोपेलर वगैरह के हो गए या पाइप वगैरह के या टैंक वगैरह के कुछ इशू हो गए तो मैं खुद कर, लेकिन मशीनरी चीज के इंटरनल प्रॉब्लम आ जाते जो अंदर के होते वायरिंग वगैरह, ओकर बार हम इंजीनियर लागते, तो ओकर बार हमारे इंजीनियर के नंबर गला है, हम कहते अपन आवेदन ये करते हैं कि सर हमारे ड्रोन ऐसे ऐसे हो गया हावे, तो सर आके ओला ठीक कर देते।
1: जैसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और एक उद्देश्य कि महिला मन की लखपति दीदी बनाना, तो सरकार की जो भावना है या सरकार की जो सोच है सही में धरातल में उतरत है?
0: हाँ, ये चीज है तो सही बात है। अब मैं खुद बन गया हूँ लखपति दीदी, अब हम चाहते हैं कि हमारे जितना भी महिला समूह वाली दीदी मन आवे और मन सब के सब आगे आए, सशक्तिकरण के माध्यम ले सब सशक्त हो, स्वावलंबी बने और सब लखपति दीदी बने।
1: और आप जावत जावत जोन बहनी मन हा या जोन महिला मन हा ये योजना से नहीं जुड़ पाए है, उमल का संदेश देना चाहो?
0: मैं तो दीदी मल्ला यही कह सकता हूँ कि इतनी ओती भटके के सेती ले ये योजना जो है अति सुघर हावे कि बिना कहीं यह के बिना खर्चा ज़्यादा में खर्चा घला नहीं हावे, दूसरा व्यवसाय जैसे चालू करते हैं तो हमारा लाखों रुपया लग जाते, ये ऐसे योजना हावे कि इसमें आपला सिर्फ ट्रेनिंग के लाग ही और थोड़ा बहुत पैसा में 20% हमला अपना हेर लगाए पड़ते, बाकी 80% तो हमला सरकार डाले अनुदान मिल जाते।
1: बहुत बढ़िया,
0: तो ये इतना अच्छा योजना है जेका से महिला मन सशक्त हो सके, लखपति दीदी और करोड़पति दीदी घल बन सकते।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद चित्ररेखा जी, आप बहुत सूक्ष्मता से बहुत गहराई से ड्रोन दीदी योजना के संबंध में हमारे गाँव वाले बहनी मल्ला बताया हो, और हमला उम्मीद है कि आपके गोड़ बात सुन के गाँव के जो महिला मन है जो स्वावलंबी बनना चाहते हैं, जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी के जो लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अपन आपला पहुंचाना चाहते हैं।

नवाभिहान। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नमो ड्रोन योजना से लाभान्वित श्रीमती चित्र रेखा साहू से बीरभान साहू की गोटबात। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। श्रोताओं, हमारे हिंदी फिल्मी गीतों में कई गीत ऐसे हैं जिसमें घर का कार्य करने वाले दृश्य हैं। घर का कोई कार्य कर रही हो और उन पर काम करते करते गीतों को फिल्माया गया हो, तो चलिए कुछ ऐसे ही गीत सुनें जिसमें घर का कार्य करते करते गीत फिल्माए गए हैं। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

रेखा भारद्वाज, श्रद्धा पंडित और सुजाता मजुमदार की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म दिल्ली 6 का गीत। गीत प्रसून जोशी का था और संगीत था ए आर रहमान का।

0: लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म बंदी का गीत। गीत राजेंद्र कृष्ण का है, संगीत है हेमंत कुमार का।
1: फूंक फूंक कर चूला अखियन का भयो सत्यानाश, हल्दी देवी बहू है अपनी, श्रीमती मिर्ची अपनी सास। हाँ बोल मेरे दुखिया मन कब तक, ये चूल्हा ये चौका ये झाड़ू ये बर्तन ये आटा बटाटा ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और घर तेरी की, पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत उदास। एक रोज

हाय हाय जाने कब छोड़ेगा पीछा हमार। दिन होंगे गरीबी के जिस दिन खलास, गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी खूब।

0: Nadal Red. Ek roz humari bhi dal galegi.
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर

0: पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ये गीत था फिल्म साथ साथ से, आवाजें थी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की, गीत जावेद अख्तर का था और संगीत था कुलदीप सिंह का।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग घुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादे।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

अभी आपने सुना फिल्म खट्टा मीठा का गीत, आवाजें थी किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की, गीत गुलजार का था और संगीत था राजेश रोशन का। लीजिए अब सुनिए फिल्म भाभी की चूड़ियां का गीत, आवाज लता मंगेशकर की, गीत नरेंद्र शर्मा का, संगीत सुधीर फड़के का।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं बेला सांवेर। इनकी आवाज़ में पहले पेश है दाग देहलवी की ये गज़ल।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: बेला जावेर की आवाज में अब पेश है ये गजल, शायर हैं दाग दहलवी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थी बेला सांवेर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। छत्तीसगढ़ के अनूप रंजन पांडे को इस साल का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर आएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। नीति आयोग शासी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अगले 3 वर्षों में बस्तर में निवास करने वाले परिवारों की मासिक आय बढ़ाकर 30,000 रूपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए डेयरी, सिंचाई, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस सम्मान सूची में छत्तीसगढ़ के 4 कलाकारों का चयन किया गया है। इनमें लोक कलाकार और रंगकर्मी तथा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुके डॉ अनूप रंजन पांडे भी शामिल हैं, जिन्हें इस साल का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। डॉ अनूप रंजन पांडे के अलावा कथक नृत्य के लिए वरिष्ठ साधक पंडित रामलाल बरेट को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा युवा रंगकर्मी घनश्याम साहू और डॉ आनंद कुमार पांडे को उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। श्री सिंह आज दोपहर रायपुर के एक अस्पताल में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे शाम को राजधानी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। श्री सिंह आज राजधानी में हैंडलूम, हस्तशिल्प, सिल्क और राज्य तथा क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। अपने प्रवास के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री कल 13 जून को राजधानी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे ऑक्सीजोन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। किर्गिस्तान के इसिकुल में 8 जून से 13 जून तक आयोजित एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने रजत पदक जीता है। श्रीमंत ने यह सफलता बेहद कड़े मुकाबले वाली PIUH 85 किलोग्राम श्रेणी में हासिल की है। पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने अपनी इस कामयाबी को भारत के वीर शहीदों के नाम समर्पित किया है। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में आज से 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन द्वारा भारतीय कायाकिंग कैनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने जा रही 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देशभर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने छत्तीसगढ़ के 5 नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, जांजगीर चांपा और कवर्धा में नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन NMC ने ऑनलाइन प्रस्तुत दस्तावेज और उपलब्ध जानकारी का परीक्षण करने के बाद इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है। अंतिम में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। छत्तीसगढ़ के अनूप रंजन पांडे को इस साल का

0: संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर आएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे ही प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें सुनिए पंडित अभय नारायण मल्लिक का ध्रुपद गायन। आप सुनेंगे राग तोड़ी में आलाप और ध्रुपद। बोल हैं मेरे तो अलह नाम के आधार। आपके साथ संगतकार हैं वायलिन पर प्रवीण शेवलीकर और पखावज पर माणिक मुंडे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित अभय नारायण मल्लिक का ध्रुपद गायन। आपके साथ संगतकार थे वायलिन पर प्रवीण शेवलिकर और पखावज पर माणिक मुंडे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म जवानी दीवानी का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे राहुल देवपरमन। अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए श्रोताओं। शुक्रवार 12 जून 2026 को यानी आज प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा फल उद्यान लगाने की तैयारी व उसका प्रबंधन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे श्री कैलाश सिंह पैकरा, उप संचालक उद्यानिकी रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 12 जून 2026 यानी आज 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म कामचोर का गीत। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार थे राजेश रोशन।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादे।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी

अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए श्रोताओं। शुक्रवार 12 जून 2026 को यानी आज प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा फलोद्यान लगाने की तैयारी व उसका प्रबंधन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे श्री कैलाश सिंह पैकरा, उप संचालक उद्यानिकी रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 12 जून 2026 यानी आज 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

अभी आपने सुना फिल्म जबरदस्त का गीत। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था, संगीत था राहुल देवबर्मन का और आवाज़ थी किशोर कुमार की।

आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म परिंदा का गीत। गीत था खुर्शीद इल्लौरी का, संगीत था राहुल देव बर्मन का।

लीजिए अब सुनिए फिल्म शक्ति का गीत, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत राहुल देवबर्मन का।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने वाले ही समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। कांग्रेस सदस्यों, अमेरिकी सीनेटर और बड़ी अमेरिकी कंपनियों के अधिकारियों ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। वारबर्ग पिंक्स के चेयरमैन चार्ल्स आर, प्रतिनिधि फ्रेंच हिल, प्रतिनिधि ब्रेड शर्मन, सीनेटर सिंडी हाइड स्मिथ और सिस्को के जीतू पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतोनियो गुतरश ने सभी पक्षों से युद्ध विराम को पूरी तरह लागू करने तथा स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्चस्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में हुई प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप से स्वदेश वापसी के समय तबीयत खराब होने के बाद उन्हें नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल करके मैच जीत लिया। ये

0: टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अनुराग धारा में भोजपुरी गीत। कलाकार हैं गणेश पंडित और साथी। इनके सुर में पहले सुनिए ये लोक भजन।

0: द कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: एक सूचना सुनिए श्रोताओं, शुक्रवार 12 जून 2026 यानी आज प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा फलोद्यान लगाने की तैयारी व उसका प्रबंधन। विषय एक बार फिर से सुन लीजिए, फलोद्यान लगाने की तैयारी व उसका प्रबंधन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे श्री कैलाश सिंह पैकरा, उपसंचालक उद्यानिकी रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 12 जून 2026 यानी आज 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

गणेश पंडित और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना झूमर गीत। गणेश पंडित और साथियों के स्वर में लीजिए अब सुनिए ये पूर्वी गीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अनुराग धारा में भोजपुरी गीत। कलाकार थे गणेश पंडित और साथी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

हम आपको याद दिला दें, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत जन विश्वास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप सुनेंगे रात 9:25 पर। रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

शाम 5:10 पर कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे, आकर्षण होंगे। आजकल इसमें विश्व बाल श्रम के विरुद्ध दिवस, इस पर चर्चा होगी और होगा क्रम खेल चौपाल और ज्ञान सरिता। शाम 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आज की बात आप सुनेंगे, विषय होगा SRI विधि अपनावव ज़्यादा आमदनी पावव। क्रम हेलो चौपाल में सुनिएगा फलोद्यान लगाने की तैयारी व उसका प्रबंधन, इस विषय पर चर्चा करेंगे श्री कैलाश सिंह पैगरा, उप संचालक उद्यानिकी रायपुर, संचालन मोनिका जैन का होगा, प्रस्तुत करता होंगे शशि प्रकाश पांडे।

यादें फिल्मी नगमों का ये फरमाइशी कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 10:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे वकील अहमद।

लता मंगेशकर और चितलकर के युगल स्वरों में। अभी आपने सुना फिल्म अलबेला का गीत। गीत राजेंद्र कृष्ण का था और संगीत था सी रामचंद्र का। लीजिए अब सुनिए फिल्म वक्त का गीत, आवाज़ आशा भोसले की, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत रवि का।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया, शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी आपने सुना फिल्म जानवर का गीत। गीत था हसरत जयपुरी का, संगीत था शंकर जयकिशन का। लीजिए अब सुनिए फिल्म 20 साल बाद का गीत, स्वर और संगीत हेमंत कुमार का, गीत शकील बदायूनी का।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़त हो, फिर पढ़ के भुला जत हो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तय बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: लीजिए अब सुनिए आशा भोसले की आवाज में फिल्म मेरे सनम का गीत, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत ओपी नैयर का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राजस्व मंत्री ने एक ही स्थान में 3 साल से ज्यादा समय से जमे पटवारियों का पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने किर्गिस्तान में आयोजित एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर आएंगे। अब समाचार विस्तार से। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि डिजिटल भू अभिलेखों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। कल रायपुर में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि गड़बड़ी रोकने के लिए EHRMS पोर्टल बनाया जाएगा। राजस्व मंत्री ने विभिन्न जिलों में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और राजस्व निरीक्षकों की सूची तलब की है। इसके साथ ही एक ही हलका में 3 साल से ज्यादा समय से जमे पटवारियों का भी पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण करने के लिए सभी आवश्यक सर्वे कार्य आगामी 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। श्री सिंह आज दोपहर रायपुर के एक अस्पताल में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे शाम को राजधानी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। श्री सिंह आज राजधानी में हैंडलूम हस्तशिल्प सिल्क और राज्य तथा क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। अपने प्रवास के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री कल 13 जून को राजधानी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे जोन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस सम्मान सूची में छत्तीसगढ़ के 4 कलाकारों का चयन किया गया है। इनमें लोक कलाकार और रंगकर्मी तथा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉ अनूप रंजन पांडे भी शामिल हैं, जिन्हें इस साल का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। डॉ अनूप रंजन पांडे के अलावा कथक नृत्य के वरिष्ठ साधक पंडित रामलाल बरेट को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा युवा रंगकर्मी घनश्याम साहू और डॉ आनंद कुमार पांडे को उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की सेवा अवधि में वृद्धि की गई है। आगामी चुनाव के मद्देनजर उनकी सेवा अवधि फरवरी 2027 तक या राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियमित पदस्थापना होने तक बढ़ाई गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। किर्गिस्तान के इसिकुल में 8 जून से 13 जून तक आयोजित एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने रजत पदक जीता है। श्रीमंत ने यह सफलता बेहद कड़े मुकाबले वाली PIUH 85 किलोग्राम श्रेणी में हासिल की है। पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने अपनी इस कामयाबी को भारत के वीर शहीदों के नाम समर्पित किया है। नवा रायपुर स्थित सेंधलेक में आज से 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन द्वारा भारतीय कायाकिंग कैनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने जा रही 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देशभर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगामी 1-2 दिनों में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इससे पहले प्रदेश में कुछ स्थानों पर प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बीती रात राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्व मंत्री ने एक ही स्थान में 3 साल से ज्यादा समय से जमे पटवारियों का पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने किर्गिस्तान में आयोजित एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर आएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओं, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है
2: जी।
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की
2: जी।
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं, लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है
2: जी।
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है
2: जी।
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया
2: जी।
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है
2: जी।
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं, ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं, क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अब ये एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है। और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
3: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
4: हर पल चलती जाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
4: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
4: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
4: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
4: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
4: घर को खूब सजाती चींटी,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
4: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
4: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
4: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
4: काम बड़े करके दिखलाती,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
4: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
4: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: हमको यही सिखाती चींटी,
4: हमको यही सिखाती चींटी।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को।

जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम सुर सिंगार।

कार्यक्रम के शुरुआत करथन ईमेल से और एमा देखथन सबले पहली कार्यक्रम में अपन फरमाइश में गाना सुने बर हमार कौन संगवारी है ईमेल पठो है तो देवरी भाटापारले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा पोषण और गणेश राम मिस्त्री हैं। पिपरियाले कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता हैं। पहरा अहिवाराले पोषण बंशोर अंबागढ़ चौकीले रिजवान खान आयसा सबिहा अनस रेहान बाजारवाड़ महासमुंदले भीष्मदास निर्मला दीपक और लक्ष्यदास चांदनी चौक गंडईले हैं पवन कुमार सेन प्रभादेव सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र और रौनक सेन पलारी ले हैं प्रकाश वर्मा अन्नपूर्णा वर्मा निखिल वर्मा यश प्रिंस वर्मा निखिल वर्मा यशस्वी नीतीश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग टेलर पुनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन गणेश धाम सुरसुली ले हैं जितेंद्र दास मणिकपुरी मिलवदास जयदास देवेदास धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी सहिया मालगी ले हैं सुखनंदन चंद्रवंशी शिवारानी चंद्रवंशी आकाश चंद्रवंशी प्रतिभा देवी और पूनम चंद्रवंशी गंडे टिकरी पारा ले हैं जागेश्वर देवांगन कचरीबाई देवांगन दीपक कुमार देवांगन जयश्री देवांगन ऋषभ और ऋचा देवांगन बागाटोला मोहला मानपुर ले हैं मालिक राम सिन्हा इंदु तारामती चांदनी मुनिंद्र और सविता देवी सिन्हा लोरमीग्राम चचेड़ी ले हैं कमलकांत मरावी प्रमिला मरावी नेहा मरावी पुष्पराज मरावी ऋषभ मरावी शंकर कोलाम संतोषी कोलाम संजय कोलाम संध्या कोलाम और शिव कोलाम ग्राम फुलझर घटारानी ले हैं योगेश्वर साहू डुमेश्वरी साहू यामिनी साहू मुस्कान साहू और हर्षिता साहू चरडोंगरी पिपरिया ले हैं दुर्गाराम साहू अजय कुमार साहू जयकिशन साहू कुमारी साहू इंद्राणी साहू और माया साहू पथरिया ले हैं चंदूलाल सिंहरौल नारायणी सिंहरौल निमेश सिंहरौल नेहा और वान्या सिंहरौल हिच्छा महासमुंद ले हैं अदालत दास वैष्णव मानस कांति वैष्णव रीचा और गायत्री वैष्णव डबरापारा सोंगा मगर लोड ले हैं कोमल सेन तोसन सेन सिम सहसपुर लोरमी ले हैं सत्यम साहू छोटकू साहू लोकेश साहू रामकिशन साहू दुलीचंद साहू सती साहू और मोहित राम साहू ग्राम धुरवा बांधा भाटापारा ले हैं प्रमोद साहू देव कुमार साहू नवीन कुमार साहू और युवराज रवेली फिंगेसर ले हैं राम अवतार यादव शुभम सौरभ चंचल यादव महेंद्र कुमार यादव काजल लक्ष्मी पल्लवी और लल्लू यादव द्वारिका यादव सर और हमारे संगवारी मन है सरस्वती निषाद परशुराम यादव कमला वर्मा महादेव और माँ महामाया चौक मेहथापारा चिखली ले हैं रामकुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल और दीपक पटेल बागवरा बदरसी ले हैं पन्नालाल सेन खुशबू सेन तारा सेन और कौशल सेन पहंदा पलारी ले हैं नीतीश कुमार तनुजा देवांगन ईशान देवांगन लखनल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन आप सबके पसंद में आप मन ल सुनवा थन लक्ष्मण मस्तूरिया और संगवारी मन की गाय ये गीत।

ललिता शर्मा के गाए ये गीत पर हमला ईमेल पठोए हैं। एमे हैं नांदघाट ले भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वरी और रितु, रोहासी पलारी ले श्यामलाल साहू, युवराज साहू, पोटिया कला दुर्ग ले संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, गिर्रा पलारी ले वीरेन साहू, सोनू, आशीष और कपिल साहू, रसेड़ा ले मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डीके साहू, हटवत बाजार लाहौद ले कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल और समीर पटेल, ईश्वर नगर भाटापारा ले दान सिंह रावत, दानू, दामिनी रावत, नीरज रावत और शुभम, हरदेवलाल पारा ले रमेश यादव, कोहका भिलई ले दानेश्वर साहू, सुनीता आचार्य, उत्तम सिंह जंघेल, नेपानगर ले सुदर्शन साहू, पल्लवी शाह, लखनपुर ले रामजी साहू, जीवन लाल निमी शिवम, सतीश और मुकेश साहू, बालोद ले देवशंकर तामुरिया, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव ले बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी आराध्या साहू, भनपुरी लिहे राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू, नेहा और जगदीश देवांगन, रिंगनी लिहे दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, बाजार पारा बेमित्रा लिहे लेखराम और कुमार साहू, हिंगोली महाराष्ट्र लिहे शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, भनपुरी मुसरा लिहे आत्माराम यादव, सुखदेव विदेशी, होमेश्वर मनेश्वर, लाची और तुलसी यादव, पुतकी कला कवर्धा लिहे राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे, तखतपुर लिहे मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी और विशाल और मानस। तो आओ आप सबके पसंद में सुनथन ललिता शर्मा के गाए ये गीत।

धनौरी ले हैं निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। दत्रिंग ले हैं भागत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा।

भनले हैं राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांत प्रजापति। नवा पारा लें नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर। बघेरा द्रू ले हैं संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। हजदा नंबर दो ले हैं कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू। डोंडरी घोटिया ले हैं महेश कुमार निषाद, रंभरानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद, पुष्पांजलि और स्वप्निल कुमार निषाद। लंघान पंडरिया ले हैं उत्तम कुमार जंघेल, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल और भारती बघेल। परथाटोला मगढ़ चौकी लेहे ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, कुमेंद्र मसिया और तुषारणी मसिया। बनियापारा धमतरी लेहे रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, बेबी स्वाति, माही, पूजा माखीजा, शरद डोडवानी और श्रेया और पूनम वाघवानी। भाटापारा लेहे बजकमल, बोलसरा न्यायालय प्रमोद कुमार साहू, वैभवी विनोद, विभूति और प्रियांशी साहू अंशु। मन की लोर में लेहे नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे और समीर खांडे। बाघमुड़ा कोमा खान लेहे प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। गुजरात गांधी धाम लेहे प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी, पूजा पायल, प्रथम राजेश, कृष्णा और कलावती सोनी। दहियान बांधा बचार राजनांदगांव लेहे हरिओम साहू, रेवा राम साहू, रानू साहू, सरस्वती साहू, प्यारी राम साहू और परमानंद साहू। अड़ार नांदघाट लेहे माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। अमलेश्वर लेहे डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। छत्रपति संभाजीनगर लेहे प्रकाश बोरगांवकर और सुषमा बोरगांवकर। कुरासी लेहे पवन कुमार साहू, कांति देवी साहू, पंकज साहू और सुष्मिता साहू। खमरिया बिलासपुर लेहे साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। लालपुर मारो लेहे कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव। कोयलारी कवर्धा लेहे कैलाश चंद्राकर, पूर्णेंद्र और साहिल चंद्राकर। आप सब मन अपन ईमेल पठोए हो हमला नियाज अली अंजुम और संगवारी उनके गाय ये गीत।

किस्मत बाई, पदमा बाई और बसंती बाई देवार के गाए ये गीत पर हमला अपन ईमेल पठोए हैं। एम है जानगीर चांपाले हैं, दिलदार मेरी, मजेदार मेरी, ज्योति जानवी और दीक्षांत मेरी, डौंडी लोहारा बालोदले हैं, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और तुषार देव तामुरिया, सरसेनी ले हैं, तेज राम सेन, जानकी सेन, दुष्यंत सेन और जागृति सेन, सरधाना मेरठ ले हैं, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवन जैन, हिच्छा जिला कच्छ भूंजले हैं, सरोज शिमाली, कंचन, राधिका और रूपल शिमाली, जैसा कर रहा चरामा ले असाड़ूराम निषाद, लिखा खिलावर निषाद और ऋषभ निषाद, धमधा ग्राम सुखरी कला ले हैं, अमित जंगहेल, शकुन जंगहेल और आरुषी, संबलपुर ले हैं, फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, बीरनपुर कला दनिया गंडई ले हैं, सुरेश कुमार साहू और मास्टर तन्मय साहू, कुईग्राम भंगीटोला ले हैं, ननकाराम ध्रुवे, जामुनबाई ध्रुवे और फिरतराम ध्रुवे, भड़गा कोदवा गुडान ले हैं, श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी मरावी, रानी और रजनी मरावी, धजाभाटा उड़ीसा ले हैं, नंद कुमार ठाकुर, खुर्सीपार मोहला मानपुर ले हैं, विष्णुराम यादव, बसंता यादव, कविता अनीस और गीतांशी यादव, तेंदुभाटा मगरलोड धमतरी ले हैं, उमेद कुमार निषाद, मोहेश्वरी देविका, पोषण, नूतन, सुरेंद्र, यशस्वी, भास्कर और किशन निषाद, बारगांव ले हैं, अनार साहू, पथरिया भरे वाले हैं, चंदूलाल सिंह रोल, नारायणी सिंह रोल, नोमेश और नेहा, चिरमिरी कुरासिया ले इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर सिंह, सिंगारपुर पेलीमेटा ले हैं, चिंताराम ध्रुवे, कामीन चंद्रध्वज और सानू ध्रुवे, नांदिया गंडेले हैं, मूलचंद पटेल, मीनाक्षी पटेल, आशीष पटेल और सीमा पटेल। आप सबके पसंद में आप लोग सुनवा थन किस्मत बाई, पद्मा बाई और बसंती बाई देवार के गाए ये गीत।

हमला कई श्रोताओं ने अपन चिट्ठी हलो भेजे हैं, पोस्टकार्ड भेजे हैं, ते में हैं दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले बलदाव राजेश्वरी आस्था यादव धरसिंहवाले छेदुलाल यादव सीता यादव अर्चना अरुणा अनुराधव कल्पना यादव धरदेई सरगांव ले हैं चंदूलाल पटवा औ सुनीता पटवा भिलई तीन ले हैं नौसाद अहमद सिद्दीकी और बेगम हमीउद्दीन सिद्दीकी मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू आदिपुर ले जगदीश सोनार प्रवीण पुजारी प्रफुल्ल औ प्रतिमा देवी राजापुर सूरजपुर ले मालिक राम कोटा रायपुर ले अरुण वर्मा अनिल वर्मा ईश्वर वर्मा दिनेश सेन योगिता सेन रुचि वर्मा खुशी और ओजल वर्मा मगरलोड ले केजू राम मालेकर ठाकुर राम अश्वनी मालेकर श्रीचंद यादव भारती कशिश चांदनी सनातन यादव कोमल सेन और शीतलानगर दुर्ग ले शिव चंद्राकर भगवान चंद्राकर बंगला मटिया ले शिव कुमार अंगारे अन्नी लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे सिंगा ले रमेश कुमार यादव माया यादव रिंकू सन्नी कोमल यादव बेलरगांव सिहावा ले मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु अंकित देवांगन महासमुंद खट्टी ले सुभाष शर्मा छाया शर्मा टिकेश्वरी कीर्तन और शिवाय धवलपुर ले गेंदलाल मिश्रा चंद्रकांति अर्चना और धनंजय मिश्रा शिक्षक नगर दुर्ग ले राकेश वर्मा सचिन वर्मा वाणी वर्मा अरमरी खुद ले चुरामन वार्डे जैनी वार्डे और मिराज वार्डे नगनिया पाटन ले सुप्रिया कश्यप मेघा कश्यप अंजो दीक्षा कश्यप आप सबके पसंद में आप मन सुनवा थन मंजुला दास गुप्ता की गाय ये गीत।

0: एखरे संग सिरावत है एदारी के सुर सिंगार कार्यक्रम आपके सेवा में प्रस्तुत करें संजय पाठक जम्मू संगवारी मल्ला राम राम जय जोहार। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की ईमेल और पत्रों पर आधारित फार्मेसी कार्यक्रम सुर सिंगार मीडिया में एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 1 बजने को है हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म बाजी का एक गीत गीता दत्त की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं और संगीत सचिन देव बर्मन का है।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए एक सूचना। आगामी मंगलवार 16 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा मानसून के पूर्व में पशुओं में होने वाली बीमारियों की पहचान, बचाव और उपचार तथा टीकाकरण का महत्व। विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे विशेषज्ञ डॉक्टर केएल राम, अतिरिक्त उपसंचालक शासकीय पशु चिकित्सालय मांढर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003-482, 4003-483 और 4003-484। रायपुर का सिटी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 16 जून 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स के इंतज़ार रहेंगे। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए अब आपको सुनाते हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी की रचना। शंकर जयकिशन का संगीत है और फिल्म का नाम है बेटी बेटे।

0: कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।
1: जरा ले

फिल्म संघर्ष का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल शकील बदानी के थे और संगीत नौशाद का। आइए आप सुनते हैं फिल्म गैम्बलर का एक गीत। नीरज के बोलों को संगीत संवारा है सचिन देव बर्मन ने, आवाज़ किशोर कुमार की है।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव एफ एम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्कैन का समय होगा 8:30 पर। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर बाद यानी दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे पंडित स्वप्न चौधरी का तबला वादन, जिसमें आप सुनेंगे रूपक ताल। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में 10:00 सुनेगा पंडित अभय नारायण मलिक का राग बागेश्वर में धमार गायन।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम जन विश्वास इज ऑफ द डूइंग बिग का समय होगा रात 9:25। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर हिंदी में। आजकल के क्रम में चर्चा होगी विश्व बाल श्रम के विरुद्ध दिवस, साथ ही सुनेगा खेल चौपाल और ज्ञान सरिता।

0: किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल शाम 7:21 पर आज की बात में एसआरआई विधि अपनाओ ज्यादा आमदनी पाओ पर होगी चर्चा। हेलो चौपाल में उप संचालक उद्यानिकी रायपुर श्री कैलाश सिंह पैकरा बताएंगे फलोद्यान लगाने की तैयारी और उसके प्रबंधन के बारे में। संचालन करेंगी मोनिका जैन और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। सुनना अमेजन कट है तीन ये है चार पांच है और आप एक दो करे हो
1: नहीं तो ये ठीक है ना।
0: ये स्वप्न चौधरी खर है और अनिंदो वाले लाभ करे ऊपर वाले ला
1: कदे ला
0: ये चार पांच है मैं देखे दो
1: चार पांच ना तो हाँ। करे पढ़ना वो गलत है वो वहाँ एडिट गलत करे हो
0: ऐसे है
1: हाँ ये यही ठीक है
0: ये है ना
1: ये झपता रूप दिखा दिखा कहाँ है
0: ये दे ना ये दे सामने
1: वाले हाँ तो ये इधर साफ से
0: देखो नहीं नहीं आप ये कर लो ये देख लो ये दे कट तो कट तीन लिखा है रात 8:15 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनी का वकील अहमद की गाय गाई गजलें।

चित्रपट संगीत का आप आनंद उठा सकेंगे दोपहर 2 बजे, दोपहर 30 मिनट पर, 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें रात 10:30 पर आप सुन सकेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का समय होगा शाम 5 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बीड़ियों का समय होगा शाम 6:30 पर। ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित स्वप्न चौधरी का तबला वादन। पहले आप सुनेगा झपताल में और सारंगी पर लहरा दे रहे हैं आशिक अली खान।

ये था रूपक ताल। अब स्वप्न चौधरी तबले पर प्रस्तुत कर रहे हैं रूपक ताल।

पंडित स्वप्न चौधरी का तबले पर बजाया ये था रूपक ताल। सारंगी पर लहरा दे रहे थे आशिक अली खां। इसी के साथ चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर सरायपाली केंद्र है।

मीडियम वेवर एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम दो बजे हैं, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म अभिमान से। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है, बोल मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत सचिन देव बर्मन का है।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

अभी आपने सुना फिल्म गंगा जमुना का एक गीत, इसे लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत से संवारा था नौशाद ने, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। आइए आप सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में राजा मेहंदी अली खां की लिखा ये गीत। संगीत मदन मोहन का है और फिल्म का नाम है मेरा साया।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडिया वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:15 हुए हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र

0: में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं। दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं IMO के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24 लाख रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जाँच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि NTA ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि NEET UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। NTA ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए

0: निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडिया और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म आहुति से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की, गोत बोल आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।

0: अभी आपने सुना फिल्म बरसात का गीत, रमेश शास्त्री के बोलों को संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने, आवाज लता मंगेशकर की थी।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हूँ, फिर पढ़ के भुला जाते हूँ।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब थोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एखर असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 बजे तक चलते, जेमा तेहा मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: लीजिए अब सुनिए फिल्म ब्रह्मचारी का एक गीत। इसे लिखा है शैलेंद्र ने, आवाज मोहम्मद रफी की है और संगीत शंकर जय किशन का है।

मधुमती फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडिया वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे इसी फ्रीक्वेंसी पर पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंची। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रपति कल मुख्य अतिथि के रूप में देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ उन्होंने ये याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वो चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की

0: कथित जानकारी छुपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के झंडे वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत की PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. Earlier speaking in a program, Prime Minister noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors.
3: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा।
4: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
3: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
4: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
2: Union Home Minister Amit Shah today chaired a high-level meeting to review the preparedness for the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of the CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB attended the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. The Supreme Court today dismissed the writ petition filed by Congress member Meenakshi Natarajan challenging the rejection of her Rajya Sabha candidature from Madhya Pradesh. The Supreme Court declined to interfere with the returning officer's decision rejecting her nomination for the Rajya Sabha elections over the alleged non-disclosure of her criminal case in Telangana. A bench comprising Justice Prashant Kumar Mishra and Justice A.S. Chandurkar observed that once a returning officer rejects a nomination paper, the statutory remedy available to an aggrieved candidate is to approach the Election Commission. The court therefore refused to grant relief and left it open for Natarajan to approach the poll panel. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NEET UG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The agency said it is committed to ensuring that NEET UG 2026 examination is conducted in a manner that is fair, secure and responsive to the needs of candidates. The government has refuted a fake video circulating online which falsely depicts Union Finance Minister Nirmala Sitharaman promoting an investment platform. The manipulated video is claiming returns of up to 80,000 rupees per day and 24 lakh rupees per month on an investment of 22,000 rupees. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, has clarified that the video is fake and was created using artificial intelligence. PIB said neither the finance minister nor the government of India has endorsed, authorized or promoted any such investment scheme or platform. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron will jointly inaugurate the Bharat Innovates Summit in Nice, France on Sunday. Talking to Akashvani News, Ambassador of India to France, Sanjeev Singla, said the idea is to showcase some of India's best deep tech talent outside of India that has been curated by the Ministry of Education. He informed that there are over 120 deep tech startups covering 13 areas which have been selected from over 1,200 startups. In FIFA World Cup 2026, South Korea defeated the Czech Republic 2-1 in a thrilling Group A clash today, earning valuable 3 points at Estadio Akron in Mexico's Zapopan. South Korea will next take on co-hosts Mexico, while the Czech Republic will look to bounce back against South Africa in a Group A clash. In badminton, India's PV Sindhu stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney today. And with that, we end this news bulletin.

ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि समय हो चला है 3:11 और ठीक 15 सेकंड, और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम मन भावन का, जिसे लेकर आई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी रेणुका। जी हाँ, आपकी पसंदीदार गाने तो मैं जरूर चलाऊंगी आपकी फरमाइश पर उससे पहले जो है पहला गाना आपको मेरी पसंद का सुनना पड़ेगा। और आपको फरमाइश करने के लिए क्या करना है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारे कई सारे लिसनर्स ने पहले ही हमें बहुत सारे संदेश भेजती हैं जिन्हें मैं एक एक करके अभी पढ़ूंगी। और अगर आपको अपनी पसंद का गाना सुनना है या हमें संदेश भेजना है तो आपको बस करना इतना है कि व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज भेज दीजिए, आपका नाम और आपके शहर का नाम और जो गाना आप सुनना चाहेंगे, और नंबर है 9868868753। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ, 9868868753। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि मैसेजेस तो अभी से आने लग गए हैं, तो फटाफट से जो है हम गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी फरमाइश भी सुना देंगे। तो पहला गाना आशा ताई की आवाज़ में और फिल्म है मेरे जीवन साथी।

वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, ये लिखते हैं छत्तीसगढ़ से और हमें अगला मैसेज भेजा है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहाना, अरजान, अवान और अब्बासी परिवार जी, इन्होंने भी हमें भेजा है। और मोहल्ला हलवियान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजरा रानी, हीना वारसी, इन सब ने हमें मैसेज भेजा है। और अगला मैसेज जो है वो आया है जी हमें ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद मराठवाड़ा से, और ये मैसेज लिखा है सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रदमेश और कुमारी प्रणाली, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख, कल्पना, इन सभी ने हमें मैसेज भेजा है। और ये जो मैसेज मैं पढ़ रही हूँ ये हमें भेजा है जिला खारगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, शेख मूसा भाईजा, भाईजा राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ने। आप सभी के प्यार भरे इन मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर जैसा कि आप जानते हैं कि हमें भाई थोड़ी सी वक्त की पाबंदी है और मैं सारे मैसेजेस तो नहीं पढ़ सकती और सभी का नाम नहीं ले सकती, पर हाँ मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी के मैसेजेस पढूं और आपकी सभी की फरमाइश जो है वो मैं पूरी करूं। तो अगली जो फरमाइश है वो हमें भेजी है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज, कमल रानी, गीतिका और भानु ने, और ये सुनना चाहते हैं हाफ टिकट फिल्म का गाना जिसे गाया है किशोर दा ने। तो चलिए फटाफट से सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे नैना, ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना, हाय हाय मीठे बहना।

0: गुजरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ समरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ समरिया।
2: यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भवन रेडियो सखी रेणुका के साथ। और जैसा कि मैं देख सकती हूं और जैसा कि मैंने कहा भी कि हमारे श्रोता लगातार हमें अपना प्यार अपने मैसेजेस के द्वारा भेजे जा रहे हैं, तो अगला जो मैसेज है वो हमें भेजा है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधाना। और अगला मैसेज जो है ये आया है हमें, आदाब कह रहे हैं, प्रोग्राम मनभावन फिल्म और ये जो है हमें लिखा है बिलराम से इरशाद अहमद, मरियम जैनब इन्होंने। और अगला जो मैसेज है वो हमें आया है, कहाँ से आया है ज़रा, हाँ ये रहा, मुझे मिल गया, ये लिखते हैं जी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से, बड़ी दूर दूर से हमें जो है अपना प्यार भेजा जा रहा है और इसी प्यार के लिए तो हम तरसते रहते हैं। तो अपना प्यार बरसाते रहिए, मैसेजेस भेजते रहिए और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जो है सभी श्रोताओं के मैसेजेस जो हैं शामिल करें, उनका नाम शामिल करें, उनकी फरमाइश जो है हम बजाएं। अगला जो मैसेज है वो आया है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, ये हमें लिखते हैं। और ये मैसेज है जी गुन्नौर से आदल, कमर, तस्दीक और ये शुक्रिया लिखते हैं गानों के लिए, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए। और ये जो मैसेज है ये हमें भेजा है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, बाबू अहद चाहत, और ये कह रहे हैं कि हमें कोई भी गीत सुना दीजिए। जी हाँ ज़रूर, हम आपको गीत सुनाने के लिए ही तो बैठे हैं यहाँ पर। ये हमें लिखा है अगला मैसेज हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पपी भाटिया और ये लिखते हैं हमें जमशेदपुर से, थैंक यू सो मच। एक बार मैं फिर से आपको नंबर बता देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ना, तो जो भी श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उनको भी तो पता होना चाहिए। तो नंबर है हमारा व्हाट्सएप का 9868867 53, जिस पर आप हमें जो है मैसेज भेज सकते हैं और अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपनी फरमाइश या मैसेज हमें ज़रूर भेजिएगा। अगला जो गीत है वो है जी वो फिल्म है, फिल्म का नाम अभी मैं आपको बता देती हूँ, मैं तब तक आपको सिंगर बता देती हूँ कौन है, तो शायद आप समझ ही जाएं कि कौन है। सिंगर जो है वो है मोहम्मद रफ़ी साहब और इनकी आवाज़ की तो क्या ही मैं तारीफ करूँ। फिल्म है हमारा झुक गया आसमान और इसकी फरमाइश हमें महाराष्ट्र से आई थी। ये थे जी विजय जी और आरती ओंकार, इन्होंने जो है इसकी फरमाइश की थी, तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है मन भावन आपकी रेडियो सखी रेणुका के साथ। और कार्यक्रम में हमें कई सारे श्रोताओं ने कई सारे ढेर सारे मैसेजेस भेजे हैं, जैसे कि जो अगला मैसेज है वो है छोटी बलिया मुंबई करजत से, अहमद भाई फूलवाले, दुखना सफद, इमरान अहमद कापसेड़ा बाड़ नई दिल्ली से, आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया और आशु अहमद ये हमें भेजते हैं। मेरठ से हमें मैसेज भेजा है, नाम तो नहीं लिखा इन्होंने, बस फरमाइश भेज दी। अपना तो नाम लिखते तभी तो पता चलता कि आप ये जो प्यार इतना भेज रहे हैं वो कहाँ से भेज रहे हैं और कौन भेज रहा है। ये जो अगला मैसेज है ये है जी गणेशपुर उत्तर प्रदेश से, फारूक शेख, शमा परवीन शेख, साइमा फारूक, फराज शेख, गुल फराज शेख, बेबी मुस्कान ये हमें भेजते हैं मैसेज अपना प्यार। और अगला जो मैसेज है ये है प्रकाश गोगिया दिल्ली से, ये हमें नमस्कार भेज रहे हैं अपना, नमस्कार जी आपको भी। और अगला जो मैसेज है ये है न्यू दिल्ली से गरिमा शकुंतला यादव, और ये भी हमें अपना प्यार भेज रहे हैं अपने मैसेजेस के द्वारा। और आप भी जो है अपना प्यार भेजते रहिए, नंबर मैंने आपको बता ही दिया था 9868868753, इस पर आप अपनी फरमाइश अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं। और निधि कपूर सेक्टर 7 गुरुग्राम से हमें मैसेज भेज रही हैं, और ये है नशरीन खान, वसीम खान और मुबीरा खान तावर गली खांडवा से ये हमें अपना प्यार भेज रहे हैं। और अगला जो मैसेज है ये हमें आया है गुड़गांव से, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान ये हमें अपना प्यार मैसेजेस के थ्रू भेज रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर और रामेकर परिवार जो है पूरा ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। ये है इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा, तो खैर मैंने आपका नाम तो ले ही दिया है। और होली चौक उत्तम नगर से भी हमें सुना जा रहा है जयराम खारेवाल, सचिन खारेवाल, अमन खारेवाल, दीपांशु खारेवाल ये हमें जो है सुन रहे हैं अभी। और इन्हीं के साथ साथ जो है आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी ये हमें अपना प्यार भेज रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का। और अगली जो फरमाइश मैं पूरी करने जा रही हूँ ये है यूपी से, जो हमें मैसेज भेजा था फारूख फैजी, फरिया और फरहीन ने, इनकी फरमाइश थी फिल्म हाथी मेरे साथी से का गाना। तो लीजिए जी, पेश है आपके लिए ये गीत।

मौसम का रुख तो आज काफी अच्छा है और इसीलिए ये गीत भी हमने आपके लिए जो है बजाया। और अगला जो मैसेज हमें भेजा है वो है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड ने। और अगला जो मैसेज है ये हमें आया है, ये लिखते हैं आदाब आपको और एफएम गोल्ड परिवार को हमारा प्यार भरा आदाब। आदाब जी आपको भी छत्तीसगढ़ से चूड़ी लाइन से, ये लिखते हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, इनका मैसेज मैंने पहले भी पढ़ा था, आपको शामिल किया था। ये हैं जी मोहम्मद यूनस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, अयूब खत्री और यूसुफ खत्री, ये हमें लिखते हैं छिपा कॉलोनी खांडवा से। और ये है अगला मैसेज हमें भेजा है जे कॉलोनी मदनपुर खादर दिल्ली से सहाना बेगम, इरशाद अहमद और अजहर ने, संगीत के सितारे रेडियो लिसनर्स क्लब को आदाब भेज रहे हैं। और ये हैं जी कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खां। और अगला जो हमें मैसेज आया है ये है संदीप मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से, आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार जो है हम भेज रहे हैं गाने के थ्रू। जी हाँ, आप जानते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि समय की थोड़ी सी पाबंदी है, वरना हम तो चाहते हैं कि आपके मैसेजेस हमें आते रहें और हम जो है उन्हें शामिल करते रहें, हमारा यही तो काम है और यही करना तो हमें अच्छा लगता है। अगला जो मैसेज है ये है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यंश मसूरी का, ये हमें अपना प्यार भेजते हैं मैसेज के थ्रू। अगला जो मैसेज है ये है आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, ये हमें मुजफ्फरपुर बिहार से

जो है अपना प्यार भेज रहे हैं। और अगला जो मैसेज है ये है, ये कहाँ से आया है, जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी, किशन, भावना, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि किसी भी गीत पे हमें शामिल कर दीजिएगा। ज़रूर जी, मैंने कर दिया, आपने कहा और ये हो गया है। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हमें लिख रहे हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू, डब्बू, शुक्रिया आपका भी और इतने सारे जो मैसेजेस आप भेज रहे हैं उसके लिए भी। और अगला जो हमें संदेश भेजा है ये है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ ने, ये हमें लिखते हैं गोराया जालंधर से। आपके इन मैसेजेस के लिए फिर से एक बार मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर हमारा वही है 9868868753, जिस पर आप हमें भेज सकते हैं अपने मैसेज, जैसे अभी इन लोगों ने हमें भेजा। अगला जो मैसेज वो है सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, ये भी हमें अपना प्यार भेज रहे हैं। और अगला जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये है फरमाइश मोहम्मद खतीजा अशफाक आफरीन और मोहम्मद अल्ताफ की, जो रहते हैं छत्तीसगढ़ में। इन्होंने पत्थर के सनम फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

नहीं, हमारा दिल पत्थर का नहीं है और आप ये काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे दिल में तो बस प्यार ही प्यार है और हमें भी पता है कि आपके दिल में भी हमारे लिए बस प्यार ही प्यार है और वही प्यार जो है आप हमें मैसेजेस के द्वारा हम तक पहुंचा रहे हैं। हमें चंडीगढ़ सिटी से बिमला और सतीश जी ने मैसेज भेजा है और हमें अल्तमाश समीना मुदस्सर फिरदो जमानगर खांडवा के बच्चे, इन्होंने भेजा है हमें अपना मैसेज। और कस्बा बलराम उत्तर प्रदेश से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, मरियम जैनब, ये भी हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं। और आपका इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, मैं बात कर रही हूँ सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशाना और निमित आहूजा का, जो हमें मैसेज भेज रहे हैं। और मुझे पता है कि आप थोड़ा सा नाराज़ भी होंगे कि भाई हमारा मैसेज क्यों नहीं शामिल किया है, पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि वक्त की जो पाबंदी है उसके सामने हम क्या ही करें। मधुबनी बिहार से हमें मोहम्मद मजहर लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गाने और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी इनको, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सुरसंगम रेडियो श्रोता ग्रुप वीर मगाम गुजरात से, अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सनी, जैमिन कुमार भावसार, ये भी हमें जो है अपना प्यार भेज रहे हैं। और अगला जो मैसेज है ये हमें भेजा है बागपत से संजय ढिगिया, नमन ढिगिया इन्होंने। और जी हाँ, हमें आपके मैसेजेस मिल रहे हैं और मेरी जो कोशिश, जैसा कि मैंने कहा, सबको शामिल करने की है। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, ये हमें मैसेज कर रहे हैं अंबाला हरियाणा से, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू दिल्ली से हमें मैसेज आया है कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु का। और ये हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, ये हमें नमस्ते भेज रहे हैं और आपको भी नमस्ते। और अगला जो गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रही हूँ ये है जी तेरे घर के सामने फिल्म से, जिसकी फरमाइश हमें राजस्थान से आई थी, जगदीश चौधरी ने इनकी जो है फरमाइश की थी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: घर के सामने दुनिया बसाऊंगा।
1: फारूक अली खान और मिस अब्बासी बुलंदशहर से जो है अपना प्यार हम तक पहुंचा रहे हैं और आपके इस प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। विजय महोबिया, कविता महोबिया और पिंटू बाबू जो है हमें खंडवा से मैसेज भेज रहे हैं और अगला जो मैसेज है ये है वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष का और अगला जो मैसेज है ये है शास्त्री नगर वीर शहर से किसन सपकाल आशा सपकाल सोनिया सपकाल सायरा सपकाल विशाल सपकाल और ये भी हमें जो है अपना प्यार भेज रहे हैं और आपके इस प्यार के लिए तो शुक्रिया मैं तह दिल से कह ही चुकी हूँ और जितनी बार कहूँ उतना कम है। हमें अगला मैसेज लखनऊ उत्तर प्रदेश से भेजा है मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमराना नाज राधा नामदेव ने और ये जो हमें मैसेज आया है ये नाम तो नहीं लिखा, ये हैं शायद सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन मुखी, ये हमें सोनीपत से जो है मैसेज कर रहे हैं। आपके इन मैसेजेस और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन ने मैसेज किया है, कौशल्या देवांगन ने भी मैसेज भेजा है और हेमलता डिम्पल ये भी हमें नमस्कार भेज रहे हैं अपना। और हमारा अगला जो मैसेज है ये है भोपालगढ़ राजस्थान से आया है धर्मेंद्र छिंपा कपिल छिंपा ईशान छिपा और पूजा परिहार ने और कार्यक्रम का जो आखिरी गीत है वो है फिल्म कालीचरण से और इसकी फरमाइश हमें नांगलोई से आई थी जो थे राहुल ऋतिका और जगदीश। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

अपना कार्यक्रम खत्म करने जा रहे हैं और मुझे पता है कि मैं कई सारे श्रोताओं का मैसेजेस नहीं पढ़ पाई, उनका नाम नहीं शामिल कर पाई, उनकी फरमाइश नहीं चला पाई और उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। पर क्या करूँ, हमारे पास वक्त की पाबंदी है और जैसा कि आप जानते हैं कि प्यार तो हमारा वैसा ही रहता है और आप भी हमें उतना ही प्यार करते रहेंगे, मुझे इस बात की पूरी गारंटी है। और मेरी बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें सुनते रहिए और अपने मैसेजेस भेजते रहिए और ऐसे ही जो है प्यार बांटते रहिए।

दोस्तों, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार और समाचार के बाद भी ढेर सारे कार्यक्रम हम आपके लिए पेश करेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपको कार्यक्रम कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं, वही नंबर तो सेम रहेगा 9868868753। जी हाँ, आप इस पे हमें बता सकते हैं कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा, और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। तो मुझे रहेगा आपके मैसेजेस का इंतजार, और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों का विरोध दर्ज कराने के लिए आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। कल एक और जहाज पर हमला किया गया जिस पर चालक दल के 22 सदस्य भारतीय थे। मंत्रालय ने दूसरी बार किसी अमरीकी राजनयिक को तलब किया। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पहले इन्हें लापता माना जा रहा था। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चैन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में बीएसएफ मुख्यालय में आयोजित की गई। इसने सीमा पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने और सीमा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन से जुड़े आपसी चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं। दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit Nice in France on the 14th of June as the first stop of his two-nation European tour covering France and Slovakia. The visit carries special significance as it will be his first bilateral summit with President Emmanuel Macron since the two nations elevated their ties to a special global strategic partnership in February this year. From Nice, Mr. Modi will travel to Slovakia before returning to France for the G7 summit in Avignon, where India will participate as a leading voice of the global south. The External Affairs Ministry has summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, to lodge a protest against attacks on commercial vessels off the coast of Oman. Yesterday, another vessel with 20 Indian crew on board came under attack. The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. This is the second time the U.S. envoy has been summoned by the ministry. Three Indian seafarers who were initially reported missing have been confirmed dead in one of the attacks. Union Home Minister Amit Shah today chaired a high-level meeting to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Director Generals of the CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB attended the meeting. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. The Supreme Court today dismissed the writ petition filed by Congress member Meenakshi Natarajan challenging the rejection of her Rajya Sabha candidature from Madhya Pradesh. The court declined to interfere with the returning officer's decision rejecting

आप सुन रहे आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अगला गीत जो है ये हम सुनाने जा रहे हैं आपको फिल्म सीआईडी से, और इस गीत को गाया है आशा भोसले, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी ने।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

ये गीत उषा मंगेशकर की आवाज में और फिल्म है इनकार।

0: to www.iiap.res.in. National Capital Region Transport Corporation, NCRTC, has invited applications for one post of Assistant Manager, Marketing and Communications on a regular basis in the pay scale of 50 to 1,60,000. Applicants should possess a full-time MBA or PGDM in marketing or master's postgraduate degree in mass communication, along with 5 years of relevant post-qualification experience. The maximum age limit is 40 years. NCRTC, the implementing agency for the Regional Rapid Transit System, RRTS, is seeking professionals with expertise in marketing, branding, public relations, and corporate communications. Detailed eligibility conditions, application format, and important dates are available under the career section of the NCRTC website. Do refer to www.ncrtc.in. I repeat the website, it is www.ncrtc.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इंडिया एग्जिम बैंक सीधी भर्ती अभियान के तहत आमंत्रित कर रहा है। इन पदों के लिए आवेदन उप प्रबंधक सूचना सुरक्षा 4 पद, प्रबंधन प्रशिक्षु मानव संसाधन प्रबंधन 3 पद, प्रबंधन प्रशिक्षु प्रशासन 2 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.eximbankindia.in/careers। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक शैक्षणिक 1 पद, उपनिदेशक शैक्षणिक 1 पद, कार्यकारी शैक्षणिक 3 पद। तीनों पदों का नियुक्ति स्थान मुंबई रहेगा। अधिक जानकारी जैसे योग्यता, अनुभव, आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आदि के लिए देखिए वेबसाइट www.icsi.edu/careers। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 19 जून 2026। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित रेजिडेंसी योजना के अंतर्गत कॉलेज के विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर नियुक्ति के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित आवेदन पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in। वेबसाइट पर जाकर क्लिक कीजिए वर्क विद डीयू, उसके बाद जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज पर जब आप क्लिक करेंगे तो साथ ही कॉलेज की वेबसाइट www.ucms.ac.in पर करियर्स का अनुभाग देखें, इसमें आपको तमाम जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये विज्ञापन रोजगार समाचार के 6 से 12 जून 2026 के अंक में प्रकाशित हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबी नगर हैदराबाद आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। चिकित्सा अधीक्षक, वित्तीय सलाहकार, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता विद्युत, नर्सिंग अधीक्षक, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, कार्यकारी सहायक, निजी सहायक, तकनीशियन प्रयोगशाला और अपर श्रेणी लिपिक। तकनीशियन प्रयोगशाला के लिए 5 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जबकि अपर श्रेणी लिपिक के लिए 3 तथा सहायक लेखा अधिकारी और नर्सिंग अधीक्षक के लिए 2-2 रिक्तियां उपलब्ध हैं। अन्य सभी पदों के लिए 1-1 रिक्ति ही उपलब्ध है। शैक्षिक योग्यता, आयु और पात्रता मानदंड आदि सभी शर्तों और नियमों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबी नगर की वेबसाइट aims.bbnagar.edu.in। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में अध्यक्ष के पद के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन फॉर्मेट, योग्यता शर्तें, अपेक्षित अर्हताएं, सेवा के लिए निबंधन और शर्तों जैसे अन्य ब्यौरों के लिए देखिए मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in अथवा www.ibbi.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आमंत्रित कर रहा है एसोसिएट प्रोफेसर के दो पदों के लिए आवेदन। पद संबंधी विवरण और आवेदन का निर्धारित प्रारूप देखने के लिए देखिए वेबसाइट nidm.gov.in। आवेदन की अंतिम तिथि है 13 जुलाई 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और आज डेटलाइन में हम बात करेंगे बाल श्रम के विरुद्ध जो विश्व दिवस मनाया जा रहा है उस पर। तो शुरुआत कार्यक्रम की करेंगे चार पंक्तियों के साथ, बचपन निश्चल मन कोमल तन नटखट प्यारा सा बचपन, कभी होती मीठी शरारत कभी रूठ कर छिप जाना, कभी जिद पर अड़ जाना कभी गले का हार बन जाना, कभी अपना प्यार दिखाना कभी होती हंसी टिटोली, बचपन की है हमजोली। और ये बचपन हर किसी को एक जैसा नसीब नहीं होता है। जो बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं उन्हें शिक्षा की ओर और उनके अल्हड़ बचपन की ओर लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें समर्पित है आज का दिन। तो डेडलाइन में विस्तार से बात करेंगे। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार जागृति, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रम ऑन 100.1 FM एंड वी आर स्टार्टिंग ऑन सच अ ब्यूटीफुल नोट। वेल चिल्ड्रन, देयर इनोसेंस एंड दे डिजर्व ऑल ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड, एंड विद दिस होप we are beginning our program today, and as Jagriti told us in our dateline segment we'll talk about it, and we have all of the other stuff also lined up for you. We have reports, capsules, tributes, they will be there at the end of the program, and this is our way of telling you that stay with us till the next roughly 30 minutes. There is so much that we are gonna unfold. First we are beginning with the headlines.
1: Ji, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्षों में सरकार ने ऐसा अनुकूल वातावरण बनाया है जिससे महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें और राष्ट्र निर्माण में और अधिक मजबूती से अपना योगदान दे सकें।
2: होम मिनिस्टर अमित शाह चेयर्स हाई लेवल मीटिंग टू रिव्यू प्रिपेयरेडनेस ऑफ श्री अमरनाथ यात्रा इन न्यू दिल्ली।
1: सरकार ने उद्योगों को पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगाई।
2: United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman.
1: भारतीय निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन।
2: And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia and Herzegovina in Group B clash in Toronto. So this is our segment Dateline India. Well, we told you today it's World Day Against Child Labour, and we welcome you to this special segment of our program as we commemorate

0: बाल श्रम, जब बाल श्रम की हम बात करते हैं शगुन, तो बाल श्रम कई बार हमें ऐसा भी लग सकता है कि घर में जब छोटे बच्चे से हम कोई काम करवा रहे हैं तो क्या ये बाल श्रम है? तो श्रोता आपको बता दें कि ये बाल श्रम नहीं है। जब हम कहीं पर जाते हैं किसी ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे या जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर जो छोटे बच्चे अक्सर जिन्हें छोटू करके बुला लिया जाता है, जिनकी उम्र है स्कूल जाने की, एजुकेशन लेने की, और उन्हें श्रम में लगा दिया जाता है, असल में वो होता है बाल श्रम। बच्चों के लिए किया गया हर जो बच्चा काम कर रहा है वो बाल श्रम नहीं होता है। जैसे अभी मैंने बात की कि घर के हल्के फुल्के कामों में मदद करना, सुरक्षित माहौल में, पारिवारिक कारोबार में हाथ बटाना या ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जिनसे पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए, बच्चे के विकास में उसका पॉजिटिव रोल अगर वो अदा कर रहा है तो वो बाल श्रम नहीं है।
1: राइट,
0: बाल श्रम का मतलब है ऐसा काम जो बच्चों के बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से उन्हें वंचित कर दे। ये ऐसा काम है जो बच्चों के लिए मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक और नुकसानदेह होता है। ये उनकी स्कूली शिक्षा में बाधा डालता है, चाहे उन्हें स्कूल जाने से रोककर, बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर करके, या फिर स्कूल जाने के साथ साथ बहुत ज्यादा देर तक भारी काम करने के लिए बाध्य करके।
1: Well, yes, Jagriti told us about the whole of this. She made it clear to us what actually child labor is and the worst forms of child labor. Let's reflect upon that: slavery, trafficking, also forced labor, commercial sexual exploitation, recruitment into armed conflict also is included in it, and hazardous work that threatens children's health and safety. For example, in a firecracker factory. Right? Mm-hmm. And imagine a child working in dangerous mines, handling harmful chemicals on farms as well, or carrying heavy loads at construction sites, spending endless hours selling goods on the street instead of sitting in a classroom. For millions of children, this is not imagination. It is their everyday reality. They face it every day.
0: बिल्कुल, और बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस की शुरुआत भी इसीलिए की गई थी जिससे कि बाल श्रम को हर तरह से ख़त्म करने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान खींचा जा सके, क्योंकि जब समस्या का ध्यान खींचा जाता है उसी के बाद उसका समाधान सामने आता है।
1: सॉल्यूशंस कैन बी पुट फॉरवर्ड।
0: और ये दिन सरकारों, मजदूर संगठनों, नियोक्ताओं, नागरिक समाज के समूहों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक संगठनों और आम नागरिकों को एक साथ आने और बच्चों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने का मौका देता है। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाल श्रम सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है।
1: And elaborating upon that point, it is a human rights issue, it is an education issue, it is a development issue, and above all, it is a moral issue. It's a great way to put it actually. Children belong in schools, playgrounds, not at all in factories, in fields or mines or hazardous workplaces. And despite years of determined efforts, child labor, it still remains a significant global challenge. It's a sad

0: sad reality. And according to current estimates, let's bring you some numbers, nearly 138 million children worldwide, they remain trapped in child labor. That's a huge number, Jagriti. And even more alarming is the fact that more than 54 million children, they are engaged in hazardous work, like in mines or firecracker factories, as we told you. This threatens their safety, health, and their overall well-being and their development.
1: And Shagun, ye sirf aankde nahi hai. Har number ke piche ek bachcha hai. Jo aankda ban jata hai. Jiske paas hoti hai ummeede, hunar aur sapne. एक ऐसा बच्चा जिसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, एक ऐसा बच्चा जिसे मौके मिलने चाहिए, एक ऐसा बच्चा जिसका भविष्य बेहतर होना चाहिए. वर्ष 2026 बाल मजदूरी के खिलाफ चल रहे ग्लोबल कैंपेन में एक अहम मोड़ है.
0: एंड दिस चाइल्ड लेबर डे, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे, इट हैज कम एट अ डिसाइसिव मोमेंट where the 6th Global Conference on the Elimination of Child Labour held in Marrakesh, it brought together governments and it's a Moroccan place actually, international organizations, employers, workers, representatives and civil society leaders and participants. They reaffirmed the urgent need to accelerate efforts and then transform promises into actual practical action. And one of the major outcomes of the conference, this the Global Conference on the Elimination of Child Labour, was the Marrakesh Global Framework for Action Against Child Labour. This framework, it provides a concrete map for governments and stakeholders, and this outlines measurable indicators, integrated responses aimed at tackling the root cause of child labour. And this also protects the rights of every child. The message from Marrakesh was unmistakable. The time for action is Now.
1: और 2026 में अभियान एक दमदार नारे के साथ चलाया जा रहा है और इसका नारा है बाल मजदूरी को रेड अलर्ट, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम.
0: Right.
1: और रेड अलर्ट का मतलब जो खेल के बारे में जानते हैं या अलग अलग खेलों के बारे में जानते होंगे, बिल्कुल, तो रेड कार्ड का वो महत्व भी समझते हैं. रेड कार्ड का मतलब है कि गलत व्यवहार हुआ है और तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है. इस साल का अभियान दुनिया से बाल मजदूरी को रेड कार्ड दिखाने का आग्रह करता है. ये उन नीतियों पर मजबूत कार्रवाई की मांग करता है जो बाल मजदूरी को रोकती है, उन बच्चों की मदद करती है जिन्हें शोषण वाली स्थितियों से निकाला गया है. इन नीतियों में शामिल हैं कुछ बिंदु: सभी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करना, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का विस्तार करना, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम और पर्याप्त आजीविका को बढ़ावा देना, कानूनों को मजबूत करना और उन्हें लागू करने के तरीकों में सुधार करना, बेहतर निगरानी और डेटा इकट्ठा करने की प्रणालियां विकसित करना और कृषि प्रणालियों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जिम्मेदार तौर तरीकों को बढ़ावा देना.
0: And Jagriti, the challenge, it is enormous, but there is also a reason for hope. To accelerate progress, UNICEF and the International Labour Organization have identified several priority actions, which include investing in social protection, strengthening child protection systems, guaranteeing universal access to quality education, schools must be accessible, affordable for all, and safe and inclusive, particularly in rural communities and crisis-affected areas. And also, promote decent work opportunities for both adults and youth. When adults have access to fair wages and secure employment, children are less likely to be forced into labor. And also enforcing laws and ensuring business accountability. Strong legislation, effective inspections and responsible business practices, they are essential for protecting children throughout supply chains. And these steps that we mentioned, they have been there to accelerate progress.
1: और श्रोताओं, बाल मजदूरी को ख़त्म करना सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको मिलकर ये जिम्मेदारी निभानी होगी. माता पिता शिक्षा को प्राथमिकता दे सकते हैं, शिक्षक कमज़ोर बच्चों की पहचान करके उन्हें मदद दे सकते हैं, समुदाय के जो लीडर्स होते हैं वो जागरूकता बढ़ा सकते हैं, कारोबार सही और नैतिक तरीके से अपना सकते हैं, युवा बदलाव लाने के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ग्राहक सोच समझकर फैसले ले सकते हैं, सरकारें बच्चों की सुरक्षा के लिए नीतियां बना सकती हैं और उन्हें लागू कर सकती हैं. हम में से हर किसी के पास ऐसी दुनिया बनाने में योगदान की ताकत है जहां बच्चों की अहमियत उनकी काबिलियत से हो, ना कि उनसे मजदूरी करवा के उनका शोषण किया जाए.
0: Well, it's a great way to put it, Jagriti. So let us raise our voices against exploitation and let us show the world that child labor has no place in our societies. And we stand for a future where every child can enjoy the childhood they deserve. So until next time, remember, listeners, every child deserves a childhood. Together, we can make it happen.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या विशेष है।
0: So Jagriti, let's take our listeners first to Kozhikode. The Yuva Sangam, jointly organized by IIM Kozhikode in Kerala in collaboration with IIM Jammu, as part of nationwide youth exchange program by the central government, was notable for its organizational excellence and variety of programs. The Yuva Sangam was held from early June for a week. We have a detailed report.
2: The central government is celebrating the Yuva Sangam to strengthen the bond between the youth of the northeastern states and other states of the country and to uphold the concept of Ek Bharat, Shrestha Bharat. The program, which focuses on tourism, heritage, progress, technology and interconnection, adds more luster to the successful 12 years of the Narendra Modi government. As part of this, Yuva Sangam organized at the Indian Institute of Management, Kozhikode, was noteworthy. 33 students from Jammu and Kashmir, Ladakh and Chhattisgarh participated. Out of these, 18 were female students and 15 were male students. The group reached the UNESCO City of Literature, Kozhikode, under the leadership of 3 teachers. This was the 6th phase of the Yuva Sangam organized as part of the Ministry of Education's Ek Bharat Shrestha Bharat campaign as student exchange program. The students who set out on a 7-day Kerala tour were welcomed with a traditional Kerala welcome ceremony, Palapoli. The students were introduced to various fascinating cultural and traditional aspects of God's own country, which became a new experience for them. The participants shared their fascinating experience of a week in God's own country, thanking the government for the innovative venture. Suresh VK for Parikrama, Akashvani News, Kozhikode.
1: और अब चलते हैं मुंबई की ओर और जहां देश भर में स्टैंड अप कॉमेडी कार्यक्रमों के दौरान की गई टिप्पणियों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उससे जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। तो और अधिक हमारी इस रिपोर्ट में जानते हैं कि मुंबई से हमारी संवाददाता इस पर क्या बता रही है।
3: स्टैंड अप कॉमेडी शो के दौरान की गई टिप्पणियां, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संबंधित विषयों पर देश भर में चर्चा चल रही है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बता रहे हैं तो अन्य लोगों के लिए ये बात कॉमेडी शो तक सीमित है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार जिम्मेदारी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनोरंजन के दौरान समाज की गरिमा और मर्यादाओं का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने का आग्रह किया।
4: अभिव्यक्ति का स्वातंत्र भारत के संविधान ने सभी को दिया है, लेकिन उसके साथ साथ इसका दुरुपयोग न हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी उसी संविधान ने तैयार की है। जब कोई अभिव्यक्ति अमर्याद हो जाती है तो समाज के लोगों के डिग्निफाइड जीने का जो अधिकार है, उस अधिकार पर वो आक्रमण करती है और इस प्रकार का आक्रमण ये हमारे संविधान को मंजूर नहीं है।
3: परिक्रमा के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: We are now heading to Vijayawada, where, in a first-of-its-kind initiative in India, the NTR District Administration has launched the innovative V2 Time Bank. This is also called Youth Time Bank, a platform that enables volunteers to earn and save time credits by serving elderly citizens, patients, and other needy individuals. We have a detailed report. Listen in.
5: The Youth Time Bank, being implemented as a pilot project in Vijayawada, is aimed at creating a sustainable support system that benefits both youth and senior citizens. Under the Youth Time Bank model, volunteers deposit the hours they spend helping others. Services such as assisting patients in hospitals, purchasing medicines, paying bills, accompanying senior citizens, providing guidance and offering companionship are converted into time credits and credited to the volunteer's account through the dedicated mobile application V2 Time Bank. Explaining the concept, NTR District Collector Dr. G. Lakshmi Shah said,
6: In Vijayawada city of NTR district, Andhra Pradesh, we started a concept called Time Bank, V2 Time Bank. It's also called Youth Time Bank. The main concept is youths who are willing to do social work will be helping the needy senior citizens or the patients or the whoever in need of the time. And once they help the senior citizens, their time will be saved.

0: Today, listeners, we are also remembering the eminent Hindustani classical musician, writer, humorist P.L. Deshpande on his death anniversary. Well, he's also he has been a writer, humorist from Maharashtra, and he's actually an accomplished film and stage actor as well.
1: बिल्कुल दूरदर्शन से इसकी स्थापना के समय से ही वे जुड़े रहे और पीएल देशपांडे को पुल देशपांडे के नाम से भी जाना जाता था. पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे ऐसे शख्स थे जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू लिया था. उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, महाराष्ट्र भूषण सम्मान, कालिदास सम्मान ऐसे कई अलंकारों से सम्मानित किया गया था.
0: Today we are also remembering Hollywood legend Gregory Peck. Well, from his very first year in Hollywood through 5 decades of making motion pictures, Gregory Peck has been to audiences around the world the quintessential Hollywood leading man, tall, dark and handsome looks complemented by an overwhelming sense of moral, physical strength as well. He received 4 Oscar nominations within 6 years and finally winning his masterpiece film To Kill a Mockingbird in 1962.
1: आज ही संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज ने अलविदा कह दिया था. वे योग और तंत्र के प्रकांड विद्वान थे. उन्हें पद्म विभूषण, महामहोपाध्याय और साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया गया था. और आज जयंती है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोकगीत भरतरी गायिका सुरुजबाई खांडे की. 1986-1987 में सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव का हिस्सा बनने का उन्हें मौका मिला. छत्तीसगढ़ सरकार से उन्हें दाऊ रामचंद्र देशमुख और देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार भी मिला. आइए उनकी गायकी का एक अंश हम यहाँ पर सुनते हैं.

0: और आप जिस जहाँ पर भी रहते हैं मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो मेट्रो आपकी लाइफ का अहम हिस्सा होगी। और वही मेट्रो देने वाले भारत के मेट्रोमैन ई श्रीधरन का जन्मदिन है। कोंकण रेलवे और दिल्ली में मेट्रो रेल का श्रेय इन्हीं को जाता है। और आपको बता दें कि आज ही के दिन हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार गीतांजलि श्री का भी जन्मदिन है। ये हिंदी की पहली ऐसी लेखिका हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है।
1: Well, today we're also remembering Peter Granville Fonden, the English bassist and founding member of the rock band The Pretenders.

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जागृति और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
0: नमस्कार।

मीडियम वेव 305.81 मीटर्स यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर कोट बहरा घाघी टिकरा खड़गवां रामेश्वरपुर जाम दोहर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी फोकली महुआ करमडीहा कोटराही भगवानपुर नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर लुंड्रा सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये सकालो घंघरी कुल्हाड़ी कंचनपुर खलीबा पड़ौली किशुनपुर जमीरा डांडपारा शिवनाथपुर घासीडी बोड़ाझरिया ढोढ़ा गांव दातीढाब घटगांव बरवाली कंडराजा बरिमा पेंट घोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर जामचुआ बिलासपुर चरईमारा रानी कोम्बो खड़ामाचा पीठा आमा राजा आमा महेशपुर झिमकी चट्टानपारा कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 36 है। ये लुटान पुरुंगा बनहर औरानारा करोंधा जिगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।

0: कोरबा वनमंडल के कुदमुरा और करतला में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये चचिया बैगामार, तौलीपाली, गिराव, बताती, कोरकोमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के एतमानगर, पसान और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये मड़ई, कोदवारी, भूडूपानी, कठमोरगा, लालपुर, परला, चोटिया, कापानवापारा, खड़पड़ी, बनिया, झुनकीडी, बांधापारा, कुकरी, कादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 61 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदू चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमरघाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोठ।

हमर हाथी हमर गोठ ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स कैन रात 8:30 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। रात 9:25 पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा जन विश्वास पर केंद्रित कार्यक्रम। युवावाणी कार्यक्रम अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर। आजकल का विषय होगा विश्व बाल श्रम के विरुद्ध दिवस। सुनिएगा खेल चौपाल और ज्ञान सरिता। शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात का विषय होगा SRI विधि अपनाओ ज़्यादा आमदनी पाओ। हेलो चौपाल में फलोद्यान लगाने की तैयारी और उसका प्रबंधन इस विषय पर जानकारी देंगी श्री कैलाश सिंह पैकरा उप संचालक उद्यानिकी रायपुर। प्रस्तुत करता होंगे शशि प्रकाश पांडे। सुगम संगीत रात 8:15 पर कलाकार होंगे वकील अहमद। रात 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित अभय नारायण मलिक का राग भाग्यश्री में धमार गायन। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें सुनिएगा रात 10:00। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया शाम 6:30 पर। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:00, रात 8:00, रात 9:15 पर। ये थी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। और आइए अब आपको बता दें हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स कैन कल रात 8:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम कल रात 10:00। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कर्नाटक सैक्सोफोन वादन। कलाकार होंगे US प्रसाद। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर कल सुबह 7:05 पर। प्रस्तुति होगी श्रेया श्रीवास्तव की। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में कल सुबह 8:30 पर सुनिएगा एल्बिनिज्म रोग के कारण लक्षण और उपचार पर त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे रमा शंकर। बातों बातों में कल सुबह 9:00। प्रस्तुति होगी विकल्प रंजन शुक्ला की। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:40 पर और कल रात 8:15 पर कलाकार होंगे सफरी मरगाम और साथी। उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 11:40 पर सुनेगा बागेश्वरी देवी का राग भैरवी में दादरा। घर आंगन कल दोपहर 1:30 पर आज के गोठ का विषय होगा रक्तदान महादान। भेंटवार्ता आप सुनेंगे रक्तदाता श्रीमती रेवती चंद्राले संगीता वर्मा की गोठबात। और सुनिएगा एक ही कलाकार इस क्रम में मंसूरी सी के गाए कुछ गीत। युवावाणी कार्यक्रम कल शाम 5:10 पर। अपन गोठ का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। आप मन की चिट्ठी और आप सुनेंगे माटी के गीत। लोक संगीत कल शाम 6:30 पर कलाकार होंगे गोरे लाल बर्मन और साथी। चौपाल कल शाम 7:21 पर। आज की बात का विषय होगा बरसात की पहली पशुधन के आवास प्रबंधन। 7:30 पर किसान वाणी में आज की सलाह में बीज उपचार का महत्व एवं विधियां इस विषय पर जानकारी देंगी दीप माला लखरा विषय वस्तु विशेषज्ञ पौध रोग कृषि विज्ञान केंद्र भाटा पारा। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: नन्हे हाथों में औजार नहीं सपनों की उड़ान हो, हर बच्चे के जीवन में शिक्षा का सम्मान हो।
1: बचपन का हक हर बच्चे को मिलना चाहिए, बाल श्रम नहीं शिक्षा का दीप जलना चाहिए।
0: युवा वाणी सुन रहे सभी दोस्तों को मेरा प्यार और मेरी ढेर सारी मोहब्बत। आज आपके इस रिमझिम शाम में आपके साथ है आपके अपने दो दोस्त, मैं पलक
1: और मैं सिद्धांत।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार। पलक, तुम्हें पता है कि आज क्या है और आज की तारीख कौन सी है?
0: हाँ सिद्धांत, मुझे पता है कि आज 12 तारीख है और आज विश्व बाल श्रम विरोध दिवस है। क्यों, सही कहा ना मैंने?
1: बिल्कुल सही कहा पलक तुमने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व बाल श्रम विरोध दिवस की, जो हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है।
0: अच्छा सिद्धांत, तुम्हें पता है कि ये क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत किसने की थी?
1: हाँ पलक, ये 2002 से मनाया जा रहा है और इस महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य है बाल श्रम जैसी गंभीर समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना।
0: बिल्कुल दोस्तों, ये वही उम्र होती है जब बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं और अपने भविष्य के सपने देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया में ऐसे लाखों बच्चे भी हैं जिनका बचपन मजदूरी में ही बीत जाता है।
1: बिल्कुल साथियों, बाल श्रम केवल बच्चों से काम करवाना नहीं बल्कि उनके बचपन, शिक्षा और बेहतर भविष्य के अधिकार को छीन लेना भी है।
0: हाँ सिद्धांत, और जब हम किसी होटल, ढाबे, चाय की दुकान या किसी फैक्ट्री में छोटे बच्चे को काम करते हुए देखते हैं तो शायद हमें कुछ पल के लिए दुख होता है, लेकिन फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि ये एक ऐसी समस्या है जिस पर समाज के हर व्यक्ति को सोचने की जरूरत है।
1: दोस्तों, भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनी अपराध है, फिर भी ये समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई और इसके कारण है गरीबी, अशिक्षा या परिवार की आर्थिक समस्याएं। लेकिन कारण चाहे कोई भी हो, बाल श्रम

0: बच्चों के अधिकारों का हनन है।
1: बिल्कुल दोस्तों, बाल श्रम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाती है, जिससे उनके विकास का स्तर भी रुक जाता है।
0: और साथियों, इसके अलावा बाल श्रम के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी बुरा असर डालता है। काम का बोझ उनके बचपन को छीन लेता है और उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, एक छोटी सी बात याद रखिए, किसी बच्चे को काम पर रखने के बजाय यदि हम उनकी शिक्षा में सहयोग करें तो हम उनके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।
1: बहुत सही कहा सिद्धांत तुमने। तुम्हारी इस बात से मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है।
0: हाँ हाँ पलक, क्या कहानी है बताओ।
1: एक लड़का था जो सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर काम करता था। एक शिक्षक उसे रोज दिखते थे। उन्होंने जब उससे बात की तब वो पूछते हैं कि बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तब उसने बताया कि कुछ महीने पहले उसके पापा गुजर गए और उसकी अपनी माँ की तबीयत ठीक न होने के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और यहाँ पर आकर काम करना पड़ा। तब उस शिक्षक ने उसे अपने स्कूल में दाखिला करवाया। धीरे धीरे वह बच्चा मेहनत करके आगे बढ़ा और आज वही बच्चा बहुत अच्छे पोजीशन पे आकर उसी स्कूल को डोनेशन भी देता है।
0: वाह पलक, ये घटना हमें बताती है कि एक छोटी सी मदद भी किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकती है।
1: दोस्तों, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। यदि उनका बचपन सुरक्षित और शिक्षित होगा तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा।
0: बिल्कुल सही दोस्तों, हर बच्चे को सपने देखने का अधिकार है। उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, औजार नहीं।
1: उसे स्कूल की घंटी सुननी चाहिए, फैक्ट्री की मशीनों की आवाजें नहीं।
0: तो आइए हम विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि बच्चों को शिक्षा, सम्मान और सुरक्षित बचपन दिलाने में अपना योगदान देंगे।
1: क्योंकि जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
5: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
6: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
5: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
6: 47 सालों से निरंतर सेवा में
5: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
7: दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे क्रम हमारे खेल चौपाल की ओर, जिसमें आप सुनेंगे खेलों की दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं।
8: तो देखते हैं दोस्तों बुलेटिन। फीफा विश्व कप 2026 का शानदार आगाज, दक्षिण कोरिया ने चेकिया को 2-1 से हराया।
7: मेजबान मेक्सिको ने विश्व कप के उद्घाटन मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से मात दी।
8: विश्व कप में टिकटों की ऊंची कीमतों और खाली सीटों को लेकर बहस तेज।
7: भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH को प्रो लीग यूरोपियन चरण के लिए रवाना।
8: भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप का स्वर्ण पदक जीता।
7: भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में कांस्य पदक अपने नाम किया।
8: फ्रेंच ओपन 2026 में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता।
7: 19 वर्षीय मिर्रा एंड्रिवा बनी फ्रेंच ओपन महिला एकल चैंपियन।
8: FIH प्रो लीग के यूरोपीय चरण में भारत पाकिस्तान हॉकी मुकाबले पर दुनिया की नजरें।
7: FIH के नेशंस कप ऑफ नेशंस कप 2 में टीमों की संख्या बढ़ने की घोषणा।
8: रग्बी प्रीमियर लीग 16 जून से हैदराबाद में शुरू होगी।
7: विश्व कप 2026 में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे, यह अब तक का सबसे बड़ा फुटबॉल विश्व कप है।
8: भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के लिए अगले 2 सप्ताह बेहद व्यस्त, कई बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबले सामने।
7: अब खबरें विस्तार में। फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 का आगाज हो चुका है। विश्व कप के शुरुआती मुकाबलों में दक्षिण कोरिया ने शानदार वापसी करते हुए चेकिया को 2-0 से हराया। इस जीत के साथ दक्षिण कोरिया ने ग्रुप ए में महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए हैं।
8: विश्व कप के उद्घाटन मुकाबले में सह मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। मेक्सिको सिटी के ऐतिहासिक एजेटक स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मेजबान

0: टीम ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और घरेलू दर्शकों को जीत का तोहफा दिया।
1: विश्व कप के शुरुआती मुकाबलों में के दौरान टिकटों की ऊंची कीमतों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई मैचों में अपेक्षाकृत खाली सीटें देखने को मिली है। इसके साथ फुटबॉल विशेषज्ञों और प्रशंसकों ने फीफा की टिकट नीति पर सवाल उठाए हैं।
0: भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग के यूरोपीय चरण के लिए रवाना हो चुकी है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की वापसी से टीम को मजबूती मिली है।
1: अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप के फाइनल में जापान को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आशीष तानीपुरति ने हैट्रिक लगाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस जीत ने युवा भारतीय हॉकी ताकत को एक बार फिर साबित किया है।
0: महिला अंडर 18 महिला हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए एशिया कप में कांस्य पदक मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराया।
1: जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी एल्बर्ट ने फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब जीतकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया है।
0: महिला वर्ग में 19 वर्षीय रूसी खिलाड़ी मिर्रा एंड्रीवा ने इतिहास रचते हुए अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। उन्होंने अपने फाइनल में पोलैंड की माया च्वालिंसिका को हराकर फ्रेंच ओपन ट्रॉफी अपने नाम की।
1: FIH प्रो लीग के यूरोपीय चरण में भारत और पाकिस्तान पहली बार इस प्रतियोगिता में आमने सामने होंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH ने नेशंस कप और नेशंस कप 2 में भाग लेने वाली टीमों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की।
1: भारत में रग्बी को बढ़ावा देने के लिए रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन 16 जून से हैदराबाद में शुरू होने जा रहा है। इस पर प्रतियोगिताओं में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी।
0: फीफा विश्व कप 2026 इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप है। इस बार 48 टीमें भाग ले रही हैं और कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इससे पहले किसी भी विश्व कप में इतने मैच नहीं खेले गए थे।
1: आने वाले 2 सप्ताह भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। दोनों टीमें लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगी और विश्व कप की तैयारी को अंतिम रूप देगी।

0: पलक, तुम जब से आई हो इतनी चुपचाप सी बैठी हो, कोई बात है क्या?
1: हाँ सिद्धांत, कह सकते हैं।
0: क्या हुआ, ऐसा क्यों?
1: आज जब मैं आ रही थी तो मैंने एक एक्सीडेंट देखा।
0: ओ, अरे सब ठीक तो था या कुछ बड़ा तो नहीं हुआ?
1: नहीं, लेकिन मैं ये सोच रही थी अगर वो व्यक्ति हेलमेट ना पहना होता तो शायद वो इस सलामत ना तो शायद वो आज सही सलामत ना होता। मगर वहीं बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था।
0: हाँ, तो ये चिंता का विषय है पलक, लोगों का हेलमेट के प्रति इतना सजग ना होना।

0: सिद्धांत, आज हम हेलमेट को एक सामान्य सुरक्षा का उपकरण के रूप में देखते हैं, लेकिन उसकी कहानी कम रोचक नहीं है।
1: बिल्कुल पलक, यदि आधुनिक मोटरसाइकिल हेलमेट के विकास की बात करें तो इसका श्रेय काफी हद तक डॉक्टर एरिक गार्डनर को दिया जाता है। 1914 में इंग्लैंड के प्रसिद्ध बुकलैंड्स रेस ट्रैक पर उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिल चालकों को बार बार सिर में गंभीर चोटें भी लग रही हैं। तब उन्होंने कैनवास और सेलक से बने विशेष सुरक्षात्मक हेलमेट का डिजाइन तैयार करवाया। बाद में इन्हें 1914 की आइल ऑफ मैन टीटी रेस में अनिवार्य किया गया, जिससे गंभीर चोटों के मामले लगभग समाप्त हो गए।
0: यानी आधुनिक हेलमेट की शुरुआत खेल प्रतियोगिताओं से हुई है।
1: हाँ पलक, लेकिन इसका व्यापक प्रसार एक दुखद घटना के बाद हुआ। वर्ष 1935 में प्रसिद्ध ब्रिटिश सैनिक, लेखक और पुरातत्वविद टी.ई. लॉरेंस, जिन्हें दुनिया लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जानती है, मोटरसाइकिल दुर्घटना का शिकार हो गए। उस समय उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
0: और यहीं से हेलमेट के इतिहास में एक नया अध्याय

0: शुरू हुआ।
1: हाँ, एरिक गार्डनर ने प्रारंभिक हेलमेट डिजाइन को लोकप्रिय बनाया, जबकि सर ह्यूज कैरेंस ने वैज्ञानिक प्रमाण देकर हेलमेट को जन सुरक्षा को अनिवार्य बना दिया।
0: यानी एक साधारण दिखने वाला हेलमेट के पीछे 100 साल से अधिक का शोध, विज्ञान और मानव जीवन को बचाने का प्रयास छुपा हुआ है।
1: बिल्कुल पलक, और यही कारण है कि हेलमेट केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि वो विज्ञान, इतिहास और जिम्मेदारी का संगम है।

0: दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की। भारत दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे बड़ी दो पहिया वाहन चालकों की होती है।
1: और हाँ, यह आंकड़ा तो और भी चिंताजनक है कि वर्ष 2025 में लगभग 54,000 से अधिक दो पहिया वाहन चालक और सवार ऐसे थे जिनकी मृत्यु हेलमेट न पहनने के कारण हुई।
0: दोस्तों सोचिए, यदि इनमें से अधिकांश लोगों ने सही तरीके से हेलमेट पहना होता तो शायद हजारों परिवार अपने प्रियजनों को न खोता।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार सही गुणवत्ता वाला और ठीक से बांधा गया हेलमेट सिर की गंभीर चोटों और यहाँ तक कि मृत्यु के जोखिम को भी बहुत कम कर देता है।
0: लेकिन सिद्धांत, एक समस्या यह भी है कि कई लोग हेलमेट तो पहनते हैं पर उसकी पट्टी नहीं बांधते।
1: बिल्कुल सही कहा पलक। शोध बताते हैं कि केवल हेलमेट सिर पर रख लेने से सुरक्षा पूरी नहीं होती, उसका सही फिट होना और स्ट्रैप का बंधा होना उतना ही आवश्यक है।
0: अब जरा समाज में बदलते ट्रेंड की बात करें। कुछ साल पहले तक युवा वर्ग हेलमेट को स्टाइल के खिलाफ मानता था, लेकिन आज स्थिति बदल रही है।
1: हाँ, सोशल मीडिया, सड़क सुरक्षा अभियानों और जागरूकता कार्यक्रमों ने लोगों की सोच बदली है। अब बहुत से युवा हेलमेट को सुरक्षा और सिर्फ जिम्मेदारी के प्रतीक के रूप में देखते हैं। कई शहरों में हेलमेट पहनने की दर बढ़ी है और इससे दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में कमी भी आई है।

0: सिद्धांत हेलमेट की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।
1: बिल्कुल,
0: हाल के अभियानों में 1000 लोगों को भी हेलमेट के बिना पकड़ा गया। इससे पता चलता है कि जागरूकता अभी भी अधूरी है।
1: दोस्तों, एक और दिलचस्प बात, जब हम बाइक खरीदते हैं तो अक्सर इंजन, माइलेज और स्पीड पर चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण हेलमेट पर उतना ध्यान नहीं देते।
0: सच कहा सिद्धांत तुमने, हम मोबाइल फोन के लिए कवर खरीद लेते हैं, लेकिन अपने सिर की सुरक्षा के लिए गुणवत्ता का हेलमेट खरीदने में हिचकिचाते हैं।
1: और याद रखिए, दुर्घटना कभी बताकर नहीं आती। कई लोग कहते हैं बस पास ही तो जाना है, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन अधिकांश दुर्घटनाएं घर के आसपास और छोटी दूरी की यात्राओं में भी हो सकती हैं।
0: इसलिए दोस्तों, सुरक्षा की आदत दूरी देखकर नहीं, जिम्मेदारी देखकर बननी चाहिए।
1: हेलमेट केवल नियम पालन नहीं, यह आपके परिवार के प्रति आपका उत्तरदायित्व है। आपके माता पिता, भाई बहन, मित्र और आपके सपने सब आपकी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं।
0: जब आप हेलमेट पहनते हैं तो आप केवल अपने सिर की रक्षा नहीं करते, बल्कि उन सभी लोगों की उम्मीदों की भी रक्षा करते हैं जो आप उनसे जुड़े होते हैं।

0: तो आज की ज्ञान सरिता से एक संकल्प लेते हैं दोस्तों। बाइक चाहे हमारी हो या किसी मित्र की, दूरी चाहे 500 मीटर हो या 50 किलोमीटर, हेलमेट हमेशा पहनेंगे।
1: और सिर्फ पहनेंगे ही नहीं, सही तरीके से बांध कर पहनेंगे,
0: क्योंकि हेलमेट सिर पर बोझ नहीं, जीवन का अति महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है।
1: सबसे ज्यादा हेलमेट प्रयोग करने वाले राज्यों में शामिल हैं केरलम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु।
0: वहीं सबसे कम हेलमेट प्रयोग करने वाले भारत के कुछ राज्यों में शामिल हैं गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना और अपना छत्तीसगढ़।
1: तो आज ज्ञान सरिता में संकल्प लेते हैं कि हम हेलमेट का उपयोग करेंगे और ज़रूर करेंगे,
0: और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि

0: इसी संदेश के साथ दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।
1: और दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात कि हेलमेट सिर्फ वाहन चलाता हुआ व्यक्ति ही नहीं बल्कि पीछे बैठा हुआ व्यक्ति भी इस्तेमाल करे। तो दोस्तों, सुरक्षित रहे, जागरूक रहे और जीवन को महत्व दे। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा और कल के कार्यक्रम की आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में युवाणी, जिसमें आप सुनेंगे माटी के गोट।
0: तो दोस्तों, विदा लेने से पहले हम बताते हैं कल की युवाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं दोस्तों, तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को है। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं, इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में आने आने क्षेत्र के कंपनी मन प्रदेश में 9000 करोड़ रुपया ले ज्यादा के निवेश प्रस्ताव दिन। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज प्रदेश के 2 दिन के दौरा में राजधानी पहुंचें। प्रदेश के जम्मू सरकारी और निजी स्कूल गर्मी के छुट्टी के बाद 16 जून के खुली। और कांकेर जिला में गाज गिरे ले 3 मनखे मन के मौत, उन्हें 5 जिन दूसर महिला झुलस गिन। अब समाचार विस्तार ले। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में आने आने क्षेत्र के 7 प्रमुख कंपनी मन प्रदेश में 9,580 करोड़ रुपया के निवेश प्रस्ताव दिन है। इखरले 7,800 ले ज्यादा के रोजगार सृजित हुए के संभावना है। ए मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बताइन कि नवा औद्योगिक नीति लागू हुए के बाद दिल्ली मुंबई बेंगलुरु के संग्रह जापान और दक्षिण कोरिया में रखे गए इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम ले राज्य ल 8 लाख करोड़ ले ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राज्य सरकार ये प्रस्ताव मल्ला धरातल में उतारे बर तेजी ले काम करत है। मुख्यमंत्री है कहिन कि छत्तीसगढ़ आज निवेश बर देश के सबले बेहतर राज्य मल्ले एक बन के उभरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहिन है कि सरकार है पाछू 12 बच्छर में महिला मल्ला राष्ट्र निर्माण और उमन के पूरा क्षमता के एहसास कराए बर अनुकूल वातावरण तैयार करे है। प्रधानमंत्री है कहिन कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता ला लेके शिक्षा हेल्थ केयर साफ सफाई आवास खेल विज्ञान और गवर्नेंस तक महिला मन आने आने क्षेत्र में अहम भूमिका निभावत हैं। एक ठिन सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी है कहिन कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरत क्षेत्र में महिला मन के बढ़त भागीदारी ले अवसर के नवा रास्ता खुलत है और पूरा देश के विकास परिदृश्य बदलत है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज छत्तीसगढ़ के 2 दिन के प्रवास में रायपुर पहुंचें। श्री सिंह आज मझनिया रायपुर के एक निजी अस्पताल में आयोजित विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुईं। इकर बाद उमन मोदी सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में राजधानी में रखे गए विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुईं। श्री सिंह आज संझा राजधानी में हैंडलूम हस्तशिल्प सिल्क और राज्य संग्रह क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारी मन संग बैठका घलो करहीं। उन्हें अपन प्रवास के दूसरिया दिन काली देहरादून के राजधानी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुईं। केंद्र सरकार है खुदरा पेट्रोल पंप ले संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहक मन के ईंधन खरीदे ऊपर रोक लगा दी है। सरकार है कहे है कि एमल्ला अपन जरूरत के पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्र ले ही लेना होगी। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा हकीन है कि डिजिटल भू अभिलेख के सुरक्षा पर कड़ा इंतजाम करे जाही। काली रायपुर में एक ठिन उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ओमन कहन कि गड़बड़ी रोके बर EHRMS पोर्टल बनाए जाही। राजस्व मंत्री है आने आने जिला में 3 साल या ओखले ज्यादा बेरा ले एक जगह में पदस्थ तहसीलदार नायब तहसीलदार अधीक्षक सहायक अधीक्षक और राजस्व निरीक्षक के सूची मंगाए है। एकरे संग एक हल्का में 3 साल ले ज्यादा बेरा ले जमे पटवारी मन के घलो पूरा ब्योरा तैयार करे के निर्देश दे गए है। उमन अधिकारी मन ले नगरीय क्षेत्र में पात्र हितग्राही मन ला पट्टा वितरण करे के जम्मो जरूरी सर्वे काम अवैया 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप ले पूरा करे के निर्देश दिन है। प्रदेश के जम्मू सरकारी और निजी स्कूल गर्मी के छुट्टी के बाद 16 जून के खुली। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक मल्ला आदेश जारी कर दे है। आदेश में विभाग सबो स्कूल मल्ला पहली ही दिन ले समय सारिणी के अनुसार पढ़ाई लिखाई के काम शुरू करे बर कहे है। बता दें कि राज्य सरकार है भयंकर गर्मी ला देखत 15 अप्रैल ले 16 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करे रहिस। सुनैया मल्ला बता दें कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इधरी मोदी सरकार के 12 बच्छर पूरा होए ऊपर केंद्रित रही। एक तहत छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 13 जून के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहाले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो माचे समाचार कोती। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय हा बछर 2025 भर संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार मन के घोषणा कर दे है। इस सम्मान सूची में छत्तीसगढ़ के 4 जन कलाकार के चयन करे गए है। इमा लोक कलाकार और रंगकर्मी संग्रह पद्मश्री सम्मान ले सम्मानित हो चुके डॉक्टर अनूप रंजन पांडे घलो शामिल हैं, जे मल्ला इस साल के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दे गए है। डॉक्टर अनूप रंजन पांडे के अलावा कथक नृत्य के वरिष्ठ साधक पंडित रामलाल बरेठला संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और युवा रंगकर्मी घनश्याम साहू और डॉक्टर आनंद कुमार पांडे ला उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार पर चुने गए है। कांकेर जिला के कलगांव में गाज गिरे ले 3 मनखे मन के मौत हो गए है। उन्हें 5 जिन दूसर महिला झुलस गिन। बताया जाते है कि कलगांव में मनरेगा के तहत तालाब घरीकरण के काम चलत रही, जेमा करीबन 60-70 मजदूर काम करत रही। आज बिहनिया बारिश शुरू हुए मा कुछ एक मजदूर रुख के नीचे खड़े हो गिन। इसी दौरान अचानक गाज गिर गए। ये हादसा मा कलगांव के उप सरपंच समेत 3 जन पुरुष के मौकाचमा मौत हो गए है। वहां 5 महिला गंभीर रूप ले झुलस गिन, जे मल्ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतागढ़ में भर्ती कराए गए है। इमाले एक महिला के हालत गंभीर बताए जाते, जिला बेहतर उपचार बर कांकेर जिला अस्पताल में रेफर करे गए है। कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी लग घायल मन के बेहतर उपचार के निर्देश दिन है। बलरामपुर जिला में पुलिस करीबन 10 करोड़ रुपया के गांजा बरामद करे है। इस मामला में पुलिस उत्तर प्रदेश के रहवासी 2 जिन तस्कर मन ला गिरफ्तार करे है। पुलिस बताया है कि गांजा एक दिन ट्रक में भर के ओडिशा के सोनपुर ले उत्तर प्रदेश ले जाया जात रही। मुखबिर मिले सूचना के आधार में पुलिस आज बिहनिया नाकाबंदी करके ट्रक ल रोकिस और जांच करीस। ए दौरान बोरी मन में भरे करीबन 1941 किलो ले ज्यादा के गांजा बरामद करेगीस। किर्गिस्तान में रखे गए एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्रीमत झा रजत पदक जीते है। उमन PIUH 85 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के खिलाड़ी ला हरा के ए उपलब्धि हासिल करे है। श्रीमंत अपन पदक देश के वीर शहीद जवान मल्ला समर्पित करें है। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में आज ले 36वां राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग केनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो गए है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायाकिंग केनोइंग एसोसिएशन डहर ले भारतीय कायाकिंग केनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होवैया 3 दिन के ए प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेवत हैं। छत्तीसगढ़ में शराब के ओवर ट्रेटिंग के शिकायत में आबकारी विभाग बड़का कार्रवाई करे है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल कोतिले आने आने जिला के शराब दुकान में करे गए औचक निरीक्षण के दौरान निर्धारित दर ले ज्यादा कीमत में शराब बेचे के मामला आगू आए के बाद आबकारी आयुक्त PS अलमाहा 4 जिन आबकारी उप निरीक्षक ल निलंबित कर दिन है। उन्हें 8 जिन अधिकारी मल्ला कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगे गए है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA 21 जून के हवैया नीट UG

0: हेलो नमस्कार, मैं ऐना खरमा कार्यक्रम हमारी बेड़िया में आप सबका स्वागत करती हूं। और हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9311504004। जी हां, 9311504004। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे समाज में और खास करके हमारे नौजवानों के बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं। बेरोजगारी की समस्याएं हैं, करियर को बनाने के लिए और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना उनको करना पड़ रहा है। लेकिन श्रोताओं, एक उससे भी महत्वपूर्ण समस्या है जो अपने व्यक्तिगत जीवन में वो आए दिन महसूस कर रहे हैं। और हमारे कई श्रोता हैं, कई दोस्त हैं जो पूछ रहे हैं हमसे कि हम क्या करें, जी हाँ, जब हमारे जीवन में ऐसा हो। जी हाँ, उनका कहना है कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। हमारे शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं जिस पर हम नियंत्रण रखना चाहते हैं, क्योंकि समाज जो है हमारा और हमारी धार्मिक शिक्षाएं हैं वो हमें बताती है कि हमें नियंत्रित रहना चाहिए। लेकिन शारीरिक इच्छाएं जो हैं वो बड़ी ही बलवंत होती जाती है और हम चाह करके भी अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते। जी हाँ श्रोताओं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं काउंसलर आशिमा बत्रा जी और हमारे सहयोगी, जो इन समस्याओं का हल आपको बताने जा रहे हैं। तो हम आशिमा जी और फिरोज जी के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
1: सबसे पहले मैं श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। आपसे फिर से हमें बातचीत करने का मौका मिला और आपकी हम प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं। और ये जो समस्या, जैसे आपने भी बोला और मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने ये बात करी, लड़कियों ने, लड़कों ने, उन्होंने ये बोला कि जो हमारी शारीरिक इच्छाएं हैं उनको हम पूरा कैसे करें। तो भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे भारतवर्ष में जो नैतिक शिक्षा सिखाती है और हमारे पूर्वज उसको अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगियों में, वो आज भी स्टैंड करती है, बिल्कुल करेक्ट है। उसमें यह है कि 0 to 25 ईयर्स ब्रह्मचर्य को फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब यह कि वो टाइम है जब बच्चे अपने आप को एडुकेट करते हैं, डिसिप्लिन में आते हैं, हर तरह की चीजें सीखते हैं और उस वक्त उनका अपनी बॉडीली नीड्स को पूरे करने का टाइम नहीं आया होता है। उसके बाद 26 से 50 साल गृहस्थ आश्रम, जब ये टाइम आता है अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उसके बाद हम जानते हैं वानप्रस्थ है और उसके बाद संन्यास है, उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगी, लेकिन उसका एक करेक्ट टाइम हमारे देश की नैतिक शिक्षा में बताया गया है।
2: लेकिन आशिमा जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि इस तरीके की बातें जो है इस उम्र में, जबकि लोग अविवाहित हैं, उस वक्त जो है इस तरह की आजमाइशें जो है लोगों की जिंदगी में आती क्यों है और किस तरीके से ये विकसित होती जाती है कि लोग मजबूर हो जाते हैं और वो अपने शरीर पे, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाते।
1: सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये हम एक बायोलॉजिकल प्राणी हैं। हम जो प्राणी हैं वो एक प्रोग्राम्ड है, उसका एक एक फेज है। बच्चे का फेज अलग है, जवान होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम हमारी बॉडी चेंज होनी शुरू हो जाती है, लड़कों की आवाज बदल जाती है, दाढ़ी आ जाती है, लड़कियों में भी चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस आते हैं, हम लोग उस टाइम के लिए तैयार हो रहे हैं जब हम अपना परिवार बनाएंगे और हमारे परिवार का नंबर बढ़ेगा, फैमिली विल बी क्रिएटेड। तो ये शरीर की जो अभिलाषाएं, ये भी गॉड के द्वारा डेवलप की है, इसमें कोई गंदगी नहीं है, ये नॉर्मल है। अच्छा, दूसरी वजह ये क्या है, ये क्यों आती है, कुछ ज्यादा ये हो गया कि मीडिया में जो इमेजेस हैं वो इतनी ज्यादा सेडक्टिव हो गई हैं या इतनी ज्यादा माइंड को स्टिमुलेट करने वाली हो गई कि जब जवान देखता है तो उसका, जब वो एक इमेज को देख रहा है, न्यूज़पेपर में देख रहा है या मैगजीन या टीवी में, वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेटिंग गाने देख रहा है, तो नेचुरली उनका मन उस तरफ दौड़ेगा, क्योंकि वैसे भी वो एक, आई मीन दे आर अलाइव विद दैट पैशन, उनके अंदर वो एक डिजायर है। एंड कि हमारे टाइम में इतना प्रॉब्लम नहीं था, जब हम लोग बड़े हो रहे थे इतनी ज्यादा इमेजेस नहीं थी, लेकिन उनके लिए टू मच है ये। और फिर जब वो एक चीज को देखते हैं तो उनका थॉट उस पर भाग जाता है, एंड देन दे फील कि ये मेरे साथ क्यों नहीं है या मैं क्यों नहीं ये पा सकता, वो हर जगह भागते हैं उसको पूरा करने के लिए कुछ गलत ढंग से, और फिर वो बहुत सारी मुसीबतों में पड़ जाते हैं और वो चीज कभी भी अच्छी नहीं होती। तो जवान लोगों का ये जो संघर्ष है, बहुत रियल संघर्ष है। मैं उनसे कहना चाहूंगी, मैं उनको एनकरेज करना चाहूंगी, एक रिसर्च हुई, सोशल साइंटिस्ट जिनका नाम है टिम एंड बेवरली लॉ है, उन्होंने एक रिसर्च किया, 1000 मैरिड कपल्स का उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनसे अलग अलग तरह के 2 प्रश्न उनसे पूछे गए, क्या शादी में आपने शारीरिक संबंधों को पति पत्नी ने एंजॉय किया, या दूसरा ये कि क्या आपने शादी से पहले इसको किया था। तो आप हैरान हो जाएंगे। तो जो रिसर्च का नतीजा निकला वो ये था कि जितने लोगों ने शादी के बाद इस रिश्ते को एंजॉय किया वो लोग थे जिन्होंने शादी से पहले इसको कभी नहीं किया था, और जिन्होंने शादी के बाद इस रिश्ते को एंजॉय नहीं किया वो लोग थे जिन्होंने शादी से पहले इसको एंजॉय किया था या किया था। ठीक है, इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे इस बच्चे से, इस यंग पर्सन से मेरी बात हो रही है, तो उसने मुझे ये बोला कि कई दफा मेरी जरूरत इतनी ज्यादा लगती है कि मुझे लगता है कि क्या मैं सड़क पे कोई जो पर्सन जाती है, सड़क पे लोग अवेलेबल होते, क्या मैं उनके पास चला जाऊं, फिर मैं सोचता कि क्या मेरा स्टैंडर्ड इतना गिर गया। तो उसके मन में जद्दोजहद है, लेकिन कल हमारी बातचीत के बाद वो जीता, उसका अच्छाई जीता और उसका उसको समझ में आया कि ये अभी नहीं करना है।
2: नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि हर मनुष्य के अंदर एक मनुष्य बैठा हुआ है और वो उसको ऐसा करने से वो रोकता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, कि तुम धीरज को अपना काम करने दो। लेकिन हम अपने धीरज को अपना काम नहीं करने देते, हम स्वयं अपना काम कर लेना पहले चाहते हैं।
1: सही बात है
2: जी, हम उसे अवसर नहीं देते कि धीरज जो है एक अवस्था जो हमारे जिंदगी में दी गई है, जिसे हमारे हिंदुस्तान में ब्रह्मचर्य की अवस्था कहते हैं, वो अवस्था जो है हमें अपने आप पे नियंत्रण करने की अवस्था है, हमें सीखने की आवश्यकता है, और आवश्यकता इस बात की है कि धैर्य को हम काम अपने जीवन में करने दें ताकि हम एक कुशल मनुष्य बन जाएं, एक पक्के पुरुष हम बन जाएं या पक्के स्त्री हम बन जाएं, और उसके बाद हम जीवन के आनंद को प्राप्त करें। तो अश्विन जी, ये सारी समस्याएं जो हैं, ये बातें जो हैं, इस तरह की इच्छाएं जो हैं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, तो इन चीजों से मनुष्य किस तरीके से बच सकता है, एक जवान जो है किस तरीके से अपने आप पे नियंत्रण प्राप्त कर सकता है?
1: सबसे जरूरी बात यह है कि जब आपके दिमाग में वो विचार उत्पन्न होता है
2: जी,
1: ठीक है, वो टाइम है कि जब आप उस विचार को डिसमिस कर दीजिए या हटा दीजिए। ये नहीं है कि उसके बाद आप एक थॉट आ रहा है उसके बाद चार और थॉट आपने बना के सोचने लगे और वो बात बहुत रंग बिरंगी लगने लगी आपको, फिर आपकी अलग अलग भावनाएं उत्पन्न हो गई उसके साथ, और फिर आप कह रहे अब मैं क्या करूं। जैसे जिस बच्चे से मेरी बात हो रही है वो कह रहे मैं उसको कैसे दबाऊं, दबाना नहीं है। जब आपके माइंड में ये थॉट पहली दफा आता है,
2: बड़ी खूबसूरत बात है ये कि अभिलाषाएं जो हैं वो अपनी ओर हमें खींचती हैं, और अभिलाषाएं गर्भवती होती हैं हमारे जिस्म के अंदर, हमारी आंखों के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे मन के अंदर वो अभिलाषाएं जो हैं वो गर्भवती होती हैं, और वो अभिलाषा जो है पाप बन जाता है, तो हमारा नैतिक पतन हो जाता है, हम अपनी दृष्टि में आप ही गिर जाते हैं, शारीरिक रूप से हम पंगु बन जाते हैं।
1: बहुत अच्छे शब्द आप कह रहे भाई। एक और भी बात है कि व्यविचार वो नहीं है कि जो हम फिजिकली करते हैं, व्यविचार भी दिमाग से शुरू होता है। अगर हमने दिमाग में कर लिया तो वो व्यविचार हो गया।
2: अगर किसी को हमने कुदृष्टि से देख लिया तो हमने व्यविचार कर लिया।
1: एग्जैक्टली, यानी कि थॉट
2: जी
1: जो विचार है वहीं पे कंट्रोल करना। सारे जवान जो आज हमें सुन रहे हैं, हमारी फरीदी जी की और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और तमाम सब जवानों से, बड़ों से भी, कि उस थॉट को उपजने ही मत दीजिए। जब वो आता है उसको डिसमिस कर दीजिए, उसे हटा दीजिए, कुछ और सोचने लगी। दूसरी बात, अपनी आंखों पे कंट्रोल कीजिए। अब कोई भी कहता है हम न्यूज़पेपर देखते हैं उसमें अजीब अजीब तस्वीरें होती हैं, कपड़े ढंग से नहीं पहने होते, लोग हमारे दिमाग में विचार आते हैं, या हम टेलीविजन देखते हैं, हम मूवीज देखते हैं और हमारे मन में विचार आते हैं, तो ठीक है ये इमेजेस हमारे दिमाग पे आएंगे। बल्कि आप सड़क पे गाड़ी भी चला रहे हैं, आप एक होर्डिंग देखेंगे उस पे आपको इमेजेस दिख जाएंगी जो कि गलत है, तो वो कहेंगे कि क्या हम अपनी आंखें बंद करके चले। देखिए वो तो संभव नहीं है, लेकिन आप जब उस फोटोग्राफ को, अगर आपकी नजर चली जाती है तो आप अपने थॉट को वहां से हटा लीजिए, अपनी नजर वहां से हटा के कंटिन्यू ड्राइविंग एंड ब्रिंग समथिंग एल्स टू योर माइंड। ये एक प्रैक्टिस है। जैसे हम लोग आजकल, लोग खाना खाने पहले हम कुछ भी खा लेते थे, लेकिन आजकल हमारे को लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं, तो हम अपने खाने पे भी नियंत्रण करें, ये सही है ये नहीं है, और डायबिटीज से भी बच रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर से बच रहे हैं, तो एक नियंत्रण है। ये नियंत्रण भी आपको दिमाग का, विचार का, आंखों का सीखना पड़ेगा। पहली बात मैंने

0: बोले कि जब आपके दिमाग में थॉट उत्पन्न होता है, उपजता है, आप उसको थॉट को चेंज करिए.
1: जी
0: दूसरा है कि आप आंखों पे जो आप देखते हैं उसको कंट्रोल
1: नियंत्रण
0: कीजिए, उस
1: जी
0: पर नियंत्रण करिए. और अगर आपने कोई चीज देखी भी है, यू डाइग्रेस फ्रॉम इट एंड डोंट पे अटेंशन टू इट. तीसरी बात बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क कीजिए.
1: जी
0: अगर आप जिस धार्मिक संस्था में काम जाते हैं, चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जहां भी जाते हैं, आप अच्छे कर्म कीजिए. अपने वहां पे कितने लोगों को मदद की जरूरत है, कितने सारे
1: जी
0: काम होते हैं. अगर आप मस्जिद भी जाते हैं,
1: जी जी
0: बहुत सारी चीजें करने के लिए, गुरुद्वारे में बहुत सारे अच्छे काम होते हैं, लोग
1: जी
0: कितनी
1: जी
0: सेवा करते हैं. आप
1: जी
0: वहां पे अपनी एनर्जी एक्सपेंड कीजिए.
1: जी जी
0: आप अपने घर में काम कीजिए, घर में कुछ बनाइए, अपने पेरेंट्स की मदद कीजिए,
1: जी
0: किचन
1: जी
0: में मदर की मदद कर सकते हैं, गार्डन में कर सकते हैं. गेट योर सेल्फ बिजी.
1: जी
0: कुछ नहीं तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ये नहीं है कि लड़के घर पहुंचे, अपना कुछ करने को नहीं, खाना खाया, बाहर निकल गए मोटरसाइकिल से, फिर चार लड़कों के साथ यही बातें करते हुए पाए जाएंगे. या
1: जी
0: तो
1: जी
0: लड़कियों के बारे में बात करेंगे, इन सब अभिलाषाओं के बारे में बात करेंगे,
1: जी
0: ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. इस टाइम को कम स्पेंड कीजिए.
1: जी जी
0: और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते भी हैं, गेट समथिंग सो इंटरेस्टिंग. आप शुरुआत कीजिए, मैंने
1: जी
0: ये प्रोजेक्ट किया और मैंने ऐसा किया और मैंने वैसा किया और मैं ये करने जा रहा हूँ. आप लोग भी अपने टाइम को मैनेज कीजिए, वर्क हार्ड. एक बात और मैं इसमें कहना चाहूंगी कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से बचें, तो
1: जी
0: ये है कि हमारा जो ग्रुप है दोस्तों
1: जी
0: का, लड़कियां भी होनी चाहिए, उनसे संग बात कीजिए, अच्छी डिसेंट बातें
1: जी
0: कीजिए, और मन में उनके लिए कोई गलत विचार मत रखिए. यूथ वर्क करिए, मिलके कोई एक्टिविटी कीजिए, गरीबों की हेल्प कीजिए, बुजुर्ग लोगों के संस्थाएं वहां जाके सेवा करिए, उनसे मिलकर के आइए,
1: हाँ,
0: उनको
1: बहुत सारे काम हैं।
0: काम
1: एक
0: करने के
1: बड़ा
0: लिए.
1: अच्छा शेर है इस पे कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दुनिया में देखिए, दुनिया में लोग भूखों मर रहे हैं।
0: हाँ
1: लोगों को आपकी आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता है लोगों को।
0: बिल्कुल.
1: हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपना समय जो है किस चीज पर व्यतीत कर रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है।
0: बिल्कुल. और जैसे आपने भाई अभी कहा ही था, जवानों को एक एग्जाम्पल होना चाहिए, ऐसा
1: बिल्कुल
0: बढ़िया एग्जाम्पल कि पेरेंट्स भी देखें कि कमाल है मेरा बच्चा. हो सकता है आपके एकेडमिकली रिकॉर्ड 90% मार्क्स ना आ रहे हो सकता है, नंबर्स कम हो, लेकिन आपका जीवन एक बहुत रिच जीवन होना चाहिए, आपकी क्वालिटीज रिच होनी चाहिए आप में.
1: जी हमारे अंदर ये समस्याएं जो आई हैं, उसका कारण है कि हमारा नैतिक पतन हुआ है, और नैतिक पतन के कारण हमारे अंदर ये समस्याएं हैं। लेकिन नैतिकता हम सीखे कहाँ से? नैतिकता ठीक है, किताबों में पढ़ाई जाती है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन नैतिकता का मैं सबसे बड़ा आधार जो समझता हूँ वो धार्मिक शिक्षाओं को मैं मानता हूँ, कि धार्मिक शिक्षाएं जो है वो हमें नैतिक रूप से बलवंत करती हैं। इसलिए हमारे जीवन का आधार जो है वो परमेश्वर तो होना ही चाहिए।
0: और हमें हर गलत काम को नो कहना चाहिए, नो. जवानों, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है. अगर लोग आपके ऊपर मजाक उड़ाते, ओहो तुम तो हमारी ट्रेंड नहीं चल रहे हो, हम तो इंजॉय कर रहे हैं ओपनली, नो, से नो. अल्टीमेटली आप ही सक्सेसफुल होंगे. आप अपनी वाइफ के साथ या आने वाले हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ को बहुत सुनहरा बना सकते हैं बाय सेइंग नो. मेक इट अ चॉइस. जैसे कि एक स्लोगन है, से नो टू ड्रग्स, आई विल से नो टू प्री मैरिटल सेक्स. इसकी जरूरत नहीं है.
1: बड़ी अच्छी बात है कि हर बात जो हमें नजर आती है, जो हम करना चाहते हैं उचित हो सकता है, हमारा विवेक क्या कहता है उसके मुताबिक शायद उचित हो सकता है, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए या हमारे लाभ के लिए शायद ना हो। तो नतीजा क्या निकल के आएगा हम उसको नहीं जानते, और आज के दिन यही स्थिति है हमारे जवानों के साथ कि बहुत सारी चीजें उन्हें घेरे हुए हैं, अभिलाषाएं हैं, जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल इस तरह का है, फ्रस्ट्रेशंस हैं बहुत सारे, इतना ज्यादा लोगों पे बोझ है इन दिनों, इतना ज्यादा लोग टेंशन में हैं, वो अपनी जिंदगी को किसी तरीके अपने दिमाग को डाइवर्ट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं वो किसी भी चीज से।
0: आपको एक बड़े अच्छे एग्जांपल एक जवान का देती हूं, तुमसे लास्ट ईयर ये बात बोली जब हम एक कैंप में गए थे और उसको मैं रिसोर्स पसंद थी वहां की, उसने ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली, मैं अपना समय, अभी मैं 20 साल का हूं और मैं अभी अपना करियर बिल्ड कर रहा हूं और अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहा हूं, एंड आई एम सेविंग माय सेल्फ फॉर माय वाइफ. आई वाज शॉक्ड. आई सेड अरे आपके ये विचार है, कहते आई डोंट हैव द टाइम टू वेस्ट, इतनी टेंशन फ्री लाइफ है, मेरे सारे फ्रेंड्स की दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड्स है, वो यहां वहां लगे रहते हैं, उनकी जो टेंशन ना वो पढ़ पाते ना कुछ कर पाते, उनके दिमाग सारे वक्त उलझनों में घिरा रहता है, मेरी लाइफ तो टेंशन फ्री है. तो टेंशन फ्री फॉर्मूला अनदर थिंग इज दिस, यंग पीपल, से नो टू दिस पर्टिकुलर थिंग, से नो टू प्री मैरिटल सेक्स एंड एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स.
1: और हम अंत में ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को, ठीक है हमें कोई समाज में नहीं देख रहा है, हमारे माँ बाप नहीं हमें, हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे माँ बाप नहीं देखते, हमारे भाई बहन नहीं देखते, समाज के हमारे लोग नहीं देखते, लेकिन जो हम अंधेरे में कर रहे हैं वो एक दिन उजाले में लाया जाएगा.
2: जी हाँ श्रोताओं, तो हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सब के लिए और खास करके हमारे नौजवानों के लिए लाभदायक रहा होगा। तो अब आप अपने प्रश्नों को या आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें बताना चाहते हैं तो हमें जरूर फोन करें या फिर मिस कॉल दें या फिर आप पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। और श्रोताओं, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। जी हाँ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 01। तो श्रोताओं, अब मुझे एना कर्मा को, हाशिमा बत्रा जी को और फिरोज जी को अनुमति दीजिए।
3: नमस्कार।
4: हमारी बेड़ियां ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारी अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
9: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
10: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
9: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
10: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
9: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
10: क्यों?
9: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
11: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
12: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
13: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
12: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
13: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
12: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
13: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
11: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
14: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों ने प्रदेश में 9,580 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव दिए। आज छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में हुए शामिल। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 16 जून से खुल जाएंगे। और कांकेर जिले के कलगांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 5 अन्य महिलाएं झुलसी। अब समाचार विस्तार से। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 7 प्रमुख कंपनियों ने प्रदेश में 9,580 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इससे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को 8,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
3: छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसमें उद्योग का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। एक जो परसेप्शन था कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने में हम लोग कामयाब हुए हैं और खनिज संपदा भी भरपूर है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई है और बहुत कम समय में करीब 8,00,000 करोड़ का MOU हुआ है और धरातल में काम भी चालू हो गया है।
14: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। श्री सिंह आज दोपहर रायपुर के एक निजी अस्पताल में आयोजित विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद वे मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इससे पहले रायपुर विमानतल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।
15: मैं 2 दिनों के प्रवास पे छत्तीसगढ़ आया हूँ और 12 साल में जो भारत को दुनिया के पटल पर केवल एक सेक्टर में नहीं बल्कि मल्टी सेक्टर में ले जाने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो सारे रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ वासियों के सामने पेश करना ये हमारा काम है।
14: श्री सिंह आज शाम राजधानी में हैंडलूम, हस्तशिल्प, सिल्क और राज्य तथा क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं अपने प्रवास के दूसरे दिन वे कल 13 जून को राजधानी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे ऑक्सीजन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री सिंह कल रायपुर में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 16 जून से खुल जाएंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में विभाग ने सभी स्कूलों को पहले ही दिन से समय सारणी के अनुसार अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू करने को कहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए 15 अप्रैल से 16 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस सम्मान सूची में छत्तीसगढ़ के 4 कलाकारों का चयन किया गया है। इनमें लोक कलाकार और रंगकर्मी तथा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुके डॉक्टर अनूप रंजन पांडे भी शामिल हैं, जिन्हें इस साल का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर अनूप रंजन पांडे के अलावा कथक नृत्य के वरिष्ठ साधक पंडित रामलाल बरेठ को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा युवा रंगकर्मी घनश्याम साहू और डॉक्टर आनंद कुमार पांडे को उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रित रहेगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 13 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कांकेर जिले के कलगांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 5 अन्य महिलाएं झुलस गई हैं। बताया जा रहा है कि कलगांव में मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण का कार्य चल रहा था, जिसमें करीब 60 से 70 मजदूर काम कर रहे थे। आज सुबह बारिश शुरू होने पर कुछ मजदूर पेड़ के नीचे खड़े हो गए, इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में कलगांव के उप सरपंच सहित 3 पुरुषों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतागढ़ में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर उपचार के लिए कांकेर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बलरामपुर जिले में पुलिस ने करीब 10 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने बताया कि गांजा एक ट्रक में भरकर ओडिशा के सोनपुर से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था।
16: जब हमने प्रॉपर एनडीपीएस के तहत कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई के पश्चात हमें पता चला कि कुल 1941.110 किलोग्राम अवैध नशीला पदार्थ गांजा जो है ट्रक के अंदर लोड थे, उसी ट्रक के साथ ये लोग जो है वो उत्तर प्रदेश की तरफ जाने के लिए आगे अग्रसर थे। इसी के तारतम्य में बसंतपुर पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में रिमांड में भेजा जा रहा है। कुल मशरू का जो है जो बरामद की गई है उसका कुल कीमत जो है वो तकरीबन 10,50,00,000 के तहत जो है वो आकी जा रही है।
14: किर्गिस्तान में आयोजित एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्रीमंत झा ने रजत पदक जीता है। उन्होंने PIUH 85 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। श्रीमंत ने अपना पदक देश के वीर शहीद जवानों को समर्पित किया है। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में आज से 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग केनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायकिंग केनोइंग एसोसिएशन द्वारा भारतीय कायकिंग केनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने जा रही 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले सामने आने के बाद आबकारी आयुक्त PS एल्मा ने 4 आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है, वहीं 8 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की सेवा अवधि में वृद्धि की गई है। आगामी चुनाव के मद्देनजर उनकी सेवा अवधि फरवरी 2027 तक या राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियमित पदस्थापना होने तक बढ़ाई गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों में संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाले नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि में 15 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ने का फैसला किया है। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पूरी करने के लिए कुल 195 मिनट मिलेंगे। राज्यपाल रमेश डेका आज रायपुर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फिल्में और डॉक्यूमेंट्री केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करने और सकारात्मक संदेश देने का एक प्रभावी साधन है। सरगुजा संभाग आयुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने आज सरगुजा संभाग की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। यह छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी संभाग की पहली आधिकारिक वेबसाइट है जो नागरिकों, पर्यटकों और विभिन्न हितधारकों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी पुलिस ने ग्राम उड़ीद गांव में एक व्यक्ति से मारपीट कर रकम लूटने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गोरेला पिंडा मरवाही जिले के राजस्व अनुविभाग स्तर पर 18 से 30 जून तक पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। खेत बचाओ अभियान के तहत कोरिया जिले में कृषि विशेषज्ञ गांव गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए जागरूक कर रहे हैं। और दुर्ग पुलिस ने कुथरेल और अंडा क्षेत्र में संचालित 2 अवैध गुटखा फैक्ट्रियों पर छापा मारकर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों ने प्रदेश में 9,580 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए। आज छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में हुए शामिल। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 16 जून से खुल जाएंगे। और कांकेर जिले के कलगांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 5 अन्य महिलाएं झुलसी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 7 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में समीर का लिखा गीत आपको सुनवा रहे हैं। संगीत अनु मलिक का, फिल्म का नाम है ऐलान।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: मोनिका दीदी राम राम।
1: राम राम रोशन और संगे संग कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला हमर दिनों के
0: राम राम, राम। दीदी देख हमार संगवारी मन हा खरीफ फसल के तैयारी में लगे हैं। है ना भाई, चाहे बीज के होवे, माटी है, खेती के खेत के जोताई है, जे डहर पानी बने गिरे हे त संगवारी मन हा खेत ला जोत डरे हे, और जे डहन नहीं गिरे हे तो ओ मन हा भाई अगोरा करत है।
1: सही बात के है रोशन। देख माटी, पानी, बीज, खातू और हमार मेहनत सबो खेती के आधार आए।
0: हाँ।
1: सबो के तैयारी करना मने पूर्ति करना घलोक जरूरी है। भाई देख, खेती किसानी के जितना भी मतलब कहन के मर जन संगी मन काम बुता करते तो यही सोचते हैं कि भाई ओमन ला लागत कम लगाए, मेहनत कम लगाए और ओमन ला बने उत्पादन मिले और ज्यादा गुणवत्ता वाले जिन फसल हुआ है वो रही है। तो ये सबो संगी मन के जिन सोच विचार है ऐसे रहते हैं।
0: दीदी देख, कतको संगी मन के जौन है खेत हा बड़े बढ़िया समतल रहते, उपजाऊ भुइया रहते है ना, फिर कतको संगवारी मन के खेत हा जौन है डीपरम रहते है, ओमा बराबर पानी नहीं माड़ा है, नीचे पानी उतर जाते कि मुरमहा जगह रहते है ना, जेमा पानी ज्यादा देर तक नहीं ठहर पावा है ना भाई। तो देख, खेत के माँ जब पानी बने रही, माटी है अच्छा रही, तो फसल हा बने रही है ना भाई, बने उत्पादन हो ही। एकरे सेती हमार सलाहकार मन हम किसान संगवारी मन ला सलाह देवत रहते कि ऐसन स्थिति में जौन है तो अभी के समय में श्री विधि ले खेती करना बहुत अच्छा है, लाभदायक है और फायदामंद होते।
1: सिरतुन बात है रोशन। देख का होते हमार विशेषज्ञ मन बेरा बेरा माँ हमार संगवारी मन ला जो नवा विधि नवा तकनीक आते कर पूरा पूरा जानकारी देवत रही थी। अब बात धान है भाई, हमारे छत्तीसगढ़ तो धान के कटोरा है। अब पहली जिन पारंपरिक जिन तरीका ले खेती किसानी होत रही से ओमा और अब के बेरा में जिन नवा तकनीक नवा विधि मनाए हैं तो अंतर देखब मा थे। अब बात हमन श्री विधि के करत हन तो एला ना मेडागास्कर विधि घलो कहे जाते। तो ये माँ फायदा ये है कि भाई खास करके धान के उन्नत तकनीक वैज्ञानिक तकनीक आए, एमा कम बीज की जरूरत पड़ते, पानी जैसे बहुत ज़्यादा पहली के उपयोग होते रही थे तो पानी कम उपयोग होते और लागत घलो कम लागते।
0: देख दीदी, इसने जैसे ये विधि लगी है ना, तो ये विधि में जैसे पहली की सियार मन हा एक एकड़ में वो खंडी बर धान ला बीजा के रूप में छीट देवा है ना भाई। आओ ये श्री विधि में जो उन्हें तो एक एकड़ में एक आन के 2 ले 3 किलो बीजा प्राप्त हो जाते, जेमा बीजा मा ज्यादा लगे या मूल्य जौन है कीमत है वह बास थे तो फायदा के हुई से नहीं।
1: हाँ। का है ना कि देख जैसे परंपरागत बात करते रेत की तरीका रेत की ऐसे छीट देते हैं, अब ऐसे है कि जब ओला हमन लगातन तो ओमा एक निश्चित दूरी में ओला पौधा मन लगातन। ये विषय में गुड बात करबो फिर सुनथन ये संदेश।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: रोशन भाई, हमन श्री विधि के बात करत रहे तो अभी देख जैसे संगवारी मन थरहा ला देते थे और महीना भर भर इसने राख देते, तो भाई ऐसे होते कि कतकुन बखत हमन मध्यान्ह निदान तो पानी ज्यादा उपयोग हो जाते और ज्यादा में कतकुन बखत हमारे जिन पौधा है वो मन खराब हो जाते। तो ये छोटे छोटे बात के अगर मन ध्यान रखबो तो ये हमारे जिन मतलब कहन की हमारे उपज है गुणवत्ता घलो का ही फसल में और उपज घलो ज्यादा मिली है। खास करके जब हम श्री विधि की बात करते हैं तो इमा रोपाई के 14 दिन में जिन धान होती है वाला हम उपयोग कर सकते हैं।
4: सही कहे मोनिका दीदी। देख कहे के बात ये है कि जैसे परंपरागत खेती में जो है थरहा ला दे के बाद महीना भर राखते ओकर तैयारी करते जतन करते पानी देते है ना, आ ओकर बाद जो उन्हें रोपाई करते फिर है श्री विधि में का होते कि 8 ले 14 दिन के अंतर्गत जो उन्हें एकर पौधा तैयार हो जाते। ये छोटे पौधा रही तब हो लो ये इला खेत में बड़े ढंग ले लगात बन जाते है ना भाई। आओ देखे ये विधि में जो उन्हें पौधा घना नहीं रहा बल्कि छट्टा रही थे और छट्टा के संग जो उन्हें 25 सेंटीमीटर चारों मुड़ा डाल ले एकर जगह है गेप जेकर ले हवा पानी बड़ा आसानी
3: मतलब पौधा ले पौधा के जो दूरी रही थी 25 सेंटीमीटर रही थी।
4: और वो उमा का होते छिटका बुवाई में है जो उन्हें या ऐसे परंपरागत में जो उन्हें तो 10 दूरी 12 दूरी कड़ाई काड़ी जो उन्हें तो ऐसे थरहा ला लगाते मोटा हो जाते फिर इमा ऐसा नहीं है है ना भाई। आओ देख जैसे पहली परंपरागत विधि में कराए तो पानी ला पूरा जब तक धान के कहन की निफर नहीं जाए गुलिया नहीं जाए तब तक भरे लगे
3: हाँ।
4: फिर ये विधि में जो उन्हें तो ऐसा करे के जरूरत नहीं लगे है ना, सिर्फ भुइया ला नमी करेला लागत तो ये विधि जो उन्हें
3: इमा हमन सिंचाई की जन व्यवस्था है ओला हमन टपक विधि के उपयोग करके कर
4: सकते हैं।
3: तो इमा ये कि मतलब एकर उद्देश्य ये है भाई कि जब हमन श्री विधि अपनाते हैं तो पानी जिन है ना ओकरो जिन सीमित मात्रा है ओकर उपयोग होते मैंने हमारे जिन भुइया है उमा नमी बने रहा है हमारा प्रयास ये होना चाहिए। तो ये जिन टपक सिंचाई विधि है एकर उपयोग हमन श्री विधि में कर सकते हैं। अच्छा एक ठीन बात और बता दो जैसे 25-25 सेंटीमीटर के दूरी में हमन पौधा की रोपाई करते हैं तो एमा कह होते ना रोशन भाई कि कतकुन बखत जिन खरपतवार है वो आ जाते तो खरपतवार ला निकाल के फेंके के बजाय एक आध दो यंत्र ऐसे आते जेहा खरपतवार ला भूमि में दबा देते तो एक बेरा के बाद ना वह बने खाद बन जाते। तो ये जिन हमन पौधा लगाए हैं ना छोटे छोटे जिन रोपाई करे हैं ओला बने पोषक तत्व बन मिल जाते।
4: सही कह दीदी। देखो मशीन के नाम होते कोनो बीडर है ना जे इस्तेमाल करे ले बन कचरा मन हा माटी में दब जाते और खातु बन जाते है ना। और देख विधि जो है इमा लागत तो बहुते कम आते संग में बहुत अकन जो हमारे कर परेशानी आते है। अब देख जैसे नीदा नियंत्रण के बात करे तो ओला निकाले बर बनिहार भूतियार खोजे लगते है ना भाई। आ ओला बने निकालबे है ना, निकाले के संग जैसे वह पानी उनी बने गिरते ना तो महीना डेढ़ महीना 15 दिन में ऐसे जागत जाते खातू कचरा मारा जेबे है ना। तो बहुत अकन जो हमारा लागत है नींदा नियंत्रण निकाले में ही लाग जाते है ना। आ उत्पादन जो हुई तो होबे करी फिर एमा जो है श्री विधि में ये नींदा नियंत्रण निकाले के आवश्यकता बिल्कुल ले नहीं पड़े जेकर लागत है कमती आते है ना भाई। आओ हाँ आओ संगे संग जो एकर पौधा है ओकर जड़ हा भुइया में बने मजबूती के ढंग ले जो है रोपथे और हवा आते जैसे पानी बादल ना तो उमा यह गिरे नहीं।
3: देख ऐसे है रोशन की हमन गोड़ बात कतकुन कर लन ऐसे लगते भैया बिच्चे शुरू करे हन गोड़ बात फिर का है ना आज हमर क्रम हलो चौपाल के बेरा है तो बताइए विषय में।
4: हाँ तो भाई देखे शुक्रवार दिने और हलो चौपाल के समय हो गए है ना भाई। और आज के जो विषय है फल फलदार पौधा है ना भाई, बरसात में फलदार पौधा तो लगावे करते,
3: तैयारी
4: करते, पेड़ पौधा लगाना घला जरूरी होते काबर चौमास के महीना में, है ना। तो एक संबंध में सुनथन फलदार पौधा के तैयारी एवं प्रबंधन ये विषय में बतावत विशेषज्ञ है कैलाश सिंह पैकरा, उप संचालक उद्यानिकी रायपुर, प्रस्तुतकर्ता मोनिका जैन, प्रस्तुति शशि प्रकाश पांडे, तकनीकी सहयोग दे प्रियंका डिकसेना, उदय ठाकुर, किशोर निखार मना। तेल सुनथन।
3: हाँ,

0: संगवारी हो, फोन के माध्यम ले खेती किसानी के समस्या और निदान के वाणी हमार चौपाल के क्रम हलो चौपाल। आज हलो चौपाल क्रम के विषय है फलोद्यान लगाए की तैयारी और प्रबंधन। और ये जानकारी दे खातिर फोन के माध्यम ले आपमन की समस्या के समाधान करे खातिर हमारे संग विशेषज्ञ हैं श्री कैलाश सिंह पैकरा जी। आप मन हाँ उप संचालक है उद्यानिकी रायपुर मा। डॉक्टर साहब आप मन के स्वागत है हमारे क्रम मा।
1: जी नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब हमारे संगवारी मन की फोन कॉल आवा थे तो जानथन की उमन का जानकारी चाहते विषय ले जुड़े। हेलो हेलो चौपाल।
2: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था भैया?
2: योगेश चांगरे बोला था, हम सिरवा बांधा बेमे करे।
0: जी भैया, जैसे आज हमारे विषय है ना कि फल उद्यान लगाए की तैयारी और प्रबंधन, तो एक हल्ले जुड़े का जानकारी चाहिए आपला?
2: तो अभी जैसे बरसात लगे हवे तो हम यही जानना चाह था, अभी जैसे कुछ कुछ पौधा लगाना चाहता था, नींबू हो गए, पपीता हो गए, केला हो गए, तो इकरे मन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देवा।
0: जी तो हमारे विशेषज्ञ है आज श्री कैलाश पैकरा जी है, आप मतलब बतावा थे।
1: हाँ जांगड़े जी नमस्कार जी। आप अगर ये फलदार पौधे के बगीचा लगाना चाह रहे हैं ना,
2: हाँ।
1: तो इसमें बहुत सारे विकल्प है, आम, अमरूद, नींबू, केला, पपीता, आंवला, कटहल, ये तमाम प्रकार की व्यवस्था है। आप ये करना है अभी कि जो हमारे सहायक संचालक उद्यान है कार्यालय बेमेतरा में, और आप जिस भी विकास खंड से है वहाँ हमारा एक नर्सरी है, तो यहाँ के कर्मचारी से आपको तत्काल संपर्क करना पड़ेगा क्योंकि पौधरोपण का समय आ जा रहा है। तो जो भी आप पौधा लगाना चाहते हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी मिल जाएगा और आपका प्रकरण तैयार करके आपको हम योजना से जोड़ देंगे। क्योंकि अभी जो है आपको खेत की तैयारी करना है, गड्ढा बनाना है और फिर तुरंत पौधा प्राप्त करके रोपण करना है। ये करने के लिए ना आपको विभाग से अनुदान भी मिल जाएगा, तो आप जो है नजदीकी जो आपका कार्यालय चाहे विकास खंड में हो या जिला कार्यालय तत्काल संपर्क करिए, और आपकी इच्छा आप कौन सा फलदार पौधे लगाना चाहते हैं वही आपको लगाने के लिए विभाग मदद करेगा, है ना। इसको लगाने के लिए ना आपको घेरा भी मिल सकता है, सिंचाई व्यवस्था के लिए बोर भी मिल सकता है, और अंतर्वर्ती फसल करने के लिए सब्जी लगाने के लिए अनुदान भी मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्था है, आप वहाँ से संपर्क करें और प्रकरण बनवाएं।
0: धन्यवाद भैया।
2: धन्यवाद।
0: हेलो हेलो चौपाल।
3: हेलो
0: राम राम, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
3: मैं अशोक कुमार साहू बोला था, कर्मचारी कुल्हाड़ी जिला कमलधा छत्तीसगढ़ ले।
0: भैया जैसे आज हमारे विषय हेलो चौपाल के फलोद्यान लगाए खातिर उखर तैयारी कैसे करें, उखर प्रबंधन कौन ढंग के होना चाहिए, तो इकल्ले जुड़े का जानना चाहता हूँ।
3: तो जैसे बरसात में हम तो कुंटी हाँ तो किस टाइप से लगाए तो हम के हमारे यहाँ उखर फसल बहुत कम मतलब मिलते हैं।
0: तो कुंटी के फसल आप लगाना चाहते हो तो हमारे विशेषज्ञ हैं श्री कैलाश सिंह पैकरा जी, आप मतलब बतावा थे।
1: कोचई लगाने की तैयारी अभी से आप शुरू कर दें, बढ़िया जहाँ पर लगाना चाहते हैं ना उसको बढ़िया गहरी जुताई कर लें और मांदा बना लें। चूंकि अभी बहुत गर्मी है तो दो चार दिन रुक के लगाइए कोचई को, नहीं तो गल जाता है। जैसे ही एक बारिश होगा, थोड़ा जमीन ठंडा होगा, उसके बाद कोचई को लगा दीजिए। जैसे मांदा बना के लगाते हैं ना, आप मांदा बनाइए ताकि बारिश ज्यादा हो तो
3: मांदा बनाते हैं।
1: हाँ, और लगाने के बाद उसको ना पैरा से या किसी बड़े पत्ती वगैरह से ढक दीजिए, वो मल्चिंग का काम करता है, तो उसमें घास फूस जो है कम उगेगा। और मांदा अच्छा बनाइए ताकि बारिश में अगर ज्यादा पानी हो ना तो पानी जो है निकल जाए, नहीं तो पानी भर जाएगा तो फसल या कांदा जो रहेगा वो सड़ सकता है।
3: खाद के रूप में कौन सा प्रयोग कर सकते हैं?
1: हाँ, बढ़िया जो है सड़ा हुआ गोबर खाद का उपयोग करिए, जब लगाएंगे उस समय बढ़िया उसमें गोबर खाद करिए, और राखड़ और फास्फोरस यदि आपके पास उपलब्ध है तो उसको आधार खाद के रूप में उपयोग करिए
3: लगाने के समय में ना।
1: हाँ, लगाने के समय में, क्योंकि ये खाद जो है देरी से घुलता है तो इसको आधार खाद के रूप में पहले देते हैं। और बीज उपचारक अगर कोई भी फफूंदनाशी दवा है तो बीज को एक बार उपचार कर लीजिए ताकि आने वाले समय में उसमें कोई जो है बीमारी का प्रकोप नहीं होगा या कम होगा। तो ये बिल्कुल पीक पीरियड है, ज्यादा पानी गिर जाने के बाद जमीन ठंडा हो जाएगा तो अंकुरण अच्छा नहीं होगा। ये अभी लगाने का समय लगभग आ चुका है, जमीन की तैयारी आप कर लीजिए।
3: जमीन की तैयारी कर रहे हैं, एक पानी गिरने के बाद ही लगाएं उसको कि?
1: हाँ, अभी आप मांदा बना के रख लीजिए, है ना, उसमें गोबर खाद राखड़ खाद डाल के रखिए, जैसे ही पानी गिरेगा थोड़ा सा जमीन ठंडा होगा वैसे ही जो है उसको लगा दीजिए। आप देखेंगे कि अभी कोचई में जो है अंकुरण चालू हो गया होगा, है ना। तो उसको थोड़ा छायादार जगह में रखिए, जैसे अंकुरण अच्छा बीज को चुन चुन करके फिर लगाते जाइए।
0: जी धन्यवाद भैया।
3: जी धन्यवाद।
0: हेलो हेलो चौपाल।
4: हाँ जी हेलो चौपाल, राम राम।
0: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
4: जी मैं मनोज कुमार साहू बोला था, मेघा पारा लोरमी ले।
0: जी तो मनोज भाई, जैसे कि आज हमारे हेलो चौपाल के विषय है फल उद्यान लगाए खातिर ओकर तैयारी ओकर प्रबंधन, तो एखर ले जुड़े का जानकारी चाहता हूँ अपन?
4: पेड़ लगाथन हमन, नाना पौधा लगाथन, तो वो का दवाई डालन शुरू में चाहिए, ही जानकारी लेना रही।
0: जी तो ये जानकारी आप ला हमारे आज के विशेषज्ञ दी श्री कैलाश सिंह पैकरा जी है।
1: हाँ साहू जी, राम राम।
4: राम राम जय राम राम। बीएससी पाउडर कैसे बोलते है, कैसे गोबाल पूरा मत डाले के कथे सड़े हुए कैसे कैसे रंग डालते कथे तो बता देता हूँ। कथन जी
1: खाद तो बाद में डाली, ओखर पहले भी कुछ काम करेला पड़ी है। तो जो भी पौधा आप लगाना चाहत है पहले गड्ढा बनाना है, पौधा लगाए बा पहले गड्ढा बनाए ला पड़ी। तो गड्ढा अच्छा बनाना है, आप कौन प्रकार के पौधा लगा था ओखर हिसाब से गड्ढा के साइज तय होही। जैसे आम है तो बड़े गड्ढा बनाए ला पड़ी, केला पपीता है तो थोड़ा छोटे गड्ढा में चल जही। तो
4: हम लोग लगाना है वो नींबू है, कटहल है, ठीक,
1: तो 2 से 2.5 फीट जो है लंबा चौड़ा गड्ढा बनाना पड़ेगा सबसे पहले। और गड्ढा बनाए के काम जो है गर्मी के सीजन में कर लेना चाहिए, है कि गर्मी में जैसे गड्ढा बना दे हो ना तो ओमा कीड़ा बीमारी जो भी रही वो नष्ट हो जाए। ओखर बाद ओमा नवा मिट्टी पाटना चाहिए, नवा मिट्टी और 20 से 25 किलो गोबर खाद प्रति गड्ढा, और ओमा जो है दीमक रोधी दवा जो क्लोरपाइरीफास है ताकि ओमा दीमक ना लगे, ये मिला के जो गड्ढा ला फिर से पाट देना चाहिए। और जैसे ही जब एक बारिश होही ओखर बाद वो गड्ढा ला बीच में थोड़े से गड्ढा बना के फिर पौधा लगाना चाहिए। का होते कि हम गड्ढा अच्छा नहीं बनान, छोटे गड्ढा बनाथन और वही में पौधा ला लगा देथन, तो एमा जो है बाद में चाहे खाद डालो या कुछ भी करो है ना, पौधा के बढ़वार ठीक से नहीं हो। काबा की जितका बड़े गड्ढा रही ओ में नया मिट्टी पटाही तो भुरभुरा रहते, तो जैसे ही पौधा लगाथन ओखर जड़ के विकास अच्छा से होते तो फिर पौधा के बढ़वार अच्छा से होही। ओखर बाद जो है उपलब्धता के आधार पर आप भले जो यूरिया हो गए, पोटास हो गए, 100 ग्राम 50 ग्राम ये सब ओमा डाल सका था, लेकिन जरूरी ये है कि गड्ढा बना के बढ़िया सड़े हुए गोबर खाद राखड़ फास्फोरस एला जो है लगाए के पहले मिला लेना चाहिए।
4: ना डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बिहिक पेड़ है, पहले का बड़े बड़े नहीं फल नानन फल थे।
1: हाँ कहते उम्र हो गए पौधा के?
4: इला तो 15 साल होगी।
1: हाँ देखो भाई, पौधा में जो है नियमित कटाई छटाई और खाद प्रबंधन ये दो चीज के कारण जो है फल के आकार छोटे हो जाते। अब 15 साल के पौधे है ओमा का खाद डालता कि नहीं डाला
4: तो, डालता हाँ
1: एला उपचारित करना पड़ी भाई। पौधा हाँ। जो है पुराना हो गए है तो ओमा नियमित रूप से कटाई छटाई करना पड़ी। अमरूद में हाँ। जो नया शाखा निकलते वही में बढ़िया फल फूल लगते, तो नियमित हाँ। रूप से ओमा कटाई छटाई करना पड़ी। बहुत ज्यादा शाखा डगाल हो गए है तो बीच बीच के ला निकालना पड़ी, और पौधा के चारों तरफ 1 से 1.5 मीटर के गोलाई में ओला जो है मिट्टी ला अच्छा खुदाई करके फिर ओमा गोबर खाद फास्फोरस पोटास मिला के डाले ला पड़ी, तो फिर ओमा पहली कस जो है फल बड़े आकार के आही।
4: अच्छा जी,
1: आप ये भी देखे हुई है कि अमरूद जो है साल भर में 3 बार फलता है ना?
4: हाँ, तो अभी फलते एवरी ग्रीन है।
1: हाँ तो सब ले अच्छा सीजन होते ठंड के सीजन, तो बरसात हाँ। के सीजन में जो फल लगते ओखर कोई मतलब नहीं रहे, अच्छा गुणवत्ता के नहीं रहे, तो वो समय जो है फल नहीं लेना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। तो हाँ। पौधा में जो है ओखर जो खाद है वो बची, जब ठंड के सीजन आई तब ओमा अच्छा फल लगी और बड़े आकार के आई।
4: बेहतरीन जानकारी दे, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी
0: धन्यवाद भैया।
4: धन्यवाद नोनी, धन्यवाद, बड़ा शुभ जानकारी दी से।
0: हेलो हेलो चौपाल।
5: हाँ सिमला छत्तीसगढ़ से प्रतीक जैन।
0: जी भैया, आज हमारे हेलो चौपाल के विषय है फल उद्यान लगाए खातिर ओखर का तैयारी करन ओखर प्रबंधन कौन ढंग के होना चाहिए, तो एक हल्ले जुड़े का जानकारी चाहते हो आप मन?
5: मुला जानकारी चाहिए इससे बीजे पर इस सीजन में भी यदि फूल वूल की खेती करे जाए तो क्या करने लगी अपना फूल पौधा पर?
0: जी तो ये जानकारी आप ला हमारे आज के विशेषज्ञ श्री कैलाश सिंह पैकरा जी बताएं।
1: हाँ जैन जी।
5: जी
1: अभी जो है बारिश का सीजन आने वाला है ना?
5: जी,
1: तो इस सीजन में जो है फूल की खेती के हिसाब से देखा जाए तो गेंदा फूल की खेती बरसात के सीजन में बहुत ही मतलब आसानी से कर सकते हैं, और इसका जो रोपण है जुलाई अगस्त तक जो है आप कर सकते हैं। और जैसे जानते हैं कि फूल का मांग तो 12 महीना बने रहता है, लेकिन दीपावली दशहरा त्योहार के सीजन में जो है फूल का मांग ज्यादा होता है, तो अभी जुलाई अगस्त के समय में आप यदि गेंदा का रोपण करते हैं तो त्योहारी सीजन में इसका उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा और बढ़िया बाजार भाव मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आप गुलाब है, जरबेरा है, इसका भी खेती कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पॉली हाउस की आवश्यकता होगा। उसको खुले में लगाएंगे तो अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। खुला स्थिति के लिए गेंदा बहुत ही उपयुक्त है। हाँ, इसको जो है हमारे सस्की उद्यान रोपणी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से आपको इसका पौधा और बीज दोनों मिल सकता है।
5: धन्यवाद।
0: धन्यवाद भैया। हेलो हेलो चौपाल।
6: ओ नमस्ते मोनिका दीदी।
0: नमस्ते भैया, आप मन कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? जी भैया, तो भैया आज ना हमारे हेलो चौपाल के जिन विषय है वो है फल उद्यान लगाए खातिर ओखर तैयारी और प्रबंधन। तो एक हल्ले जुड़े आप मन ला का जानकारी चाहिए?
6: फल उद्यान में कौन कौन से फल आते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, बारे में जानकारी लेना दीदी।
0: जी तो भैया ये जानकारी आज के हमारे विशेषज्ञ श्री कैलाश सिंह पैकरा जी बतावा थे।
1: हाँ निषाद जी।
6: पैकरा साहब नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार भैया। तो फल उद्यान है तो इसमें बहुत प्रकार के है ना, जितना भी फलदार है, आम, अमरूद, नींबू, केला, पपीता, आंवला, कटहल, लीची, काजू और तमाम प्रकार के जो फल है सब एकर अंतर्गत आते। अब अभी जो है गर्मी के सीजन लगभग आखिरी स्थिति में है और बारिश आने वाला है। अगर हमला बागान लगाना है, कोई भी फलदार पौधा लगाना है, तो ओखर तैयारी अभी से जो है शुरू करेला पड़ी। सबले पहली चीज ये है कि आप ला जगह देखेला पड़ी, ऐसे जगह हो जो गड्ढा ना हो, माने जहाँ पर पानी ना भरे, पानी की निकासी अच्छा हो जाना चाहिए, और मिट्टी जो है उपजाऊ हो, एकदम से वहाँ पर पथरीला ना हो, मिट्टी मुरूम ना हो। तो इस टाइप के जगह से बचना चाहिए। अच्छा जगह का चयन करिए जहाँ पर धूप हवा पानी मिल सके और सिंचाई के लिए पानी भी होना चाहिए, क्योंकि इसको नियमित भाई पानी की आवश्यकता पड़ता है। अगर ये बात आप ये कर लेते हैं तो आपको खेत की तैयारी कर लेना चाहिए। जहाँ पर लगाएंगे बढ़िया जमीन को गहरी जुताई कर लीजिए, समतल कर लीजिए, उसके बाद उसमें जो है बढ़िया गड्ढा बनवाइए, लेआउट कर लीजिए, क्योंकि फलदार पौधे को जो है एक निश्चित दूरी पर लगाना होता है, ताकि बाद में उसमें निराई गुड़ाई के लिए, खाद डालने के लिए, तोड़ाई के लिए पर्याप्त जगह रहे। तो अच्छा से उसको लेआउट कर लीजिए, बढ़िया गड्ढा बनाइए और उसमें अच्छा गोबर खाद, फास्फोरस, पोटास और दीमक रोधी दवा छिड़काव करके गड्ढा को भर लीजिए। जैसे ही एक दो बारिश होगा तो उसमें आप जो भी फलदार पौधा चाहते हैं उसको लगाइए। आपको ध्यान ये देना है कि बढ़िया पौधा होना चाहिए। बढ़िया पौधा कहे से मतलब है कि बीमारी ना लगा हो, कीड़ा ना लगा हो, और किसी शासकीय उद्यान रोपड़ी से या कृषि विज्ञान केंद्र से जो विश्वसनीय स्रोत है वहां से पौधे प्राप्त करके लगाइए। पौधा लगाने के बाद का प्रबंधन अच्छे से करना पड़ेगा, उसमें समय समय पर खाद डालिए। जब पौधा आप लगा देंगे उसके तुरंत बाद सिंचाई करना पड़ेगा, और पौधा चूंकि एक निश्चित दूरी पर लगे रहेगा तो उसके बीच में पर्याप्त जगह रहेगा। जब पौधा लगाएंगे ना तो आपको फल कब मिलेगा, कम से कम 3 से 4 साल के बाद, तब तक आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके बीच में जो है अंतर्वर्ती फसल के रूप में आप सब्जी लगाइए, ताकि आपको अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होता रहे। जैसे जैसे पौधे का उम्र बढ़ेगा उसमें खाद का प्रबंधन और निराई गुड़ाई और कटाई छटाई आपको समय समय पर करते रहना पड़ेगा, जिससे पौधे पर पर्याप्त मात्रा में हवा, सूर्य का प्रकाश ये सब पड़ता रहे, जिससे बढ़िया फलन होगा और आप अच्छा बगीचा बना सकते हैं और उससे लाभ कमा सकते हैं।
6: पौधा में माटी भी चढ़ा सकते हैं?
1: हाँ, मैं बताया ना कि जल निकासी होना चाहिए, माने वहाँ पानी नहीं भरना चाहिए। पेड़ के पास आप बढ़िया मिट्टी चढ़ा देंगे ताकि पौधे का तना पानी के संपर्क में ना आए, और इसके लिए हमारे पास विभागीय योजना भी है। आप जिस भी विकास खंड के होंगे वहाँ पर हमारा उद्यान नर्सरी होता है, वहाँ जाके आप अपना प्रकरण भी बनवा सकते हैं। पौधे लगाने के लिए ना आपको 11,000 रुपए का अनुदान मिलेगा, एक नलकूप खनन करवा सकते हैं उसमें भी अनुदान है, और उसको घेरा करना उसके लिए भी अनुदान है। तो इस प्रकार से हमारे पास योजना भी है, और आप इस प्रकार से हमारे जो स्थानीय मैदानी अमला है उसे भी जानकारी ले सकते हैं और बढ़िया बगीचा तैयार कर सकते हैं।
6: जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी
0: धन्यवाद भैया। हेलो हेलो चौपाल।
7: हाँ नमस्ते दीदी, राम राम।
0: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
7: मैं छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दतरंगी से बोला था दीदी, हिरूराम साहू।
0: जी जी भैया, आज हमारे हेलो चौपाल के विषय है कि फलोद्यान लगाए की तैयारी कैसे करें, ओखर प्रबंधन कौन ढंग ले होना चाहिए, तो एक हल्ले जुड़े का जानकारी चाहते हो आप मन?
7: दीदी वही लगाना है, हम आमा लगाबो, जाम लगाबो, लिमो लगाबो, कहा सहन तो तैयारी थोड़ा डाटा आपसे पूछ रहे दीदी।
0: जी तो आज हमारे विशेषज्ञ श्री कैलाश सिंह पैकरा जी आप मल्ला एक जानकारी देवा थे।
7: डाटा साहब नमस्कार।
1: नमस्कार साहू जी, नमस्कार।
7: हाँ तो लगाएंगे आमा पेड़।
1: आमा पेड़ लगाइए, नींबू लगाइए, अमरूद लगाइए, है ना, सभी प्रकार के फलदार पौधे आप लगा सका था, है ना। अच्छा कितने जमीन में लगाना है? ठीक है, देखो एकदम से ऐसे जमीन में मत लगाना जहाँ पर मुरुम है, चट्टान है, ऐसे जगह से बचना चाहिए। दूसरा अभी एकर लगाए के समय आ थे बगीचा लगाए के, तो सबले पहली तो आप जितना भी लगाए चाहा था अच्छी बात है, ओमा गड्ढा बना लो, तत्काल गड्ढा बनाओ ले आउट करके, ओमा बड़े बड़े गड्ढा बना लो, कम से कम 3-3 फीट के गड्ढा लंबाई चौड़ाई, और ओमा बढ़िया सड़े हुए गोबर के खाद और दीमक रोधी दवा और फास्फोरस और पोटास थोड़ा थोड़ा ये करके गड्ढा में भर दो। जो भी विकास खंड में है हमार ससकी उद्यान रोपड़ी उद्यान विभाग के नर्सरी हो ही, वहाँ से आप ला पौधा मिल जाये,
7: भाटापारा से मिल जाएगा?
1: हाँ भाटापारा से मिल जाये, वहाँ उद्यान रोपड़ी हो ही, वहाँ जाना है आप ला जमीन के रिकॉर्ड ले जाना अपना नक्शा खचरा बीवन जो है और वहाँ जाने से आपका प्रकरण बन जाएगा।
7: अच्छा,
1: और आप मान लो वहाँ ले आम के पौधा जो है मिल जाये और आप बढ़िया जो है ला के लगा सकत, लगाए समय आप और भी पौधा लगात हुई है वो टाइप से जो है लगाना है बढ़िया, और टेका देना है, ज्यादा पानी से बचाना है, घेरा करना है, ऐसे करके आप जो है बढ़िया लगा सकत हो।
7: हाँ सर, हाँ धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद भैया।
7: हाँ धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। चौपाल।
0: हाँ हेलो चौपाल भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
8: मैं राजेंद्र कुमार दामले को उठा था सिरमुंडा ले।
0: भैया आज हमारे हेलो चौपाल के विषय है कि फलोद्यान लगाए की तैयारी कैसे करें, ओखर प्रबंधन कौन ढंग ले होना चाहिए, तो एक हल्ले जुड़े का जानकारी चाहते हो आप मन?
8: विषय के अनुसार छोटे से प्रश्न है, फलोद्यान लगाए के तैयारी कैसे करना है, प्रबंधन देते हो?
0: जी जी, तो ये जानकारी आप ला आज के हमारे विशेषज्ञ श्री कैलाश सिंह पैकरा जी बतावा थे।
1: हाँ दामले जी, राम राम।
8: राम राम सर जी।
1: देखो भाई फलोद्यान माने बगीचा लगाना है
8: जी,
1: बहुत छोटे छोटे बात है जिनला ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पौधा तो कोई भी अदा कदा लगात रहते हैं लेकिन ये सब बात ला ध्यान नहीं रखे से वो में बाद में अच्छा फल नहीं आए, है ना, ये प्रकार के शिकायत आ जाते। तो सबले जरूरी ये है कि आप कहाँ पर माने पौधा लगाना चाहा था, तो जहाँ भी आप लगाना है खेत में बाड़ी में पहले अच्छा जगह के चयन कर ले जिन मेरे पानी के साधन हो, और ऐसा भी ना हो कि ज्यादा पानी आए तो मेरे पानी के भराव हो जाए, तो ऐसे जगह से बचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है पौधा लगाना है तो गड्ढा बनाना चाहिए, तो अभी जो है गड्ढा बना लो, बड़े बड़े गड्ढा बना लो, 2-3 फीट के गड्ढा बना लो, और वो गड्ढा में जो है बढ़िया गोबर खाद, है ना, फास्फोरस पोटास और दीमक रोधी दवा ये मिला के जो है भर दो। अब एकर बाद आप लग पौधा चाहिए, आप पौधा आम अमरूद नींबू केला पपीता जो भी लगाना चाहा था आस पास के नर्सरी में पौधा आप लग मिल जाही, या फिर कहीं दूसरे जगह से आप पौधा ला के लगा सका था, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, है ना, जैसे बारिश हो ही वो समय जो है वो गड्ढा में आप पौधा लगा देना। आप ला ध्यान ये देना है कि भाई ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए बरसात के, है ना, नहीं तो पौधा जो है नुकसान हो जाते। ओखर बाद समय समय में ओला खरपतवार और निराई गुड़ाई ये सब ला ध्यान देना पड़ी, और ओखर बाद नियमित रूप से ओला कटाई छटाई देखे ला पड़ी। का होते कि जैसे कलमी पौधा हम लगा हन तो जो कलम बंधा रहते ओखर नीचे से भी एक शाखा निकल जाते कभी कभी, तो वो शाखा ला हटाना है, नहीं तो फिर वो देसी किस्म के पौधा बन जाते। फिर बाद में होते कि मैं तो वहाँ ले कलमी पौधा ला रहे हैं और ये देसी निकल गए, तो ये ध्यान देना है कि जोन मेरे कलम बंधे है ओखर से नीचे से कोई शाखा नहीं निकलना चाहिए, ऊपर के शाखा ही बढ़ना चाहिए, और नियमित रूप से ओखर देखभाल करना पड़ी कि ओमा कोई कीड़ा बीमारी तो नहीं आते, और पौधा बढ़ा थे ओमा फल फूल आते कि नहीं, ये सब ध्यान देना पड़ी।
8: तो अपन जैसे गड्ढा है सर, तो गड्ढा के लंबाई चौड़ाई और गहराई कितनी करना है?
1: हाँ ये पौधा के ऊपर निर्भर करते आप कौन से पौधा लगा था, है ना, जैसे बड़े फलदार पौधा है तो 3 फीट गड्ढा करो, 2.5 फीट गड्ढा करो, जितना बड़े गड्ढा बनेगा ना पौधे का बढ़वार जो है उतना ही अच्छा होगा। हम लोग कभी कभी का करथन कि पौधा तो छोटे से है तो छोटे से गड्ढा बना के लगा दे, तो छोटे गड्ढा बनाए ले का होते कि जो पौधा के जड़ है ना ओखर विकास ठीक से नहीं हो पाए, तो पौधा बढ़े नहीं, और जब बड़े गड्ढा बना के गोबर खाद और नया मिट्टी भर कर दे ले का होते कि मिट्टी जो है भुरभुरा होते तो उमा पौधा के जड़ी जल्दी विकास करते तो पौधा के बढ़वार जल्दी होते।
8: कभी कभी देखे हम ये आते कि गड्ढा में अपन रेती डाल दो तो जड़ ला नरम मिलते, इसे कहे कि तो का रेती डालना सही है सर गड्ढा में?
1: देखो रेती वहाँ में डाले ला पड़ते, जैसे मान लो आपके जो मिट्टी है बहुत भारी मिट्टी है, जैसे भारी मिट्टी में का होते कि एक बार पानी भर जाते तो आसानी से सूखे नहीं, तो वो मिट्टी ला मुलायम करे बारे वही ला मैं कहा था कि मिट्टी एक भाग मिट्टी एक भाग गोबर खाद आधा आधा ये रही तो वो भुरभुरा वैसे ही हो जाए, तो रेता मिला देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आप 25-30 किलो गोबर खाद एक गड्ढा में मिलाओगे तो पर्याप्त है।
0: धन्यवाद भैया,
8: जानकारी देव आप आकाशवाणी पर बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी।
1: धन्यवाद।
0: हेलो हेलो चौपाल।
9: हाँ मुनिका दीदी नमस्कार।
0: राम राम भाई, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
9: हाँ मैं मानवेंद्र साहू बोला था, गर्रा पार बांसा बाजार।
0: हाँ मानवेंद्र भाई, आज हमारे हेलो चौपाल के विषय है कि फल उद्यान लगाए की तैयारी कैसे करें, एकर प्रबंधन कौन ढंग ले करना चाहिए, तो एकर ले जुड़े का जानकारी चाहत हो आप मन?
9: जैसे अपन लाइन बरसात अवैया है या हम जैसे कोई फल वगैरह के वृक्ष लगाना चाहते हैं या फल के खेती करना चाहते हैं या फलदार वृक्ष है जैसे आम वगैरह है नींबू है, तो एकर तैयारी कैसे करन, किसे ढंग के लगावन, कितना गड्ढा खोदन, एकर बारे में जानकारी लेना रही।
0: ये जानकारी आज के हमारे विशेषज्ञ श्री कैलाश सिंह पैकरा जी बतावा थे।
9: जी जी हाँ।
1: हाँ मानवेंद्र जी, हाँ बगीचा आप लगाना चाहा था, बढ़िया अच्छा बात है।
9: हाँ।
1: मैं आप मतलब बताना चाहूँ कि राज्य शासन के भी योजना है समेकित उद्यान विकास योजना और राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी योजना है, तो ये योजना है, ये योजना के माध्यम से ना हम आप मल्ला फल उद्यान या बगीचा लगाए बर अनुदान भी दे सकत हन, आपके सहयोग कर सकत हन। अब सवाल ये है कि बगीचा कैसे लगाना चाहिए, तो आप बगीचा लगाए चाहा था तो आपके जो खेत है ओखर पहचान हो गए हो ही कि कहाँ मेरे बगीचा लगाना है, तो मैं ये ध्यान दे ला पड़ी वो खेत में ज्यादा पानी तो नहीं भरे, गड्ढा जगह तो नहीं है, एकर ध्यान लगे ला पड़ी, अगर पानी ज्यादा आ जाते तो पानी के निकासी के व्यवस्था करे ला पड़ी सबले पहली चीज, और अगर ये सब व्यवस्था है तो दूसर बात है कि पौधा लगाए बर गड्ढा, अब गड्ढा हमला कहाँ मेर बनाना है ओखर पहली आप मन ला लेआउट करे ला पड़ी, रस्सी के माध्यम से या लंबा बांस के लकड़ी के माध्यम से लेआउट कर लिया, लेआउट के मतलब ये है कोई भी पौधा बगीचा लगाना है तो एक निश्चित दूरी में लगाना है, पौधा ले पौधा के दूरी, कतार ले कतार के दूरी, तो लेआउट करके जो है गड्ढा बना लो, अब समय कम है जल्दी करे ला पड़ी, तो 2.5 फीट गड्ढा कम से कम लंबा चौड़ा 2.5 फीट के गड्ढा बना लो, जैसे ही गड्ढा बन जही तो ओमा जो है बढ़िया दूसर मिट्टी और गोबर खाद बराबर मात्रा में मिला के वो गड्ढा ला फिर से पाट देना है, और ओमा जो है दीमक ना लगे ओखर बर जो है दीमक रोधी दवा भी मिला देना है, जैसे बारिश हो ही ओमा आप ला पौधा लगाना है, अब कौन से पौधा लगाना है ये आपके इच्छा के ऊपर है, आम है अमरूद है नींबू है ना, तमाम प्रकार के पौधा है, ये पौधा के आप रोपण कर सका था, जो योजना में बताएं ओमा ये है कि आप लग 11,000 रुपया के अनुदान मिल जही समेकित योजना में, 30,000 से 50,000 तक के मिल जही राष्ट्रीय बागवानी मिशन में, अब ये निर्भर करते कि आप कितका रकबा में बगीचा लगाना चाहा था, पौधा लगाए के बाद जो है ओखर नियमित रूप से देखभाल करना पड़ी ताकि पौधा के अच्छा बढ़वार हो सके, है ना, ओमा कोई कीड़ा बीमारी तो नहीं लगा थे और कोई दूसर प्रकार के ओमा पौधा तो नहीं उगा थे, एकर देख रेख करना पड़ी, और एकर बर आप एक चीज और कर सका था कि जो हमारे उद्यान विभाग के मैदानी अमला है जो ग्राम सेवक है या आपके विकास खंड में जो है हमार नर्सरी हो ही वहाँ जाके तत्काल संपर्क करके अपन प्रकरण बनवा सका था, आपके बाड़ी में या खेत में जहाँ आप कहेंगे वहाँ पर बगीचा लगाए में आप मन के मदद करे जी।
8: ठीक है सर जी, जानकारी के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद भैया। हेलो हेलो चौपाल।
10: हाँ दीदी और माया भरे राम राम।
0: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
10: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था दीदी
0: जी। भैया भैया आज ना हमार हेलो चौपाल के विषय है कि फल उद्यान लगाए के तैयारी कैसे करन और एक प्रबंधन कौन ढंग ले होना चाहिए, तो एक ले जुड़े का जानकारी चाहते हो आप मन?
10: हाँ दीदी डॉक्टर भैया राम राम।
1: राम राम भैया। राम राम
10: भैया, जैसे मैं अपन खेत के मेड़ में कटहल है आम है और अन्य फलदार पौधा लगाना चाहता हूँ, तो एकर लगाए के विधि भैया और पेड़ में जैसे समय में बीमारी लग जाते भैया तो एकर निदान कैसन ढंग ले करीन या रोकथाम कैसन करीन, यही जम्मो बात ले पूछे बर फोन लगाए हूँ डॉक्टर भैया आपसे।
1: देखो भैया पेड़ पौधा हम दो तरीका से लगा सकत हन। आप मन जिसे बोला कि मेढ़ में लगाना है,
11: हाँ,
1: तो
11: हाँ,
1: एक तरीका ठीक है, आपके खेत है, मेड़ है, खाली जगह है, ओमा लगाना है। तो एमा हाँ, मैं सलाह देहूं कि अगर मेड़ में लगाना है ना, तो छोटे किस्म के पौधा लगाना चाहिए, जैसे मुनगा हाँ, है, बेर है, आंवला है, ये टाइप के।
11: अच्छा,
1: का है इखर पौधा जो है छोटे आकार के होते, उमा खाद दवाई तोड़ना, फल तोड़ना ये आसान रही। और मेड़ में अगर बड़े किस्म के पौधा लग जही तो दो प्रकार से नुकसान है। एक तो पेड़ के आकार बड़े हो जही तो उमा खाद दवाई ये दे में असुविधा होते, और दूसर कि वो पेड़ के छाया हो जही तो खेत के दूसर फसल ला भी प्रभावित करही। तो मैं ये सलाह देहूं कि अगर बगीचा लगाना है ना, तो एक मुस्त एक खेत में बगीचा लगाना चाहिए, ताकि ओमा खाद दे के और ओमा दवाई छिड़के के और ओखर बीच में अंतर्वर्ती फसल ले में सुविधा होही। तो जो आप कहा था कि ओमा बीमारी लग जाते, अब मेड़ में पौधा लगे रही तो अलग अलग जगह लगे रही, लेकिन बगीचा के रूप में एक खेत में लगाने से का होही कि ओमा एक ही प्रकार के खाद दवाई सब पौधा ला बराबर मात्रा में आप दे पाहु। तो बगीचा एक मुस्त लगाना चाहिए, अगर मेढ़ में लगाना है तो छोटे किस्म के पौधा लगाना चाहिए।
11: ठीक डॉक्टर भैया, बहुत सुंदर जानकारी दे, बहुत बहुत धन्यवाद, और दीदी जी ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद भैया। संगवारी हो, फल उद्यान लगाए की तैयारी होकर प्रबंधन, ये विषय रही से हमारे क्रम आज के हेलो चौपाल के। और ये विषय में जानकारी खातिर आपन की फोन के माध्यम ले समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमारे संग स्टूडियो में विशेषज्ञ रहीन श्री कैलाश सिंह पैकरा जी हा। आप मना उप संचालक है उद्यानिकी रायपुर मा। इखरे संग हेलो चौपाल कार्यक्रम इंची सिरावत है।
12: अभी सुनत रहने हेलो चौपाल में विषय रही से फलोद्यान लगाए की तैयारी और उसका प्रबंधन, विशेषज्ञ रहने श्री कैलाश सिंह पैकरा।
0: अब आप मतलब बता देते हैं हेलो किसान वाणी ले जुड़ी सूचना संगवारी हो, अवैया मंगलवार 16 जून 2026 के प्रसारित होया हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में इधरी के विषय हो ही मानसून की पूर्व पशुवन में होवैया बीमारी के पहचान, बचाव, उपचार संग टीकाकरण के महत्ता। और ये विषय में आपन की समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमारे संग स्टूडियो में विशेषज्ञ हो ही डॉक्टर केएल राम, अतिरिक्त उप संचालक शासकीय पशु चिकित्सालय मांडर। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमें फोन कर सकते हो। हमारे फोन नंबर है, पहली फोन नंबर है 400-3482, दूसरा फोन नंबर है 400-3483, और तीसरा फोन नंबर है 400-3484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हुई 16 जून 2026 के बिहनिया 11:30 ले 12 बजे तक, और एक प्रसारण वही दिन मंगलवार के संजा 7:30 में हुई। तो आप मन की फोन कॉल की अवर रही और सूचना नीचे सिरावत है।
12: दीदी बता देते आज के प्रश्न, उद्यानिकी विभाग ले संचालित योजना कौन कौन से है, पाछू अब तक प्रश्न सिंचाई के दो प्रमुख विधि के नाम बतावा, और सही उत्तर है ड्रिप सिंचाई पद्धति, टपक पद्धति और फुहारा पद्धति। सही उत्तर लिख के हमारे संगवारी में भेजे है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा। कांकेर संबलपुर ले है फागु राम यादव, ज्योति यादव, जस्वी यादव। सिंगारबाड़ी घुटकू ले है भगत राम पटेल, किशन सोनम मानवी पटेल मन।
0: अब हुआ थे जाए के बेरा पहले संगवारी मल्ला बधाई जिनमें सही जवाब लिख के भेजे थे, और संगवारी हो जाए के बेरा हुआ थे तो बता देवन काली के कार्यक्रम काली संझा बेरा चौपाल में गोडबाज संघ की समनानी सुनू क्रम आज की सलाह, जानकारी के विषय हुई बीज उपचार का महत्व एवं विधियां, बताही विशेषज्ञ दीपमाला लकड़ा जिया, आओ गीत संगीत के मधुरता तब अगर वे करी तदेवा विदा। कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला मनिका
12: और रोशन के
0: राम राम, राम।

चौपाल कार्यक्रम अभी आप सुन रही थी, यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे ही लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। पहले आपको सुनवा रहे हैं मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत, आवाज़ें SP बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की, देव कोहली के बोल हैं संगीत राम लक्ष्मण का।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी।

ओन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मां ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंचनिया 1:30 से 2 बजे तक।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में देव कोहले का लिखा गीत। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, संगीत राम लक्ष्मण का।

हम दिल दे चुके सनम इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ एक कविता कृष्णमूर्ति मोहम्मद सलामत और साथियों की, स्माइल दरबार का संगीत है, गीतकार है महबूब।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रही थी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं वकील अहमद।

सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे वकील अहमद। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर अपडेट के साथ और हर मैच के ताजा हाल के साथ, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल के मैदान की हर बात। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के दिन भर के मुख्य समाचारों पर। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 मेक्सिको में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। पहले मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा। पहले मुकाबले में इंग्लैंड और श्रीलंका आमने सामने। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची और जाने माने निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं फुटबॉल के मेगा कार्निवल फीफा विश्व कप के साथ, जिसका आगाज कल मेक्सिको में शानदार रंगारंग कार्यक्रम के साथ हो गया है। विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर अपने अभियान का विजयी आगाज किया। वहीं दूसरे मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने चेकिया पर 2-1 से जीत दर्ज की।
1: विश्व के सबसे बड़े खेल फुटबॉल के सबसे बड़े कार्निवल फीफा विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस पहले ही दिन इस विश्व कप के मोस्ट अवेटेड टूर्नामेंट के लिए उत्साहित नजर आए। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में बीती रात मेक्सिको में मेजबान टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 का धमाकेदार अंदाज में आगाज किया है। एस्टेका स्टेडियम में घरेलू दर्शकों के सामने मेक्सिको का पूरी तरह दबदबा देखने को मिला। मुकाबले की शुरुआत से ही मेक्सिको ने गेंद पर नियंत्रण रखा और लगातार दक्षिण अफ्रीका के डिफेंस पर दबाव बनाया। फीफा विश्व कप 2026 और मैच का पहला गोल गिव नो ने इसने किया। हाफ टाइम तक मेक्सिको 1-0 से आगे था। दूसरे हाफ की शुरुआत में साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका लगा। टीम के खिलाड़ी याया सिथोल ने गोल की तरफ बढ़ रहे मेक्सिको के ब्रायन गुटिरेज को रोकने के चक्कर में उन्हें गिरा दिया, जिसके बाद रेफरी ने तुरंत उन्हें रेड कार्ड थमा दिया। गुटिरेज को रेड कार्ड मिलने के बाद अफ्रीका को दूसरे हाफ में 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इसका फायदा उठाते हुए अनुभवी स्ट्राइकर राहुल जिमिनेज ने शानदार गोल दाग कर मेजबान टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया और टीम की जीत लगभग तय कर दी। मेहमान टीम की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। टीम के खिलाड़ी थेम्बा जवाने को हिंसक व्यवहार के कारण रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 9 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। मैच के अंतिम क्षणों में मेक्सिको को भी झटका लगा जब डिफेंडर सीजर मोंटेस को एक लापरवाही चुनौती के लिए रेड कार्ड दिया गया। हालांकि इस फैसले का मैच के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा और मेक्सिको की टीम मुकाबले को 2-0 से अपने नाम करने में सफल रही। वहीं दूसरे मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने चेकिया पर 2-1 से रोमांचक जीत दर्ज की। रोमांच से भरपूर मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने दूसरे हाफ में 1-0 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। मैच की शुरुआत से कोरिया और चेकिया की टीम को गोल करने के कई मौके मिले, लेकिन दोनों ही टीमें इसे बुनाने में नाकाम रहीं। दूसरे हाफ की शुरुआत से ही चेकिया ने आक्रामक खेल दिखाया और टीम को मैच के 59वें मिनट में लाडिस्लाव क्रेजकी ने हेडर के जरिए शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी।

0: इसके बाद दक्षिण कोरिया ने शानदार वापसी करते हुए 67वें मिनट में हांग इन ब्योम के गोल की मदद से स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। ओ ह्योन ग्यू ने 80वें मिनट में गोल करके दक्षिण कोरिया को मुकाबले में बढ़त दिला दी। इसके बाद कोरिया ने चेकिया को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और टीम विश्व कप 2026 का आगाज जीत के साथ करने में सफल रही। विश्व कप में आज सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो फुटबॉल के सबसे बड़े मेगा कार्निवल का आगाज हो चुका है और ऐसा ही एक मंच सजने को तैयार है क्रिकेट का इंग्लैंड और वेल्स में, जहां आज से आईसीसी टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आगाज होने जा रहा है। इस बार टी20 विश्व कप में 12 टीमें भाग लेंगी, जो इस खिताब के लिए अगले 24 दिनों में 33 मुकाबले खेलेंगी और 5 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर यह फाइनल होगा कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का नया चैंपियन कौन बनने जा रहा है। कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में विमेंस इन ब्लू यानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना पहला टी20 विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। सुनिए विश्व कप पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
2: मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के मुकाबले के साथ ही आज से टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आगाज हो जाएगा। पहली बार महिला टी20 विश्व कप में सबसे अधिक 12 टीम भाग ले रही है। 12 टीमों को 6-6 के दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश, नीदरलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका है। वहीं ग्रुप बी में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज को रखा गया है। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट के इतिहास की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है, जिसने 6 बार ये खिताब जीता है। इंग्लैंड 2009 में, वेस्टइंडीज 2016 में और मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड की टीम 2024 में 1-1 बार ट्रॉफी उठा चुकी है। 2025 में अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम इस टी20 विश्व कप के प्रबल दावेदारों में शामिल है। अगर भारत को ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें रहकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो उसे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो टीम अनुभवी हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेल रही है, जबकि स्मृति मंधाना टीम की उप कप्तान है। इनके अलावा शिफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव भी टीम का हिस्सा है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को एजबिस्टिन में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा और इस मैच को लेकर जितना उत्साह दर्शकों में है उतना ही उत्साह टीमों में भी है। इसके बारे में खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है ना, हमने कभी किसी और मैच में एक्सपीरियंस नहीं करा, इवन दो चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले हो और सेमीज भी खेले हो, नेवर फेल्ट दैट। बट आई थिंक क्योंकि शायद बचपन से वो एक एक्सपीरियंस के साथ हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, बट एट द सेम टाइम वो उतना ही स्पेशल मैच होता है, उसको जीतने के बाद उतना ही अच्छा फील होता है, उतना ही रिलैक्स फील होता है।
2: उप कप्तान स्मृति मंधाना ने इस मैच को लेकर क्या कहा, ये भी सुनते हैं।
4: आई हैवंट रियली फॉलोड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट या अगेन टू किक स्टार्ट योर वर्ल्ड कप कैंपेन विद द पाकिस्तान गेम इज ऑलवेज गुड, क्राउड फर्स्ट हैंड इन द फर्स्ट गेम, सो दैट विल मोर देन ऑफ योर बैक, आई जस्ट फील इट विल जस्ट गेट मेक एवरीवन यूज्ड टू द क्राउड।
2: इसके बाद भारत 17 जून को नीदरलैंड, 21 जून को दक्षिण अफ्रीका, 25 जून को बांग्लादेश और अंतिम ग्रुप मैच में 28 जून को ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला कल से शुरू होने जा रही है। जानते हैं 2027 विश्व कप की तैयारियों की शुरुआत माने जाने वाली सीरीज से भारत को क्या उम्मीदें हैं।
5: भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन की रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद शुभमन गिल की कप्तानी में टीम अब नीली जर्सी में भी अफगानिस्तान पर जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। 2027 विश्व कप की तैयारी का आगाज मानी जा रही यह सीरीज भारत को कई युवा खिलाड़ियों को आजमाने के नजरिए से बेहद अहम है। भारतीय टीम की बात की जाए तो कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर बेहतरीन फॉर्म में हैं, जिनको हिटमैन रोहित शर्मा का बखूबी साथ मिल सकता है। विराट कोहली के चोटिल होने के बाद टीम में आए यशस्वी जायसवाल के पास भी खुद को साबित करने का अच्छा मौका है। विकेट कीपर के रूप में टीम के पास केएल राहुल और ईशान किशन का विकल्प है। निचले मध्य क्रम में नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर टीम को बल्लेबाजी में गहराई देंगे। गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम के पास स्पिन अटैक में कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और हर्ष दुबे का विकल्प है, जबकि टीम की पेस बैटरी में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्ण प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार जैसे युवा नाम है। तो ये दोनों टीमों में अब तक 4 बार आमने सामने हुई है। इनमें 3 बार भारत ने बाजी मारी है और 1 मुकाबला टाई रहा है। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ और अंतिम मुकाबला 20 जून को चेन्नई में खेला जाना है। यहां से शुभमन गिल की मेंस इन ब्लू की नजर इस घरेलू श्रृंखला में जीत दर्ज कर अपनी तैयारियों को एक सकारात्मक शुरुआत देने पर होगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया।
6: It's been special and I've loved it. It's a team that I love and it's so dear to my heart. You know, it's been such a massive part of my life and team sports are pretty special thing. You know, you get a bond with these people around you for such a long period of time and have some really amazing experiences. So they're the sorts of thoughts that come back. The achievements, the good days, the tough days that toughen you up and make you a bit stronger. That's the highlight for me.
7: 35 साल के विलियमसन ने 2010 में टेस्ट और वनडे में और 2011 में T20 में डेब्यू किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर 378 मैचों की 452 पारियों में 48 शतक और 103 अर्ध

0: शतक की मदद से विलियमसन ने 19,346 रन बनाए। विलियमसन ने 110 टेस्ट की 195 पारियों में 33 शतक और 38 अर्धशतक लगाते हुए 9,515 रन बनाए। 175 वनडे की 167 पारियों में 15 शतक और 47 अर्धशतक लगाते हुए 7,256 रन बनाए। इसके अलावा 93 T20 की 90 पारियों में 18 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 2,575 रन बनाए हैं। फॉर्मेट के हिसाब से विलियमसन टेस्ट में पहले, T20 में दूसरे और वनडे में न्यूजीलैंड के चौथे सबसे सफल बल्लेबाज हैं। वो 2015 में ICC के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और 2019 में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर रहे। विलियमसन न्यूजीलैंड के सफलतम कप्तान भी रहे हैं। दाएं हाथ के इस धाकड़ बल्लेबाज ने 40 टेस्ट, 91 वनडे और 75 T20 में न्यूजीलैंड की कप्तानी की है। उनकी कप्तानी में कीवी टीम ने 2019 वनडे विश्व कप का फाइनल खेला था। विलियमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। कीवी टीम उनकी कप्तानी में 2021 T20 विश्व कप का फाइनल भी खेल चुकी है। वहीं विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर 2021 टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था। 2025 में T20 क्रिकेट से संन्यास के बाद आज पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने की विलियमसन की घोषणा के साथ ही न्यूजीलैंड क्रिकेट में एक युग का अंत हो गया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: जाने माने निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का कल निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। सुनते हैं निशानेबाजी के इस गोल्डन बॉय पर हमारी ये रिपोर्ट।
2: 28 जून 1976 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जन्मे जसपाल राणा को बचपन से ही निशानेबाजी में रुचि थी। पिता नारायण राणा सेना के पूर्व अधिकारी थे और वे ही जसपाल के पहले कोच बने। 1988 में महज 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। इसके बाद 1994 में जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में राणा के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें पहचान दिलाई। जसपाल ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि वे ओलंपिक में पदक जीतने में सफल नहीं हुए, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया और कुल 15 पदक जीते, जिनमें 9 स्वर्ण पदक शामिल है। 2002 के मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 6 पदक अपने नाम किए थे। 2006 के दोहा एशियाई खेलों में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया था और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में 590 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। खिलाड़ी के रूप में सफलता हासिल करने के बाद जसपाल राणा ने कोच के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने अनेक युवा निशानेबाजों को प्रशिक्षित किया और भारतीय निशानेबाजी की नई पीढ़ी को निखारा। उनकी देखरेख में मनु भाकर ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनी। मनु भाकर ने ओलंपिक पदक जीतने के बाद अपने कोच को लेकर क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
3: So I was in the team, I was doing good, but I was not happy with my sport. I was not happy in shooting. So I think he was the one to make me have faith in myself again. I would say that he makes me really happy in my sport and I really enjoy shooting again after like 2 years or so.
2: जसपाल राणा को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और कोचिंग में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत सरकार तथा खेल जगत की तमाम हस्तियों ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका निधन खेल जगत के लिए अपूरणीय क्षति है और भारतीय निशानेबाजी में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें sportscan@air.gmail पर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1,000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की नीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
5: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
4: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
6: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
7: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइट्स गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू फर्दर विमेन लेड डेवलपमेंट अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम

0: के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
0: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आईं उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
1: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज़्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज़ को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज़ वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
0: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
1: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज़ को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में GST का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सृजित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
0: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
1: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
0: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
1: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था, वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा, किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे।

0: उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा, ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2,500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई। राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आज़ादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर काकी श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सकें, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाएं, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आज़ादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सकें, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहाँ जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसे संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहाँ कहीं भी अवसर मिले, जैसे जब भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़ें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित अभय नारायण मलिक का राग बागेश्री में धमार गायन। इसमें प्रस्तुत है आराप और धमार। बोल हैं नए हो खिलाड़ भय हो रसिया। संगत करने वाले कलाकार हैं वायलिन पर प्रवीण शिवलिकर, पखावज पर माणिक मुंडे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी पंडित अभय नारायण मलिक का राग बागेश्री में धमार गायन। संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर प्रवीण शेवलिकर और पखावज पर माणिक मुंडे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें।

कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं मधुमती, इस फिल्म का गीत आवाजी लता मंगेशकर और मुकेश की, शैलेंद्र के बोल हैं, सलिल चौधरी का संगीत है और इस गीत के लिए पसंद भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने। कोरासी रायपुर से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज साहू, सुष्मिता साहू, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल, यशस्वी वर्मा, राजनांदगांव से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, गजेंद्र गुप्ता, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, समडिल नवापार से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति, राधे गुप्ता, बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू, धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल और मानस, अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, गोपी भूपेश, राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, बाटापरा से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म मधुमती का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आर पार इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। गीता दत्त की आवाज़ है, मजरू के बोल ओपी नैयर का संगीत और फरमाइश आप सभी श्रोता साथियों की। भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, संभाजीनगर से राजेश साबले, पाटिल राजदीप, कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, ददरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती रुद्र वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रचक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, भाटापारा से दान सिंह रावत तानु, पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत, कुरासिया से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, हटोद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल, सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं चाइना टाउन। इस फिल्म का गीत आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, मजरूह के बोल हैं संगीत रवि का और फरमाइश आप सभी श्रोता साथियों की। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना विपुल कामड़े, मेघापार से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु और दिव्या पटेल, मिलाई से अशोक श्याम कुंवर, हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस शांति ऋचा गायत्री वैष्णव, मन की लोरमी से नारायण खांडे, रजनी तुषार समीर खांडे, नवाकर कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, पंडरिया गंडई से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विकी, टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक कुमार, जयश्री देवांगन, धुर्रा बांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, रायपुर से ताम्रध्वज साहू, उमरखेड़ से अभिजीत गवानकर राही, बागबारा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा कौशल सेन, चचड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं चाइना टाउन इस फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत ज्वेल थीफ इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, आवाज किशोर कुमार की, एसटी बर्मन का संगीत है, गीतकार शैलेंद्र और फरमाइश आप सभी की। महासमुंद से भीष्मदास, नर्मदा हिरमणि, दीपक लक्षदास, परसाटोला से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी गुमेंदर, तुषारणी मसिया, रोहासी से डगीसर राम साहू, गौरव नूतन, घनश्याम साहू, धमतरी से गिरीश कुमार साहू, चित्ररेखा शुभम, सेजल साहू, बाटापरा से हीरा मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलार वर्मा, पलारी से नीतीश कुमार देवांगन, पराग, तनुजा, ईशांत, महासमुंद से बलराम सेन, इंदू सेन, छगन सिन्हा, द्वारिका सिन्हा, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, समर्थ शौर्य नामदेव, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम, फुलझर घटारानी से योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी यामिनी, मुस्कान साहू, गुड़ाराज से मनोज साहू, चित्रेखा, देवेंद्र, लविना और चंचल। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ज्वेल थीफ इस फिल्म का ये गीत।

0: कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं सीता और गीता। इस फिल्म का गीता आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आरटी बर्मन ने और इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी है आप सभी श्रोता साथियों ने। बेमित्रा से राज और सारिका वैष्णव, शीतला नगर दुर्ग से शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर, कोरदा से कलीराम यादव छतराम शेषराम यादव, बेलरगांव सिंहावा से मिथिलेश देवांगन मधु हिमांशु अंकित देवांगन, जयमा रेडियो श्रोता संघ गातापार से लावण्या साहू उपासना देवराज ओम कुमार साहू, मगरलोड से पुनुराम साहू राज तेजेश्वरी साहू राजश्री राजवीर साहू, भाटापारा से चोवाराम वर्मा मुकेश तुलारी दुर्गा वर्मा, रुआबंधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन कल्पना सेया सौरभ जैन, मानोरा से तुलसीराम डेरे मायावती संदेश आदेश, धरसीवा से छेदूलाल यादव सीता अर्चना अरुणा यादव, सिमका से लवकुश सेन प्रहलाद आदित्य आशीष सेन, भिलाई जामुल से विकास वर्मा खुशी ग्रंथ वर्मा संजय प्रधान, कोटा रायपुर से योगिता वर्मा रुचि खुशी वर्मा उज्जवल वर्मा, खैरागढ़ से रविन्द्र अग्रवाल पुष्पलता झरना प्रेरणा दीक्षा, लच्छनपुर से रामजी साहू जीवन लाल रजक निम्मी शिवम, बाटापारा से नारायण यदु पुनिया यदु राकेश और आरती यदु, जयमा रेडियो श्रोता संघ सिरी से घनेश्वरी साहू ओम प्रभा बिंदेश्वरी नागेश्वरी साहू और रायपुर से राजेश अम्बादी शशिकला पूजा अम्बादी। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं सीता और गीता फिल्म का ये गीत।
1: ए, ए,

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 11 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
4: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
3: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realising the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defence technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jade Affair of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The Shah Jade Affair was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 2,35,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. The 19th Mumbai International Film Festival, MIFF 2026, a week-long celebration of documentary, short fiction and animation cinema, is all set up to begin on Monday. Addressing a curtain raiser press conference in Mumbai today, Managing Director of National Film Development Corporation, NFDC, Mr. Prakash Magdum, informed that the competition section will feature 144 films, including 52 international and 92 national entries. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-final of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Suyu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: और कुछ देर ठहर और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा और कुछ देर ठहर।
1: हेलो टाक स्टूडियो, अभी यहाँ घड़ी में 5:24 और 16, 17, 18, 19, 20 सेकंड हुए हैं। हेलो टाइम ठीक है मैडम? ओके टाक स्टूडियो टेस्टिंग ओके। हाँ ठीक,

हेलो आर्टिस्ट, माइक्रोफोन नंबर वन। अभी आर्टिस्ट साइड की घड़ी में 5:25 और 4:56 हुए हैं। हेलो आर्टिस्ट टू, एक बार फिर से समय मिला लीजिए। अभी यहाँ घड़ी में 5:25 और 14:15 16:17 हुए हैं।